जब किसी व्यक्ति को किसी घटना में अन्याय का अनुभव होता है तो वो घटना उसके अंतर को झकझोर देती है। समस्त जगत उसे अपना शत्रु प्रतीत होता है। अन्याय लगने वाली घटना जितनी बड़ी होती है मनुष्य का हृदय भी उतना ही अधिक विरोध करता है। उस घटना के उत्तर में वो न्याय मांगता है और ये योग्य भी है। वास्तव में समाज में किसी भी प्रकार का अन्याय व्यक्ति की आस्था और विश्वास का नाश है। किंतु ये न्याय क्या है, न्याय का अर्थ क्या है? अन्याय करने वाले को अपने कार्य पर पश्चाताप हो और अन्याय भुगतने वाले के मन में फिर से विश्वास जगे समाज के प्रति, इतना ही अर्थ है ना न्याय का। किंतु जिसके हृदय में धर्म नहीं होता वो न्याय को छोड़कर बैर और प्रतिशोध को अपनाता है, हिंसा के बदले प्रतिहिंसा की भावना लेकर चलता है। स्वयं भोगी हुई पीड़ा से कहीं अधिक पीड़ा देने का प्रयत्न करता है और इस मार्ग पर चलते अन्याय को भुगतने वाला स्वयं अन्याय करने लगता है। शीघ्र ही वो अपराधी बन जाता है। अर्थात न्याय और प्रतिशोध के बीच बहुत कम अंतर होता है और इसी अंतर का नाम है धर्म। क्या ये सत्य नहीं? स्वयं विचार कीजिए।

0: जागृति बुन, आपने कारे सोचू है? अगर आप बूंदे रुके जाएंगा तो हूँ था
1: नाना अंजलि बुन हूँ था का
0: अरे जागृति बुन आपड़ी जे नदिया है ये रुके जाएंगा खेतर बंजर थे जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुके जागा
1: ओ अंजलि बुन एटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है पानी थकीस आपड़ो जीवन है
0: होवे जागृति बुन हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है
1: होवे अंजलि बुन आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नीर राखो बारिश ने पानी नु संग्रह करो आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा
0: होवे होवे जागृति बुन आपड़े भाई बहनों ने कहो कि पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है हर बूंद नु मोल आपड़े जानो
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
3: थारी में पासो लावो जूनू हवाद सेहत बनेगा एकदम शानदार बाजरा ज्वार रागी ने मक्का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू बारती नु खवानो सोड़ो बेशी अनाज तकी ना तू जोड़ो मोटू अनाज अपनावंगा शरीर ने स्वस्थ राखंगा
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आप सभी साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ साथियों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर है कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। श्रोताओं, कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से कि भाषा सिर्फ बोलने का माध्यम नहीं है। भाषा हमारे विचारों की पहचान है, हमारी संस्कृति की आवाज है, हमारे घर की गर्माहट है और हमारी मिट्टी से जुड़ी वो डोर है जो हमें हमारी जड़ों से जोड़कर रखती है।
0: बिल्कुल
1: कशिश, हम में से कई युवा घर में अपनी स्थानीय भाषा, बोली या मातृभाषा में बात करते हैं, लेकिन जैसे ही स्कूल, कॉलेज, नौकरी या सोशल मीडिया की दुनिया में हम कदम रखते हैं, दूसरी भाषाओं की ओर बढ़ जाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: इसमें कोई बुराई नहीं है श्रोताओं, नई भाषाएं सीखना हमारे अवसरों को बढ़ाता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या दूसरी भाषाएं सीखते हुए हम अपनी भाषा को पीछे छोड़ दें या फिर हम अपनी स्थानीय भाषा को दुनिया तक पहुंचाने का नया रास्ता बनाएं। तो आज के हमारे कार्यक्रम का विषय भी यही है कि लोकल भाषा से ग्लोबल दुनिया तक युवा कैसे अपनी भाषा की आवाज पहुंचाए, और ये विषय अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस के अवसर पर और भी खास हो जाता है।
0: जी हाँ जागृति जी, तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से इसी विषय को लेकर हम हमारे युवा साथियों से ढेर सारी बातें करेंगे।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्या ना दोस्तों को पहले यहाँ एक प्यारा सा गीत सुनवाए हम।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।

0: युवा साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय आपको बता चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं लोकल भाषा से ग्लोबल दुनिया तक।
1: बिल्कुल,
0: अगर बात करें जागृति जी की, भाषा स्थानीय हो सकती है लेकिन विचारों की कोई सीमा नहीं है, तो हम हमारे युवा साथियों से कहना चाहेंगे कि दुनिया में हजारों भाषाएं और बोलियां बोली जाती है। हर भाषा अपने साथ एक अलग संस्कृति, इतिहास, लोक ज्ञान, कहानियां, कहावतें और जीवन का अनुभव लेकर चलती है। जैसे कि किसी गांव की दादी द्वारा सुनाई गई कहानी केवल एक कहानी नहीं होती, उसमें उस समाज की सोच छिपी हुई होती है। किसी किसान के द्वारा अपनी स्थानीय बोली में मौसम को समझाने का तरीका केवल शब्द नहीं होता, उसमें वर्षों का अनुभव होता है। वहीं किसी लोकगीत में केवल सुर नहीं होते साथियों, उसमें उस क्षेत्र की संस्कृति, भावनाएं और इतिहास होता है।
1: बिल्कुल,
0: इसी कारण से भाषा को बचाना केवल शब्दों को बचाना नहीं है, कह सकते हैं कि भाषा को बचाना है मतलब एक पूरी सांस्कृतिक विरासत को बचाना।
1: जी,
0: आज की डिजिटल दुनिया ने युवाओं को एक ऐसा अवसर दिया है जिसकी कल्पना शायद कुछ दशक पहले मुश्किल थी जागृति जी। आज हमारे हाथ में जैसा कि मोबाइल है, कैमरा है, इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, पॉडकास्ट है, ब्लॉग है और वीडियो प्लेटफॉर्म है, तो फिर क्यों ना दोस्तों हमारी स्थानीय भाषा की आवाज भी इन्हीं प्लेटफॉर्म तक हम पहुंचाएं। आज हमारे हाथ में मोबाइल है, कैमरा है, सोशल मीडिया है, पॉडकास्ट है, ब्लॉग है और वीडियो प्लेटफॉर्म है, तो फिर क्यों ना युवा साथियों हमारी स्थानीय भाषा की आवाज भी हम इन्हीं प्लेटफॉर्म तक पहुंचाएं।
1: बिल्कुल कशिश, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस हर वर्ष आज ही के दिन 30 सितंबर को मनाया जाता है। अनुवाद का मतलब केवल एक भाषा के शब्दों को दूसरी भाषा के शब्दों में बदलना नहीं है।
0: बिल्कुल,
1: असल में अनुवाद का काम है एक भाषा के विचारों को दूसरी भाषा के व्यक्ति तक उसकी भावनाओं के साथ पहुंचाना।
0: जी हाँ,
1: श्रोताओं सोचिए, अगर राजस्थान के किसी गाँव की लोक कथा हिंदी में आती है, फिर उसका अंग्रेजी या किसी अन्य भाषा में अनुवाद होता है, तो वो कहानी केवल गांव तक सीमित नहीं रहती। अगर किसी स्थानीय कलाकार का इंटरव्यू स्थानीय बोली में रिकॉर्ड किया जाए और उसके साथ हिंदी या अंग्रेजी सबटाइटल लगाए जाए, तो उसकी आवाज दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक पहुंच सकती है।
0: जी हाँ,
1: यानी कि कहने का मतलब ये है कशिश कि स्थानीय भाषा, अनुवाद, डिजिटल माध्यम मिलकर वैश्विक पहुंच तक जा सकते हैं और इस बदलाव में युवा सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
0: जी हाँ जागृति जी, साथ ही अब बात करें कि युवा साथियों में अपनी भाषा बोलने में इतना झिझक क्यों है। तो युवा साथियों, तो हम देखते हैं कि कई युवा अपनी स्थानीय भाषा या बोली बोलते हुए कभी कभी झिझक महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि लोग क्या सोचेंगे, मेरी भाषा सुनकर कोई मुझे कम आधुनिक तो नहीं समझेगा, अगर मैं सोशल मीडिया पर अपनी बोली में वीडियो बनाऊंगा तो लोग मजाक तो नहीं बनाएंगे। लेकिन यहाँ हमें एक बात समझनी होगी साथियों कि आधुनिक होने का मतलब अपनी जड़ों से दूर होना नहीं होता। आप अंग्रेजी भी सीख सकते हैं, हिंदी भी सीख सकते हैं, दूसरी भारतीय भाषाएं भी सीख सकते हैं, साथ ही साथ नई तकनीक भी सीख सकते हैं, लेकिन साथ ही अपनी स्थानीय भाषा में भी गर्व से आप बोल सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: एक युवा जितनी भाषाएं सीखता है जागृति जी, उसके लिए उतनी ही नई खिड़कियां खुलती हैं। लेकिन अपनी मातृभाषा या स्थानीय बोली से जुड़ा उसे अपनी पहचान से जोड़े रखता है।
1: जी हाँ,
0: इसलिए लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए कि मैं सिर्फ अपनी भाषा बोलूं, बल्कि लक्ष्य ये होना चाहिए कि मैं अपनी भाषा को भी दुनिया की बातचीत का हिस्सा बनाऊं।
1: बिल्कुल कशिश, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम ये कहना चाहेंगे कि साथियों हमारे स्थानीय भाषा में बहुत सा ऐसा ज्ञान है जो किताबों में शायद दिखाई न दे, लेकिन पीढ़ियों से लोगों के अनुभव में मौजूद है। जैसे कि खेतों से जुड़े स्थानीय अनुभव, मौसम पहचानने के पारंपरिक तरीके, स्थानीय औषधि पौधों का ज्ञान, लोक कथाएं, लोकगीत, हस्तशिल्प, स्थानीय खान पान, त्योहारों की परंपराएं, पारंपरिक खेल और स्थानीय इतिहास। हम देखते हैं कशिश की युवा इन चीजों को रिकॉर्ड करें, लिखें, फोटो और वीडियो के माध्यम से सुरक्षित करें और फिर उनका अनुवाद करें।
0: जी जी,
1: तो ये ज्ञान आने वाली पीढ़ियों तक भी पहुंचा सकता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए श्रोताओं कि किसी गांव की एक बुजुर्ग महिला को पारंपरिक भोजन बनाने की ऐसी विधि आती है जो केवल स्थानीय बोली में बताई जाती है। एक युवा क्या कर सकता है, वो उनसे बातचीत रिकॉर्ड कर सकता है, वीडियो बना सकता है, उसका स्थानीय भाषा में ऑडियो रख सकता है, फिर हिंदी में विवरण लिख सकता है, अंग्रेजी में सबटाइटल जोड़ सकता है। अब वो जानकारी सिर्फ घर तक सीमित नहीं रहेगी, ये डिजिटल दुनिया में एक दस्तावेज बन सकती है।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो जैसा कि युवा साथियों से हम कार्यक्रम के माध्यम से बात कर रहे हैं कि लोकल भाषा से ग्लोबल दुनिया तक हमारे युवा साथी अपनी भाषा को कैसे पहुंचा सकते हैं, तो ये बातें हम आगे भी करते रहेंगे।
1: जी हाँ,
0: लेकिन अभी यहाँ पर सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।
1: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। हमारी बातें चल रही थी लोकल भाषा से ग्लोबल दुनिया तक युवा कैसे अपनी भाषा की आवाज पहुंचे। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने भाषा स्थानीय हो सकती है लेकिन विचारों की कोई सीमा नहीं को लेकर बात किया था। साथ ही हम जान पाए थे अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस और युवाओं की भूमिका को लेकर, और हम जान रहे थे कि अपनी भाषा बोलने में हम झिझक क्यों करें। इसी के साथ हमने जाना था लोकल भाषा में मौजूद हमारा जो ज्ञान है उसे हम किस तरह से पहचाने।
1: बिल्कुल।
0: साथ ही सोशल मीडिया बन सकता है भाषा का मंच, इस पर हम बात करते हैं।
1: जी हाँ जागृति जी, तो जैसा कि आज के युवा सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा सक्रिय हैं।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन सोशल मीडिया का इस्तेमाल सिर्फ मनोरंजन के लिए ही क्यों किया जाए? इसे श्रोता साथियों अपनी भाषा के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि युवा साथी स्थानीय भाषा में पॉडकास्ट बना सकते हैं, छोटे छोटे वीडियो बना सकते हैं, लोकगीतों के बारे में बता सकते हैं, लोक कथाएं सुना सकते हैं, स्थानीय खेती के अनुभव साझा कर सकते हैं, पारंपरिक व्यंजनों की जानकारी बता सकते हैं, साथ ही अपने क्षेत्र के पर्यटन स्थलों की कहानी भी बता सकते हैं। और फिर श्रोता साथियों, इन वीडियो में हिंदी या अंग्रेजी सबटाइटल जोड़े जा सकते हैं। हम देखेंगे कि यही है लोकल कंटेंट को ग्लोबल पहुंच देने का सरल तरीका।
0: बिल्कुल।
1: अपनी आवाज स्थानीय हो सकती है लेकिन आपके दर्शक दुनिया के किसी भी कोने में हो सकते हैं साथियों।
0: बिल्कुल कशिश, हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि श्रोताओं, जरा खुद से पूछिए कि अगर आपके गांव की कोई कहानी दुनिया के किसी दूसरे देश में रहने वाला व्यक्ति सुनना चाहे तो उसे कहां सुनेगा? अगर जवाब है कहीं नहीं, तो शायद ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसे कहीं उपलब्ध कराएं। क्योंकि डिजिटल दुनिया में किसी कहानी का छोटा होना उसकी कीमत कम नहीं करता। कभी कभी एक छोटी सी स्थानीय कहानी ही किसी दूसरे व्यक्ति के लिए एक पूरी नई दुनिया का दरवाजा खोल सकती है।
1: जी हाँ जागृति जी, अब बात करते हैं अनुवाद की। तो श्रोता साथियों, मान लीजिए कि आपने अपनी स्थानीय भाषा में एक शानदार कहानी बनाई, लेकिन उसे केवल वही लोग समझ पाएंगे जो आपकी भाषा को जानते होंगे।
0: बिल्कुल।
1: अगर आप उसका हिंदी अनुवाद करेंगे तो आपके जो दर्शक हैं वो बढ़ जाएंगे। अगर आप अंग्रेजी में भी उसका अनुवाद या सबटाइटल जोड़ते हैं तो वो दुनिया के कई और लोगों तक पहुंच सकता है। इसलिए अनुवाद को हमें केवल भाषा बदलना नहीं समझना चाहिए। अनुवाद तो एक तरह का सेतु होता है जागृति जी। एक तरफ है हमारी स्थानीय भाषा, दूसरी तरफ है दुनिया, और इन दोनों के बीच पुल बनाता है अनुवाद साथियों।
0: बिल्कुल।
1: अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि एक युवा अपनी स्थानीय भाषा को ग्लोबल दुनिया तक पहुंचाने के लिए क्या कर सकता है?
0: जी हाँ,
1: इसके लिए जरूरी ये नहीं है कि आपके पास एक बड़ा स्टूडियो हो। जरूरी नहीं है श्रोता साथियों कि आपके पास महंगा कैमरा हो, और ये भी जरूरी नहीं है कि आप किसी बड़ी संस्था का हिस्सा हो।
0: बिल्कुल।
1: शुरुआत एक मोबाइल फोन से भी हो सकती है। जैसे कि अपनी भाषा में बोलना आप शुरू करें, स्थानीय कहानियां आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, स्थानीय शब्दों का डिजिटल संग्रह बना सकते हैं, सबटाइटल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लोक कला को डिजिटल बनाने में भी योगदान दे सकते हैं। साथ ही जैसा कि जागृति जी हमने पहले भी बताया था कि हमारी युवा साथी पॉडकास्ट शुरू कर सकते हैं और अनुवाद को सीख सकते हैं। साथ ही दोस्तों, आप AI और डिजिटल टूल्स का जिम्मेदारी से इस्तेमाल भी करें, क्योंकि आज तकनीक अनुवाद और सबटाइटल बनाने में मदद कर सकती है AI। लेकिन मशीन से बने अनुवाद को बिना जांचे प्रकाशित नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ स्थानीय शब्दों और सांस्कृतिक संदर्भों का भी सही अर्थ बनाए रखना जरूरी होता है जागृति जी।
0: बिल्कुल कशिश, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि वागड़ और स्थानीय भाषाओं की आवाज को हम किस तरह से मजबूत कर सकते हैं। हम जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ की स्थानीय बोलियाँ और भाषाएं हमारी पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
1: जी हाँ।
0: वागड़ की लोक संस्कृति में लोकगीत है, कहानियां है, परंपराएं है, लोक कला है और पीढ़ियों से चला आ रहा ज्ञान है। इन सबको केवल यादों तक सीमित रखने के बजाय डिजिटल दुनिया में दर्ज किया जा सकता है।
1: जी हाँ।
0: एक युवा अपने मोबाइल से शुरुआत कर सकता है। आज मैं आपको अपने क्षेत्र की एक लोक कथा सुनाऊंगा या सुनाऊंगी, या आज हम जानेंगे कि हमारे यहाँ इस त्योहार की ये परंपरा क्यों है।
1: बिल्कुल।
0: या ये भी हो सकता है कि आज हम अपनी स्थानीय बोली के 5 ऐसे शब्द जानेंगे जिन्हें शायद नई पीढ़ी भूलती जा रही है।
1: बिल्कुल।
0: ऐसी छोटी छोटी शुरुआतें भविष्य में बहुत बड़ा संग्रह बन सकती है।
1: जी हाँ।
0: साथ ही श्रोता साथियों, आपको कहना चाहेंगे कि भाषा को बचाने का सबसे आसान तरीका है बोलिए, लिखिए और सिखाइए। यानी कि कशिश, भाषा तभी जीवित रहती है जब उसका इस्तेमाल होता है। कशिश, अगर कोई भाषा केवल किताब में रह जाए और रोजमर्रा की जिंदगी से बाहर हो जाए तो आने वाली पीढ़ियों के लिए इसका इस्तेमाल कम हो सकता है।
1: बिल्कुल।
0: इसीलिए श्रोताओं, घर में बच्चों से अपनी भाषा में बात कीजिए, बुजुर्गों से उनकी भाषा में बात कीजिए, स्थानीय गीतों को रिकॉर्ड करिए, कहानियां लिखिए, लोक कथाओं का अनुवाद कीजिए, स्थानीय शब्दों को सोशल मीडिया पर साझा कीजिए, और सबसे जरूरी, अपनी भाषा बोलने में शर्म नहीं बल्कि गर्व महसूस कीजिए।
1: बिल्कुल जागृति जी, तो इस तरीके से हम कार्यक्रम के माध्यम से दोस्तों को कहना चाहेंगे कि साथियों, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस हमें सिर्फ भाषाओं के बीच शब्दों को बदलने की बात नहीं बताता, यह हमें याद दिलाता है कि दुनिया को एक दूसरे की कहानियाँ समझने की जरूरत है और इन कहानियों में हमारी भी एक कहानी है, जैसे कि हमारे गांव की कहानी, हमारे परिवार की कहानी, हमारी संस्कृति की कहानी, हमारी बोली की कहानी और हमारी मिट्टी की कहानी।
0: बिल्कुल,
1: हो सकता है हमारी भाषा दुनिया में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा न हो श्रोता साथियों, लेकिन उसमें हमारी दुनिया जरूर बसी है। इसलिए युवा साथियों, अपनी भाषा को सिर्फ घर की चार दीवारी तक सीमित मत रखिए, उसे मोबाइल तक लाइए, पॉडकास्ट तक लाइए, सोशल मीडिया तक लाइए और डिजिटल दुनिया तक लेकर आइए और अनुवाद के माध्यम से अपनी स्थानीय आवाज को दुनिया की बातचीत का हिस्सा बनाइए।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि भाषा हमारी पहचान है, अनुवाद उसका पुल है और युवा उस पुल के निर्माता है। जागृति जी,
0: जी हाँ, इसलिए हमारे श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि याद रखिए, जड़े अपनी भाषा में मजबूत रखिए और अपनी आवाज को दुनिया तक पहुंचाइए।
1: जी,
0: इन्हीं चंद पंक्तियों, इन्हीं उम्मीदों के साथ आज के इस कार्यक्रम से हम विदा लेना चाहेंगे, पर जाने से पहले सुन लेते हैं कार्यक्रम का एक और गीत।
1: बिल्कुल,

0: साथ ही इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से जो भी बातें रही वो बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपनी राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो दोस्तों लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज वाकर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ साथियों आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों फिर से मुलाकात होगी हमारे आपसे इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: कार्यक्रम सच्चा बचपन सुनने वाले हमारे सभी श्रोता साथियों को आपके अपनी दोस्त कशिश पाराशर और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का तहे दिल से स्वागत है कार्यक्रम सच्चा बचपन में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। कशिश, कार्यक्रम सच्चा बचपन में जब भी हम हाजिर होते हैं तो हम हमारे बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा, उनके विकास को लेकर ढेर सारी बातें करते हैं, क्योंकि बच्चे हमारे घर गांव की रसोई में ऐसी कई चीजें देखते हैं जिन्हें वे बड़े बुजुर्ग के माध्यम से सीखते हैं।
0: बिल्कुल,
1: हम कहना चाहेंगे कि बड़े बुजुर्ग जो हैं वो पहले के समय में बाजरा, मक्का, ज्वार, रागी जैसे स्थानीय अनाज सिर्फ खेत की उपज नहीं हुआ करते थे, बल्कि हमारी खानपान की परंपरा और बचपन के पोषण का हिस्सा भी थे। आजकल बच्चों को बाजार के पैकेट वाले खाने, अलग अलग स्वाद और तुरंत तैयार होने वाली चीजें ज्यादा आकर्षित लगती है।
0: जी हाँ,
1: लेकिन श्रोता साथियों, क्या हमने कभी सोचा है कि हमारे अपने गांव में पैदा होने वाले अनाज और उनसे बनने वाले पारंपरिक भोजन बच्चे के लिए कितने उपयोगी हो सकते हैं? तो आज कार्यक्रम सच्चा बचपन में हम बात करेंगे हमारे स्थानीय अनाज और हमारे बचपन की ताकत की।
0: बिल्कुल अंजलि जी, तो बातें इस विषय को लेकर श्रोता साथियों से ढेर सारी होंगी, लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है,
1: बिल्कुल,
0: तो क्यों ना दोस्तों को पहले यहाँ एक प्यारा सा गीत हम सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: दोस्तों इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसे कि गीत से पहले बातचीत की शुरुआत हो चुकी है और विषय के बारे में भी हम आपको बता चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं हमारे स्थानीय अनाज और हमारे बचपन की ताकत को लेकर।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, अगर यहाँ पर श्रोता साथियों को हम सबसे पहले स्थानीय अनाज की पहचान करवाएं तो हमारे क्षेत्र में मौसम और जमीन के अनुसार अलग अलग अनाज उगाए जाते हैं। इनमें मक्का, बाजरा, ज्वार, रागी और अन्य पारंपरिक अनाज भी होते हैं।
1: बिल्कुल
0: साथियों, इन अनाजों से हमारे घरों में कई तरह के भोजन बनाए जाते रहे हैं, जैसे कि रोटी, दलिया, खिचड़ी, लापसी और दूसरे कुछ पारंपरिक पकवान। हम देखते हैं कि इनका एक खास पहलू ये भी है कि ये भोजन हमारे स्थानीय खाद्य परंपरा से जुड़े हुए हैं, यानी कि जो अनाज हमारे आसपास पैदा होते हैं वही हमारी रसोई और थाली तक पहुंचते हैं।
1: बिल्कुल कशिश, यही श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि बच्चों को केवल ये कहना कि यह अनाज खाओ ये अच्छा है हमेशा काम नहीं करता। जरूरी है कि भोजन को बच्चों के लिए स्वादिष्ट और आकर्षक तरीके से तैयार किया जाए।
0: बिल्कुल,
1: जैसे कि बाजरे या मक्की की रोटी के साथ दाल या सब्जी, अलग अलग अनाज मिलाकर पौष्टिक खिचड़ी बनाए, रागी या बाजरे से दलिया बनाए, मक्का और दूसरे स्थानीय अनाज से घर का नाश्ता तैयार करें। बच्चे की पसंद के अनुसार पारंपरिक भोजन को थोड़ा अलग रूप देकर परोसे, इससे बचपन अपने स्थानीय भोजन से भी जुड़ता है और खाने में रुचि भी लेने लगता है।
0: बिल्कुल
1: कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि परंपरा से सीख भी लेनी जरूरी है, यानी कि बच्चे जो हैं वो हमारे घर के बड़े जो बुजुर्ग हैं उनसे केवल पुराने समय की बातें नहीं सुनते बल्कि उनके पास के भोजन, खेती से जुड़ा अनुभव भी ले सकते हैं।
0: जी जी।
1: दादी या नानी से पूछिए कि आप बचपन में क्या खाती थी, हमारे गांव में पहले कौन कौन से अनाज उगते थे, इन अनाजों से कौन कौन से पकवान बनते थे। ऐसी छोटी सी बातचीत को अपने भोजन, खेती और संस्कृति से हम जोड़ सकते हैं।
0: बिल्कुल अंजलि जी, ऐसे में हमारे श्रोता साथियों से हम कहना चाहेंगे कि दोस्तों हमें बच्चों को सिखाना है कि पैकेट का खाना रोज नहीं घर का खाना छोड़े नहीं, अपने खेत का अनाज अपनाएं और स्वस्थ बचपन की ओर बढ़ते जाएं। हम कहना चाहेंगे कि आज की बात हमें ये समझाती है कि हमारी थाली में मौजूद स्थानीय अनाज सिर्फ खाने की चीज नहीं है, इनके साथ हमारे खेत, हमारा परिवार, परंपरा और गांव की पहचान भी जुड़ी हुई है।
1: जी जी।
0: श्रोता साथियों, अपने घर में आज किसी बड़े से आप जरूर पूछिएगा कि आपके गांव में कौन कौन से पारंपरिक अनाज उगाए जाते थे और उनसे कौन सा भोजन बनाया जाता है। शायद हो सकता है साथियों कि आपको अपने ही घर की रसोई में ऐसे कई स्वादिष्ट चीजों के बारे में पता चल जाए जिन्हें आपने पहले कभी ध्यान से ही नहीं जाना।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि अंजलि जी बताया जाता है कि जिस बच्चे को अपने भोजन की पहचान होती है वह अपनी मिट्टी और अपनी परंपरा से भी जुड़ा हुआ होता है।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। तो इस तरीके से हम श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि हम बच्चों को ये बताएं कि किस तरीके से हमारे जो परंपरागत अनाज हैं अभी के समय में उनका जो महत्व है और ज्यादा बढ़ गया है।
0: बिल्कुल,
1: हमारे जो बुजुर्ग हैं वो इस अनाज को खाते थे और उनका जो स्वास्थ्य है वो हमेशा अच्छा बना रहता था। तो श्रोता साथियों, हमें हमारे बच्चों को ये बात बतानी है कि जो हम अनाज बोलते जा रहे हैं जैसे कि रागी, बाजरा, कुरी, कोदो, कांग, ये हमारे पारंपरिक अनाज कभी हुआ करते थे और इनके सेवन से हम हमेशा हस्त पुष्ट रहा करते थे।
0: बिल्कुल,
1: अभी भी हमें अलग तरीके से बच्चों के खाने में, थाली में इन सारी चीजों को शामिल करने की जरूरत है क्योंकि हम खुद बड़े भी इन सारी चीजों को भूलते जा रहे हैं। अगर हम इन्हें अपनाएंगे तो हमारे बच्चे स्वतः ही इन सारी चीजों के महत्व को समझ पाएंगे।
0: बिल्कुल अंजलि जी, ये बात आपने सही कही। तो जैसा कि कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों से हमारी बातें बहुत अच्छी चल रही है, ये बातें हम आगे भी करते रहेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर क्यों ना एक और गीत के साथ पहले मनोरंजन करें।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वावी रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे बहुत अच्छी बातें चल रही है, यही श्रोता साथियों आपको कहना चाहेंगे कि बच्चों के स्वस्थ बचपन की शुरुआत केवल इस बात से नहीं होती है कि वे कितना खाना खाते हैं, बल्कि कशिश इस बात से भी होती है कि उनकी थाली में क्या और कैसे शामिल किया जा रहा है।
1: बिल्कुल,
0: हमारे आसपास उपलब्ध स्थानीय अनाज, उनसे तैयार होने वाले पारंपरिक भोजन हमें यह अवसर देते हैं कि बच्चे कम उम्र से ही अपने क्षेत्र के भोजन की विविधता को समझे। आज जरूरत है कि बच्चों को भोजन के बारे में केवल ये खाओ या ये मत खाओ कहने के बजाय उन्हें भोजन की कहानियों से जोड़ा जाए, उन्हें बताया जाए कि अनाज खेत में कैसे उगता है, किसान उसे कैसे तैयार करता है, घर की महिलाएं उससे कौन कौन से पकवान बनाती है
1: जी।
0: और पहले के समय में परिवार किस तरह मिल बैठकर भोजन किया करते थे। जब बच्चा भोजन के पीछे की पूरी प्रक्रिया समझता है तो उसके मन में खाने के प्रति सम्मान भी पैदा होता है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, साथियों में बच्चों को बीज बचाने की परंपरा से भी अवगत करवाना चाहिए। जैसे कि अंजलि जी, पहले कई परिवार अगली फसल के लिए कुछ अच्छे बीज अलग रखकर सुरक्षित रखते थे।
0: बिल्कुल,
1: इसे बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण सीख बनाया जा सकता है। जैसे कि बच्चों को हम ये बता सकते हैं कि बीज केवल आज की फसल नहीं आने वाली फसल की भी शुरुआत होती है।
0: जी जी,
1: अलग अलग पारंपरिक किस्मों की जानकारी और उन्हें सुरक्षित रखने का ज्ञान हमारी कृषि विरासत का हिस्सा है श्रोता साथियों। जैसे कि एक दाना हमारी थाली तक कैसे पहुंचता है ये भी हम बच्चों को बताएं।
0: बिल्कुल,
1: जैसे बीज से खेती की तैयारी की जाती है, फिर बुवाई होती है, फिर पौधों की देखभाल होती है, फसल उगती है, फिर उसकी कटाई की जाती है, सफाई की जाती है, भंडारण किया जाता है, साथ ही भोजन बनता है, फिर हमारी थाली तक पहुंचता है।
0: बिल्कुल
1: श्रोता साथियों, ये जो पूरा चक्र है वो हमें बच्चों को बताना है। इस पूरी यात्रा को बच्चों के लिए कहानी की तरह प्रस्तुत कर सकते हैं, इससे उन्हें किसान की मेहनत और भोजन के पीछे लगने वाले समय की समझ विकसित होंगी।
0: बिल्कुल कशिश, माता पिता भी बच्चों को भोजन चुनने और बनाने की छोटी छोटी गतिविधियों में शामिल कर सकते हैं। अनाज साफ करते समय उनके बारे में बताना, दादी नानी से पुराने पकवानों की विधि पूछना या बच्चे के साथ मिलकर कोई पारंपरिक व्यंजन तैयार करना, ये छोटी गतिविधियां बच्चे के लिए सीखने का अनुभव बन सकती है। और सबसे जरूरी बात, बच्चों की थाली में विविधता होनी चाहिए। केवल किसी एक अनाज को बार बार देने के बजाय उपलब्ध खाद्य पदार्थों के अनुसार अलग अलग अनाज, दालें, सब्जियां, फल और अन्य पौष्टिक चीजों को भोजन का हिस्सा बनाया जा सकता है। तो क्यों न आज से ही हम अपने घर में एक छोटी सी शुरुआत करें, बच्चों को बाजार की चमकदार पैकिंग के साथ साथ अपने खेत और अपनी रसोई की पहचान भी दे, क्योंकि बचपन में विकसित हुई भोजन की समझ आगे चलकर उसकी आदतों का हिस्सा बन सकती है। हमारी मिट्टी में उगा अनाज, हमारे घर में बना भोजन और परिवार के साथ बैठकर खाया जाने वाला, इन तीनों में बच्चों के लिए स्वाद के साथ सीखने का भी अवसर छिपा हुआ है।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, साथ ही इसमें स्कूल की भूमिका भी अहम हो सकती है। दोस्तों, हम स्कूल में बच्चों को स्थानीय अनाज से जुड़ी छोटी छोटी गतिविधियां करवा सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: जैसे कि अनाज को पहचानने की गतिविधि, अलग अलग दानों का संग्रह कैसे किया जा सकता है, ये गतिविधि हम अपना सकते हैं। स्थानीय अनाज के नाम लिख सकते हैं, परिवार के पुराने पारंपरिक व्यंजनों की जानकारी लेना और देना कर सकते हैं, किसान से खेती पर बातचीत करना और स्थानीय अनाज पर चित्र बनाना। अंजलि जी, इस तरह के विषय केवल बच्चों को कह सकते हैं कि उनकी ज्ञान तक ही सीमित नहीं रखेंगे, बल्कि बच्चों की रोजमर्रा की सीख का भी हिस्सा बन सकते हैं।
0: जी हाँ कशिश, बच्चों को भोजन की अच्छी आदत सिखाना किसी एक दिन का काम नहीं है, ये रोज की छोटी छोटी गतिविधियों से बनता है। जब बच्चा अपने घर में बनने वाले भोजन को देखता है, उसकी तैयारी को समझता है और अपने परिवार के साथ बैठकर उसे खाता है, तब भोजन उसके लिए केवल भूख मिटाने की चीज नहीं रहता, बल्कि उसके जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बन जाता है।
1: बिल्कुल,
0: हमारे पारंपरिक अनाजों की खासियत यह भी है कि वे हमें अपने क्षेत्र की परिस्थितियों और जीवन शैली से जोड़ते हैं। इसके बारे में बच्चों से बातचीत करने से उनमें खेती और किसानी के प्रति समझ विकसित की जा सकती है। बच्चा यह जान सकता है कि उसकी थाली तक पहुंचने वाले एक छोटे से निवाले के पीछे खेत में कितनी मेहनत होती है। इसलिए श्रोता साथियों, बच्चों को केवल ये न सिखाइए कि क्या खाना है, बल्कि ये भी सिखाइए कि भोजन कहाँ से आता है, उसे उगाने में कितनी मेहनत लगती है और हमारे परिवार की भोजन परंपरा में उसका क्या स्थान है। क्योंकि जिस बच्चे को अपने भोजन की कीमत समझ आती है वो भोजन को व्यर्थ करने से बचता है।
1: बिल्कुल,
0: उसे अपने आसपास की दुनिया को थोड़ा बेहतर ढंग से समझना शुरू करता है। यही छोटी सी समझ आगे चलकर जिम्मेदार और जागरूक जीवन की मजबूत नींव बन सकती है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, तो जैसा कि कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों से हमारी बातें आज ढेर सारी हो चुकी है और समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: बिल्कुल,
1: तो विदा हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना हमारे दोस्तों को यहाँ पर एक और प्यारा सा गीत सुनवाएं।
0: जी।

0: पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, बोलो।
1: पके पेड़ पर पका पपीता, पकड़ा पिंकी पपी का कपड़ा।
0: कपड़ा।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम सच्चा बचपन अभी ही समाप्त होता है। अंत में कार्यक्रम के माध्यम से आपसे यही कहना चाहेंगे कि हमारी थाली में आया हर दाना अपने साथ खेत की मेहनत, परिवार का अनुभव और हमारी परंपरा की कहानी लेकर आता है।
1: जी जी,
0: बच्चों को श्रोता साथियों अगर इस कहानी से जोड़ा जाए तो वे केवल भोजन को पहचानना नहीं बल्कि उनके पीछे छिपे श्रम, प्रकृति और संस्कृति का सम्मान करना भी सीखेंगे।
1: बिल्कुल,
0: अपने भोजन को जाने, अपनी परंपरा को समझे और अपने मिट्टी से जुड़े रहे। इन्हीं आशाओं के साथ श्रोता साथियों अब हम कार्यक्रम से विदा लेना चाहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही, गीत संगीत रहे, वो आपको जरूर पसंद आए होंगे।
1: बिल्कुल।
0: तो दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वाथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान।
0: जी हाँ,
1: हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पारेश्वर को।
1: नमस्कार।

0: जाहिर है ग्राम सभा में बोली बोले हैं तो फैसला निष्पुत है। वन अधिकार सिर्फ कानून नहीं ना जंगल तक की जरूर बोली रिश्तों है। जिस जंगल में हमसे है इन्होंने रक्षा कर रहे हैं, तो आओ बोला ने भागीदारी बढ़ावा, ग्राम सभा मजबूत बनावा, वे जंगल में भविष्य सुरक्षित करा। बोला ने आवाज विकास में असली पहचान है।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। जागृति बुन आपने कार्य सोचू है, अगर आप बूंदे रुकी जाएगा तो हूँ था नाना अंजलि बुन हूँ था का अरे जागृति बुन आपड़ी जे नदी है ई हुकी जाएगा, खेतर बंजर थे जाएगा ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा। ओ अंजलि बुन एटले मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है। होवे जागृति बुन हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है। होवे अंजलि बुन आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नीर राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बावारी पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा। होवे होवे जागृति बुन आपड़े भाई बहनो ने कहो कि पानी बचाओ पानी बचाओ ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो, जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो। वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: मारू नाम गिल्ली है ने मू मुन्नी नी मोटी बोन हूँ। एक दाड़ो स्कूल थे की आवी तो देखियो कि मुन्नी घणी रोई रही थी, तो मू हमजी के ने पानी नी तर लगी रही है, तो मू दूड़ी ने बा कने गई ने कीधु कि बाबा मुन्नी ने तर लगी है तो इन्हें पानी पिवड़ाव दे। बाए हफ्तिंग ना कही दीदू ने मने कीधू कि 100 महीना हुदी मुन्नी केवल इनी माँ नु दूध ज पिएगा ने अगर आपड़े मुन्नी ने कहीं भी खवड़ावंगा तो इन्हें दस्त लगी जागा। तो पसे बीजी वगत मुन्नी रोई तो मैंने कान में कही दीदू कि 100 महीना हुदी तने केवल माँ नु दूध ज पीवू है।
3: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है।
0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन। होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके, जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है। होवे भयन बोनू आ लक्षण आपने अपने में देखाए तो आपने अपने पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मे जाने एनीमिया ने निःशुल्क जाँच करावी सुवे। आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निशुल्क मले है। होपे एनीमिया ते की बचा बल्ले आपने ने खवाना में दाल पत्तेदार सब्जी गुड़ बाजरा तिल नींबू ने संतरा गोभी तरबूज आंवला टमाटर नु सेवन करवो सुवे। होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

कार्यक्रम खेतीवाड़ी हमरवारा हंग्र भाई बोनों ने आपनी बोन अंजलि नु राम राम। भाई बोनो आप हम रेडियो हो आप लोग सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM माते मैं आप सब नु स्वागत कर रहा हूँ हमारे आज ने कार्यक्रम खेतीवाड़ी में। जेम की भाई बोनो अमे हमारे टाइम माते हाजिर थी सह कार्यक्रम खेतीवाड़ी ने लेने एक नया विषय निहाते। तो भाई बोनो आज हमारी कार्यक्रम में आप तक की बातचीत में विषय है कि खरीफ में फसल पाकी जाते न हो संकेत है ने हर ते टाइम माते कटाई करी ने आपड़े आपड़े उत्पादन ने असल बनावी ने राखी शक। तो अणा विषय माते कार्यक्रम खेतीवाड़ी में अमारी आप तक घना कानी बात थाएंगा पर कार्यक्रम शुरू कर एने पहले आपने हमरा विदा गीत मोरे कर आपड़ी बात है। तो भाई बोनो आप हमर दरजू आपड़ू रेडियो आपड़ी बात है वागड़ रेडियो 90.8 FM माते है।

0: करती हूँ मैं वागड़ रेडियो परिवार में।
1: जी धन्यवाद
0: सर। जैसा कि आप हमारे कार्यक्रम खेतीवाड़ी से समय समय पर जुड़ते रहते हैं और खेती से जुड़ी विशेष जानकारी आप हमारे किसान भाई बहनों को देते हैं, तो आज हमारी कार्यक्रम में आपसे बातचीत का विषय है कि खरीफ की फसल कटने के संकेत पहचानना और सही समय पर कटाई करने के जो तरीके हैं वो हमारे भाई बहनों को कैसे पता होने चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं कि कुछ किसान भाई बहनों की कटाई चल रही है, कुछ की हो गई है और कुछ की अभी बाकी भी है, तो उन्हें सही संकेत कैसे पता रहे कि हाँ कि हमारी फसल पक चुकी है।
1: जी, तो बहुत अच्छा विषय है और अभी इस पर हम लोग जो है हमारे किसान भाई काम भी कर रहे हैं। तो जैसे हम बात करते हैं खरीफ की फसल की, तो खरीफ की फसल किसान की मेहनत, समय और संसाधनों का परिणाम होती है।
0: बिल्कुल।
1: तो बीज बोने से लेकर उसकी सिंचाई, निराई गुड़ाई, खाद डालना, रोग प्रबंधन बहुत प्रयास करते हैं, तो इसलिए फसल है जो सही समय से तैयार होती है। लेकिन अगर उसको सही समय से काटने के जो संकेत नहीं पहचाने या उसका समय पूरा होने से अगर पहले काटते हैं तो उसकी जो गुणवत्ता है वो प्रभावित हो सकती है और जो दाने हैं वो पूरी तरह से विकास नहीं होता है, तो इस कारण से आपके जो है बहुत सारे नुकसान आपको हो सकते हैं। कई बार क्या होता है कि देरी होने से कुछ सड़ने लगते हैं, जो पक्षी होते हैं वो भी ज्यादा नुकसान करते हैं, या फिर अगर फसल तैयार हो गई तो उसको काटते नहीं है तो हो सकता है कि मौसम की वजह से कुछ बारिश का प्रभाव भी पड़ सकता है।
0: बिल्कुल।
1: तो इसलिए ये जो समझ है हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है।
0: बिल्कुल। तो सर यही फसल पकने की जो पहचान है वो कैसे कर सकते हैं किसान भाई?
1: देखिए, एक्चुअली क्या होता है कि हमारे जो किसान भाई है वो बहुत ही उनके जो परंपरागत तरीके हैं वो बहुत अच्छे से उनको पहचान पाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि एक तो जो फसल है उसका जो दाना है या उसका जो फल लगा हुआ है तो उसके आकार को देखकर जो है लोग पहचान लेते हैं कि इसका विकास पूरी तरह से हो चुका है, मतलब ये पक चुका है। उसी तरह से क्या होता है कि जो नमी होती है जो फसल की वो धीरे धीरे धीरे धीरे कम होने लगती है, उसके दानों की भी और उसके जो पेड़ होता है, पौधा होता है उसकी भी। उसी तरह से अगर वो धीरे धीरे धीरे धीरे नमी कम हो रही है तो इसका मतलब वो पकने की दिशा में पहुंच रहा है। इसी तरह जो है जैसे फसलों को पकने के संकेत, जैसे अगर आप चाहें कि मैंने तो 2 महीने पहले बोई थी, लेकिन वो कैलेंडर की तारीख ही सब कुछ नहीं होता है कि मेरे 2 महीने हो गए मैं तो काट लेता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें जो निर्णय है वो हमारी फसल को देखकर उसका जो खुद स्वयं से अवलोकन करके उसकी पहचान करके ही करना चाहिए। तो जैसे हमारे परंपरागत जो तरीके होते हैं वो बहुत सामान्य हैं जिनसे हम पहचान सकते हैं। जैसे पौधों का रंग हरा जो रहता है तो वो धीरे धीरे धीरे धीरे पीला और सुनहरा लगने लगता है, तो उनका जो रंग चेंज होता है वो एक संकेत होता है कि फसल पक चुकी है। आप चाहे कोई भी फसल देख लो जो आपने लगा रखी है, मक्का है या आपने धान लगा रखा है, तो वो इस तरह का संकेत तो देते हैं आपको। इसी तरह से जैसे दूसरा एक ये है कि पत्तियां सूखने लगती है।
0: बिल्कुल।
1: आप जब उसको देखोगे खेत में जाके तो आपको लगेगा नीचे की जो पत्तियां वो ऊपर की ओर धीरे धीरे धीरे धीरे सूखती हुई आ रही है, तो इसका मतलब नीचे से ऊपर की ओर सूखने की तरफ अगर पौधा बढ़ रहा है तो मतलब वो पक चुका है।
0: बिल्कुल।
1: इसी तरह जैसे जो फलियां होती हैं या बालियां होती हैं या मक्के के बुट्टे हैं, उसका जो आकार है वो रंग जो है उसका प्रॉपर जैसे दाना होता है ना, जैसे अपने बोया वैसा रंग उसका हो जाता है।
0: बिल्कुल।
1: तब भी उसको हम पहचान सकते हैं। दूसरा एक है कि जब हम किसी फसल को काटते हैं तो आप उसके कुछ दानों को चेक करें, उसको दबा के देखें, बहुत कठोर हो जाता है इसका मतलब वो पक चुका है। अगर उसमें आपका नाखून अगर लग रहा है तो उसको थोड़ी और समय की जरूरत होती है।
0: बिल्कुल।
1: इसी तरह जो है जैसे हमारी जो फसलें हैं उनकी जो जड़ें होती है वहां पे आपको देखेंगे तो वो पूरी तरह से जो नीचे के पत्ते वो वहाँ जड़ों में गिर जाते हैं, तो इसका मतलब वो पक चुकी है। इस तरह हम देख सकते हैं। तो फसलों और पौधों का जो विशिष्ट रंग आपको बताए, जैसे कि हम जैसे बोते हैं या जैसे सामान्य दिखते हैं, अगर वैसा रंग आपकी उसमें निकल रहा है तो इसका मतलब कि वो पूरी तरह तैयार है और हम जो है उसको काट सकते हैं। इसका एक चीज और आप देख सकते हैं कि जो हमारी फसल है उसमें क्या होता है कि उसका रंग जब बदलता है तो उसकी चमक बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे आप किसी मक्के के खेत में आप देखोगे, पके हुए मक्के के खेत में, तो जब हरा होता है और जब वो पक जाता है तो उसकी चमक है उसकी बहुत तेज हो जाती है।
0: बिल्कुल।
1: तो इस तरह से हम उनको पहचान सकते हैं।
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। जैसा कि आपने फसल पकने के प्रमुख संकेतों के बारे में बताया जो सामान्य हर फसल में हमें दिखाई देते हैं, यही धान, मक्का, बाजरा और सोयाबीन की जो फसल है, अगर वो पके तो उसके क्या संकेत हैं जो हमारे किसान भाई बहनों को पता होनी चाहिए?
1: जी, तो जैसे हम बात करते धान की, तो धान में क्या होता है कि अधिकांश जो बालियां होती है धान की, वो पीला और सुनहरा रंग होने लगता है और वो आपको दूर से चमकदार, और उसकी जो पत्तियां होती है वो सूखने लगती है।
0: बिल्कुल।
1: तो इस तरह से उसकी अवस्था को देखकर, दूसरा उसके दाने को देखकर, हम उसको दबाकर देखकर उसको समझ सकते हैं कि तैयार है या और समय चाहिए। तो जो भाग है, अधिकांश भाग पौधे का पूरा पूरे खेत में, अगर वो पीला दिखाई देने लगे तो ये समझ लेना चाहिए कि वो कटाई के लिए तैयार है।
0: बिल्कुल।
1: इसी तरह हम बात करते हैं कि जैसे सही समय पर अगर धान को नहीं काटेंगे तो यहाँ आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है।
0: जी जी।
1: अगर ज्यादा सूख गई तो उसकी बालियां झड़ने लगेगी, हो सकता है मौसम खराब हो गया, पानी गिर गया, तो उसका धान खराब हो जाएगा।
0: बिल्कुल।
1: तो इस तरह हमें देखकर उसको तुरंत ही काट लेना चाहिए। इसी तरह मक्का की बात करें, मक्का के जो भुट्टे के ऊपर जो रेशे होते हैं उनको आप देखेंगे तो रेशे हैं वो सूख कर भूरे रंग के हो जाते हैं। आप देखोगे तो वो अभी जब ग्रीन होता है तो आपको थोड़ा सा डार्क ग्रीन दिखेगा, उसका कलर थोड़ा अलग दिखेगा, लेकिन जब वो पक जाते हैं एकदम भूरा हो जाता है वो, तो और दाने हैं वो कठोर हो जाते हैं, तो आपके मक्की तैयार है कटने के लिए। तो इस तरह से आप उसको पहचान सकते हैं। इसी तरह सोयाबीन की अगर हम बात करते हैं तो सोयाबीन में भी यही है कि जो फलियां हैं उनका रंग बदलता है, तो वो एक महत्वपूर्ण संकेत है। अधिकांश जो फलियां हैं आपकी, उसके पत्ते और फलियां दोनों पीली और भूरे रंग की होने लगेगी।
0: जी जी।
1: तो आप देखिए कि अच्छी तरह से वो विकसित हो चुकी है और किसान कटाई के लिए उसके लिए तैयारी कर सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो इस तरह से है जो उसका ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, जब हम बात करते हैं कि जब कोई भी फसल हो आप काटने की, तो हमें ये जरूर देखना चाहिए कि वो अधिक ना सूख जाए।
0: बिल्कुल।
1: तो उसमें आपका जो है नुकसान हो सकता है। दूसरा, ऐसा नहीं कि आप उसको 15 दिन पहले काट दे तब भी आपका नुकसान, तो उसमें क्या होगा कि जो फसल आप पहले काट लेंगे तो उसका विकसित जो दाना है वो पूरी तरह से नहीं होगा और पोषण की दृष्टि से भी वो परिपक्व नहीं रहेगा। तो ये चीजें हमें देखनी चाहिए।
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि फसल कटाई के समय हमें उनके संकेतों को कैसे ध्यान में रखना है और समय का कैसे ध्यान रखने की जरूरत है, वहीं कटाई के बाद कौन कौन सी सावधानी हमारे किसान भाई बहनों को रखनी है?
1: जैसे हम कटाई के बाद सावधानी की बात करें तो सबसे पहले तो ये है कि कटाई के बाद है जो उसको अच्छे तरीके से सुखाना चाहिए, साफ जगह पे जो आपकी फसल है उसको रखनी चाहिए। जैसे आपने खेत में काट दी फसल तो उसको लंबे समय तक पड़ा नहीं रखे, वो सूखते ही आप उसको एक अच्छी जगह जो साफ सुथरी तिरपाल बिछा कर उसको अच्छे से उसको रखना चाहिए, ताकि उसको नुकसान नहीं हो। नहीं तो आप जब उसको उठाएंगे तो हो सकता है आपके भुट्टे हैं या बालियां हैं वो टूटने लगेगी, गिरने लगेगी, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, गीली फसल को सुखाए या बिना सुखाए उसको आपको एक साथ बंद नहीं करना है। जैसे हमारे कई लोग देखेंगे कि आपको उसका ढेर लगा देते हैं बिना सूखी का, तो जो नीचे है उसमें फफूंद आ जाती है बीच में, तो ध्यान रखें पूरी तरह सूखने बाद इकट्ठा करके फिर उसको निकाले।
0: जी जी।
1: तो इस तरह से ध्यान रखना चाहिए। दूसरा जो है ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर कुछ ऐसे फलियां हैं या ऐसे पौधे हैं जो में फंगस लगा हुआ है या उसमें कुछ रोग है तो आप उसको अलग कर लें।
0: बिल्कुल।
1: तो इस तरह से हमें इन सावधानियों का ध्यान रखने की जरूरत है।
0: बिल्कुल सर। तो जैसा कि आप कार्यक्रम में बहुत अच्छी तरीके से ये बता रहे हैं कि खरीफ की फसल पकने के संकेत पहचानना, कटाई के सही समय का ध्यान रखना क्यों जरूरी है, तो ढेर सारी बातों से आपने हमें अवगत करवाया। यही अंत में हमारे जो समुदाय के साथी हैं उन्हें आप कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: मैं सभी को ये संदेश देना चाहूंगा कि कटाई का समय जो है कैलेंडर की तारीख नहीं है, आप जो है अपनी फसल का अवलोकन करें, उसकी फलियां, बालियां, दाने, रंग और उसका बदलाव का विशेष ध्यान रखते हुए कटाई का निर्णय ले।
0: बिल्कुल। तो सर मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
1: जी धन्यवाद।
0: નાયન બોનો જેમ કે આપણે આપણા વ્યાસમાં અંગેલાલજી જોડે તકા હતા ને એણે આપણને ઘણી અસલ તરીકા થકી ઘણા આકાની વાતે બતાડી હૈ કે ફસલ પાકવું હું કહેવાય હે, ફસલ પાકવાના હું સંકેત હૈ, હર તે અલગ અલગ ફસલ પાકવાના જે સંકેત હૈ આપણને સમજવાની જરૂરત હૈ, ને એની સાથે એણે એ ભી બતાડ્યું કે આપણે કટાઈ બાદ આપણે જે ફસલ હૈ એની હર તે વ્યવસ્થિત તરીકા થકી આપણને રાખવાની જરૂરત હૈ। તો આશા કરો હો કે આ હંગરી વાતે આપને ગમી હોંગા, કેમ કે એવી ટાઈમ થઈ ગયો હે આપણે અણસ કાર્યક્રમ તકી સૂટા પડવાનું, તો સૂટા તો પડ પણ સાથે પહેલે હમરી લાઈક ઓર ગીત ને મોરે પડો સૂટા।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है। जी हाँ साथियों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर। स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार। श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर। लेकर हाजिर है श्रोताओं कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से अंजलि हमारी बात रहने वाली है भाषाओं की विविधता, संवाद की शक्ति और एकता को लेकर। श्रोता साथियों, शब्द अलग हो सकते हैं, बोलने का अंदाज अलग हो सकता है, भाषा अलग हो सकती है, लेकिन भावनाएं अक्सर एक जैसी होती है। भारत की पहचान केवल उसकी विशाल जनसंख्या, भौगोलिक विविधता या सांस्कृतिक परंपराओं से नहीं है, बल्कि यहाँ बोली जाने वाली बहुत सारी भाषाओं और बोलियों से भी है।
1: बिल्कुल,
0: हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में अलग भाषा और बोली सुनाई देती है। कहीं हिंदी, कहीं गुजराती, कहीं मराठी, कहीं बंगाली, कहीं तमिल, कहीं तेलुगु, पंजाबी, उर्दू, राजस्थानी और कई सारी स्थानीय बोलियां हमारे जीवन का हिस्सा है।
1: बिल्कुल,
0: इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से हम कहना चाहेंगे कि भाषा केवल बातचीत करने का माध्यम नहीं श्रोताओं, भाषा हमारी संस्कृति, परंपरा, इतिहास, भावना और पहचान को अपने भीतर समेटे रहती है। जब अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग एक दूसरे की बात सुनते हैं, समझते हैं, तब संवाद का रास्ता खुलता है और यही संवाद समाज में एकता को मजबूत करता है।
1: बिल्कुल जागृति जी, तो आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से इस विषय पर ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत का पहला गीत क्यों ना हम हमारे श्रोता साथियों को सुनवा दें।
0: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहें कार्यक्रम सच्चा स्वराज में।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि गीत से पहले विषय से भी अवगत करवाया था और हमारी बातचीत भी रही थी, बातचीत का विषय था भाषाओं की विविधता, संवाद की शक्ति और एकता।
1: बिल्कुल, तो जागृति जी, अब यही बात करते हैं भाषाओं की विविधता हमारी ताकत को लेकर। श्रोता साथियों, भारत को विविधताओं का देश कहा जाता है। हमारे यहाँ खान पान, पहनावा, रीति रिवाज और त्योहारों में विविधता दिखाई देती है।
0: बिल्कुल,
1: इसी तरह भाषाओं और बोलियों में भी अद्भुत विविधता है। किसी क्षेत्र की भाषा वहाँ के लोगों के जीवन और संस्कृति से जुड़ी होती है। लोकगीतों, लोक कथाओं, कहावतों और पारंपरिक ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कहना चाहेंगे जागृति जी कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय बोलियां आज भी लोगों के बीच आत्मीयता और अपनापन पैदा करती है। जब कोई व्यक्ति अपनी मातृभाषा में बात करता है तो वह अपने विचारों और भावनाओं को अधिक सहजता से व्यक्त कर पाता है। इसलिए भाषाओं की विविधता को दूरी का कारण नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक संपदा के रूप में देखना चाहिए।
0: जी हाँ अंजलि, क्योंकि बच्चा सबसे पहले जिस भाषा को अपने परिवार से सुनता है और सीखता है वो उसके लिए केवल भाषा नहीं होती बल्कि उसके बचपन की यादों और भावनाओं से जुड़ी होती है। माँ की लोरी, दादी नानी की कहानी, परिवार की बातचीत और गांव के लोकगीत, इन सब में हमारी मातृभाषा की मिठास होती है। मातृभाषा व्यक्ति को अपनी जड़ों से जोड़ती है। अपनी भाषा पर गर्व करना अच्छी बात है श्रोताओं, लेकिन इसके साथ दूसरी भाषाओं का सम्मान करना भी उतना ही जरूरी है।
1: जी हाँ,
0: जैसे कि संवाद की बात करें अंजलि, तो संवाद का अर्थ केवल बोलना नहीं होता। संवाद का अर्थ होता है अपनी बात कहना, दूसरों की बातों को ध्यान से सुनना और एक दूसरे को समझने का प्रयास करना। कहा गया है श्रोता साथियों कि जहाँ संवाद होता है वहाँ गलत फहमियों को दूर करने का अवसर मिलता है। परिवार में संवाद रिश्तों को मजबूत करता है। गांव में संवाद सामुदायिक समस्याओं के समाधान का रास्ता बनता है। विद्यालय में संवाद बच्चों के सीखने को बेहतर बनाता है और समाज में संवाद लोगों को एक दूसरे के करीब लाता है।
1: बिल्कुल,
0: इस तरह हम कह सकते हैं कि कई बार समस्या भाषा की नहीं बल्कि एक दूसरे को समझने की इच्छा की होती है। अगर हम सामने वाले की बात को धैर्य पूर्वक सुन रहे हैं, उसके शब्दों और भावनाओं को समझने का प्रयास कर रहे हैं तो भाषा की अलग अलग सीमाएं भी छोटी लगने लगती है।
1: बिल्कुल जागृति जी, यही अब बात आती है अलग भाषा लेकिन एक भावना।
0: जी हाँ
1: श्रोता साथियों, भारत में अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग एक साथ रहते हैं। उनके शब्द अलग हो सकते हैं लेकिन प्रेम, सम्मान, करुणा, सहयोग और अपनापन जैसी भावनाएं सबके लिए समान है। एक माँ अपने बच्चे को चाहे किसी भी भाषा में पुकारे उसमें ममता समान होती है। किसान चाहे अपनी स्थानीय बोली में अपनी समस्याएं बताए या किसी दूसरी भाषा में, उसकी मेहनत और उम्मीद वही रहती है। यही भावना हमें सिखाती है कि भाषा अलग होना मन अलग होने का प्रमाण नहीं है। भाषा के कारण दूरी नहीं श्रोता साथियों बल्कि संवाद से नजदीकी आती है। कभी कभी हम देखते हैं जागृति जी कि अलग भाषा बोलने के कारण लोगों के बीच संकोच पैदा हो जाता है।
0: बिल्कुल,
1: हमें इस संकोच को दूर करने की जरूरत है। यदि हमें किसी की भाषा समझ नहीं आती तो उसका मजाक बनाने के बजाय उसे समझने का प्रयास करना चाहिए। कुछ शब्द सीखना, ध्यान से सुनना और सरल भाषा में बातचीत करना, ये छोटे कदम लोगों के बीच बड़ी नजदीकी पैदा कर सकते हैं। आज मोबाइल और इंटरनेट ने अलग अलग भाषाओं के लोगों को एक दूसरे से जुड़ने के नए अवसर दिए हैं। अनुवाद की सुविधाओं और डिजिटल माध्यमों ने भाषा की दूरी को काफी हद तक कम किया है।
0: बिल्कुल अंजलि, और जैसा कि हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो इसी इन्हीं बातचीतों को आगे बढ़ाते हुए हम हमारे श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि सामुदायिक जीवन में भाषा की भूमिका बहुत जरूरी है। गांव और समुदाय के स्तर पर भाषा का महत्व और भी बढ़ जाता है। जब किसी बैठक, ग्राम सभा या सामुदायिक कार्यक्रम में लोगों की भाषा और बोली का सम्मान किया जाता है तो लोग अपनी बात अधिक आत्मविश्वास में रखते हैं। सामुदायिक रेडियो भी इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। स्थानीय भाषा और बोली में प्रसारित कार्यक्रम लोगों तक जानकारी को सहज रूप में पहुंचाते हैं। खेती, स्वास्थ्य, शिक्षा, सरकारी योजनाओं, पर्यावरण और स्थानीय मुद्दों से जुड़ी जानकारी जब लोगों की समझ में आने वाली भाषा में मिलती है तो उसका प्रभाव और अधिक हो जाता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि भाषा केवल सूचना पहुंचाने का माध्यम नहीं रहती बल्कि समुदाय की आवाज बन जाती है।
1: बिल्कुल जागृति जी, तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हम ढेर सारी बातों को जान पा रहे हैं। ये बातें निरंतर आगे और भी यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी हाँ।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि आज कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं भाषाओं की विविधता, संवाद की शक्ति और एकता को लेकर, जिसमें जागृति जी गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना। यही बात करें बच्चों और युवाओं की भूमिका की, तो श्रोता साथियों, भाषा की विविधता को आगे बढ़ाने में बच्चों और युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है।
1: बिल्कुल,
0: आज के युवा एक से अधिक भाषाएं सीख रहे हैं, यह अच्छी बात है, क्योंकि नई भाषाएं सीखने से ज्ञान और संवाद के अवसर बढ़ते हैं। लेकिन नए भाषाएं सीखते समय अपनी मातृभाषा और स्थानीय बोली को भूलना नहीं चाहिए। घर में बुजुर्गों से उनकी भाषा में बातचीत करना, लोकगीत और लोक कथाएं सुनना और स्थानीय शब्दों को जानना हमारी भाषाई विरासत को जीवित रखने में मदद कर सकता है। इसलिए युवा अगर अपनी स्थानीय भाषा को आधुनिक तकनीक से जोड़े तो वह भाषा नई पीढ़ी तक नए रूप में पहुँच सकती है।
1: बिल्कुल,
0: यही बात करें जागृति जी भाषा का सम्मान और व्यक्तिगत सम्मान की, तो श्रोता साथियों, किसी भी भाषा का सम्मान करना वास्तव में उनके व्यक्तित्व और संस्कृति का सम्मान करना है।
1: बिल्कुल,
0: हमें किसी व्यक्ति की भाषा, उच्चारण या बोली के कारण उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए। एक संवेदनशील समाज वही है श्रोता साथियों, जहाँ व्यक्ति बिना डर के अपनी बात कह सके।
1: जी हाँ,
0: भाषा को लेकर सम्मान और संवेदनशीलता समाज में बराबरी और भाईचारे की भावना को मजबूत करती है।
1: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि भाषा का सम्मान व्यक्ति के सम्मान को लेकर, यही अगर बात करें एकता के मजबूत आधार को लेकर, तो एकता का अर्थ ये नहीं है कि सभी लोग एक जैसी भाषा बोले या एक जैसी संस्कृति अपनाएं। सच्ची एकता तो विविधताओं के बीच साथ रहने में है। हम अलग अलग भाषाएं बोल सकते हैं, अलग अलग परंपराएं निभा सकते हैं, अलग अलग क्षेत्रों से हो सकते हैं, फिर भी एक दूसरे के सम्मान और सहयोग से एक मजबूत समाज बना सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: भारत की खूबसूरती इसी विविधता में है। अनेक भाषाएं मिलकर भारत की सांस्कृतिक तस्वीर को और सुंदर बनाती है। हमें क्या करना चाहिए इसको लेकर हमारे श्रोता साथियों को अंजलि हम बताएं, तो श्रोता साथियों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको ये कहना चाहेंगे कि भाषाई विविधता को मजबूत बनाने के लिए हमें कुछ छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना होगा।
0: बिल्कुल,
1: जैसे कि अपनी मातृभाषा और स्थानीय बोली का सम्मान करना होगा, दूसरी भाषा और बोलियों का भी सम्मान करना होगा, किसी की भाषा या उच्चारण का मजाक हमें नहीं बनाना है, बच्चों को अलग अलग भाषाएं सीखने के लिए प्रोत्साहित करना है, साथ ही स्थानीय लोकगीत, लोक कथा और कहावतें भी सुरक्षित रखनी है, सामुदायिक कार्यक्रमों में स्थानीय भाषा का उपयोग बढ़ाना है, संवाद करते समय बोलने के साथ साथ सुनने पर भी ध्यान देना है, साथ ही भाषा को लोगों को जोड़ने का माध्यम बनाए, बांटने का नहीं, ये भी हमारे बातों में होना चाहिए।
0: जी हाँ जागृति जी, क्योंकि भाषा की खूबसूरती उनके अलग होने में है और संवाद की ताकत एक दूसरे को समझने में है।
1: बिल्कुल,
0: हमारी बोली अलग हो सकती है, हमारे शब्द अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारी संवेदनाएं हमें जोड़कर रख सकती है। जब हम एक दूसरे की भाषा का सम्मान करते हैं तो हम केवल शब्दों का सम्मान नहीं करते श्रोता साथियों, बल्कि उस भाषा के साथ जुड़ी पूरी संस्कृति और समाज का सम्मान करते हैं। इसलिए हमें ऐसा समाज बनाना है जहाँ हर भाषा को सम्मान मिले, हर आवाज को सुनने का अवसर मिले और हर व्यक्ति अपनी बात कहने में सहज महसूस करे।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि अलग अलग भाषाएं हमारी पहचान है, संवाद हमारी संस्कृति है और एकता हमारी सबसे बड़ी ताकत। भाषा अनेक, भाव एक, संवाद अनेक लेकिन उद्देश्य एक, विविधता अनेक लेकिन भारत एक होना चाहिए।
1: बिल्कुल अंजलि, तो हमारे श्रोता साथियों को इस कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहेंगे कि साथियों, तो क्या एकता का मतलब ये है कि हम सभी एक ही भाषा बोलें? बिल्कुल नहीं। सच्ची एकता का अर्थ है कि अलग अलग भाषा और संस्कृतियों के होते हुए भी एक दूसरे का सम्मान करना और साथ मिलकर आगे बढ़ना, यानी कि हमारी विविधता ही हमारी खूबसूरती है और संवाद उस विविधता को एकता में बदलने वाला पुल है। तो श्रोताओं, आज से जब भी आपको कोई अलग अलग भाषा या बोली सुनाई दे, उसे दूरी का कारण न समझे, उसे भारत की विविधता की एक सुंदर आवाज समझे, अपनी भाषा पर गर्व करे, दूसरों की भाषा का सम्मान करे और संवाद का रास्ता हमेशा खुला रखे, क्योंकि भाषाएं अनेक, भाव एक, संवाद अनेक, उद्देश्य एक, विविधता अनेक लेकिन भारत एक।
0: बिल्कुल, तो श्रोता साथियों, जैसा कि कार्यक्रम में हमारी ढेर सारी बातें रही कि किस तरीके से भाषा अलग अलग होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सभी एक ही हैं। आशा करते हैं कि ये सभी बातें आपको अवश्य पसंद आई होगी। तो श्रोता साथियों, अब समय हो चला है इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे लेकिन जाने से पहले सुन लेते हैं एक और प्यारा सा गीत।
1: बिल्कुल,

0: साथ ही इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से जो भी बातें रही वो बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागट रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वाकथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारे ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन तो आयरन की भरपूर तत्व करो भोजन होवे, क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके, जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवो, आ सब एनीमिया ना लक्षण है। होवे भयन बोनू, आ लक्षण आपने आपने में देखाए तो आपने आपने पाए वारा राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाइने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे। आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है। होवे एनीमिया ते की बचा बल्ले आपने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे। होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा। वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। थारी में पासो लावो चूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो। मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राखंगा। वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM पर।

कार्यक्रम घूमर हमरवारी अमरी हेती बोन ने आपनी बोन अंजलि नु राम राम बोने आप हमरी रहो आपनो सामुदायिक रेडियो फगर रेडियो 90.8 FM माते ने आप सबनो घणे मान स्वागत कर रहो हमारे आज ने कार्यक्रम घूमर में जिम की भाई बोनो अमे हमारे टाइम माते हाजिर थी जहां कार्यक्रम घूमर ने लेने एक नया विषय ने हाथी तो बोने आज हमारी कार्यक्रम में अब तक की बातचीत में विषय है की अपनी जी किशोरी बालिकाएं हैं इन्होंने आज डिजिटल दुनिया साली रही है इनमें सुरक्षित हरते राख कई कई चीजों नु इन्होंने ध्यान रखो है ने का इन्होंने हाथे थी जात हरते इन्होंने इन तक लड़वो है तो अणो विषय माते कार्यक्रम घूमर में हमारी आप तक की घनाकानी बात थाएंगा पर कार्यक्रम शुरू कर इन्हें पहले आपने हम रविदा गीत न मोरे कर अपनी बात है तो भाई बोनो आप हमर तो रेजू आप रेडियो अपनी बात है वग रेडियो 90.8 FM माते है

0: માઇનમોનું ગીત તો આયશો પૂરું, અને ગીત બાદ એક વખત ફરી આપ સબનું ઘણેમાન સ્વાગત કરો હો અમારે આજની કાર્યક્રમ ઘુમર મેં. જેમ કે બોનું ગીત કે પહેલા આપને વિષય બતાડ્યું હતું કે ડિજિટલ દુનિયા મેં આપણી જે કિશોરી બાલિકાએ હે એણની સુરક્ષાને લઈને આજે આપણે ઘણા ખાની વાત કરવા વાળા હો. તો અણ વિષય માટે વાતચીત કરવા બદલે આજે આપણે કાર્યક્રમ થકી વિષય વિશેષજ્ઞ મધુબોન જોડી રહી. તો સપ્તકી પહેલા આપણે સાંભળી લણની વાત મોરે કરો આપણી વાતે. મેમ નમસ્કાર.
1: નમસ્તે અંજલી.
0: મેમ આપકા બહોત બહોત સ્વાગત કરતી હું મેં વાગડ રેડિયો પરિવાર મેં.
1: વાગડ રેડિયો સે જુડકર મુજે બહોત ખુશી હોતી હૈ. આપ મુજે ઇસ તરહ કે અવસર દેતે હો ઉસકે લિયે આપકો બહોત બહોત ધન્યવાદ.
0: બિલકુલ. તો જૈસા કી મેમ આજ આપ હમારે કાર્યક્રમ ઘુમર સે જુડ રહી હૈ ઓર આપ હમેશા જબ ભી કાર્યક્રમ સે જુડતી હૈ તો મહિલાઓ કે જીવન સે જુડી ઢેર સારી જો બાતે હૈ વો ઉન્હે બતાતી હૈ કે કૈસે ઉન્હે અપને જીવન કો જીના ચાહિયે. યહીં અભી કે સમય મેં હમ દેખ રહે હૈ કે ડિજિટલ દુનિયા કા દોર ચલ રહા હૈ ઓર એસે મેં કિશોરિયા જો હૈ ઉનકી સુરક્ષા કા ધ્યાન હમે રખના બહોત જરૂરી હૈ. તો આજ સબસે પહેલે આપ હમે યહી બતાઈએ કે આજ કે સમય મેં કિશોરિયો કે લિયે ડિજિટલ દુનિયા કા ક્યા મહત્વ હૈ ઓર ઇસકા ઉપયોગ કરતે સમય કિન બાતો કા ઉન્હે ધ્યાન રખને કી જરૂરત હૈ.
1: सही बात है, आपने बिल्कुल सही विषय सुना है अंजलि. इस वक्त का जो दौर है डिजिटल दुनिया में किशोरियों की स्थिति को लेकर बहुत ही संवेदनशील दौर से गुजर रही है किशोरियां.
0: बिल्कुल.
1: तो आज की जो डिजिटल दुनिया में अगर हम किशोरियों की स्थिति को देखें तो किशोरियां सीखने, जानकारी लेने, प्राप्त करने और अपनी बात को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में डिजिटल दुनिया में घुस गई है. तो मोबाइल इंटरनेट के माध्यम से और पढ़ाई से जुड़ी जैसे जानकारियां अगर उनको लेनी है, स्वास्थ्य से जुड़ी है, पोषण है, सरकारी योजनाएं, छात्रवृत्ति, कौशल विकास, अपने अधिकारों के बारे में तमाम तरह की चीजें हैं जिनको ढूंढने के लिए वो डिजिटल दुनिया का सहारा लेती है. हमारे आदिवासी क्षेत्र में भी हम देख सकते हैं किशोरियों के लिए यह दुनिया उनके गाँव और स्थानीय सीमाओं से बाहर की जानकारी और नए अवसरों से जुड़ने का माध्यम बन रही है. लेकिन डिजिटल दुनिया का उपयोग बहुत सावधानी और समझदारी से करना जरूरी है.
0: बिल्कुल.
1: किसी भी अनजान व्यक्ति से अपनी निजी जानकारी, फोटो, पासवर्ड या ओटीपी साझा नहीं करना चाहिए. सोशल मीडिया पर मिलने वाली हर जानकारी सही हो यह जरूरी नहीं है. इसलिए किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी को विश्वसनीय स्रोत से जरूर जांचना चाहिए. ऑनलाइन किसी तरह का दबाव, डर, धोखा या गलत व्यवहार महसूस हो तो उसे छिपाने की बजाय अपने माता पिता, शिक्षक, समुदाय सहजकर्ता या किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करनी चाहिए.
0: बिल्कुल.
1: और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है इसमें कि मोबाइल और इंटरनेट हमारे सीखने और आगे बढ़ने के साधन है, लेकिन इनका उपयोग हमारी सुरक्षा, पढ़ाई और समय का ध्यान रखते हुए ही होना चाहिए.
0: बिल्कुल मैम. तो जैसा कि आप हमें बता रही हैं कि डिजिटल दुनिया में लड़कियां जो हैं वो अपनी सुरक्षा का ध्यान कैसे रखें, यही किशोरियों को अपना मोबाइल नंबर, पता, स्कूल की जानकारी या निजी फोटो ऑनलाइन साझा करने से क्यों बचना चाहिए?
1: अरे ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है जैसे कि अपन ने बात किया. तो इसमें क्या धोखा होने की बहुत बड़ी संभावनाएं रहती है. साइबर उत्पीड़न या सुरक्षा का खतरा बढ़ सकता है. इसलिए मोबाइल नंबर, अपना पता, स्कूल और निजी फोटो केवल भरोसेमंद लोगों के साथ ही साझा करें. सोशल मीडिया पर फर्जी प्रोफाइल और अनजान लोगों से होने वाली बातचीत को किशोरियां पहचाने, समझे और ज्यादा से ज्यादा अपने माता पिता और अपने समझदार घर के बुजुर्ग और वयस्कों के सानिध्य से इन चीजों को लेते हुए आगे बढ़े.
0: बिल्कुल. तो लेकिन जैसा कि हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर मैम फर्जी प्रोफाइल और अनजान लोगों से बातचीत आजकल आम हो गई है, तो ऐसे में किशोरियां कैसे पहचाने कि ये जो व्यक्ति है वो सही है या नहीं?
1: तो अगर किसी भी तरह का संदेह हो कि ये फर्जी लग रहा है मुझे, तो उसको ब्लॉक कर देना चाहिए. किसी भरोसेमंद बड़े को जरूर बताएं. और दूसरी बात ये कि किशोरियों को खुद को ये ध्यान रखना होगा कि वो किसी भी अनजान व्यक्ति से बार बार अपनी निजी जानकारी साझा नहीं करे. और अगर उसको लग रहा है कि कोई बार बार उससे संपर्क करने की कोशिश कर रही है या कर रहा है जो भी है, तो अगर उसको भरोसा नहीं है तो उसके साथ ज्यादा बातचीत में आगे ना बढ़े, उसको ब्लॉक कर दे. और किसी भी तरह के दबाव में आने की उसको जरूरत नहीं है. और किसी भी तरह की चीजों को छिपाने की बजाय सावधान हो जाए और आस पास से अगर जरूरत पड़ती है तो पुलिस का सहारा भी लिया जा सकता है.
0: बिल्कुल. और अगर मैम किसी किशोरी को ऑनलाइन परेशान किया जाए, धमकी दी जाए या गलत संदेश भेजे जाए तो उसे तुरंत क्या कदम उठाने चाहिए?
1: सबसे पहले तो उसको घबराना नहीं है, उससे आगे अगर अपन देखें तो जवाब देने के बजाय उस व्यक्ति को ब्लॉक कर दें, और फिर भी अगर वो परेशान करता है तो परेशान करने वाले संदेश या फोटो का स्क्रीनशॉट सुरक्षित रखें, और किसी भरोसेमंद अभिभावक जिससे वो बच्चा या बच्ची भरोसा करती है अपने परिवार में, शिक्षक हो सकता है या समुदाय सहयोग करता है, उनको तुरंत बताएं, और जरूरत पड़ने पर साइबर हेल्पलाइन 1930 या पुलिस की मदद भी लें।
0: बिल्कुल मैम, तो जैसा कि आपने बताया किस तरीके से महिला को कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनका ध्यान रखने की जरूरत है, यही मैम साइबर बुलिंग क्या है और इसमें किशोरियों के आत्मविश्वास और पढ़ाई पर किस तरह असर पड़ता है?
1: साइबर बुलिंग का मतलब मैं ऐसे समझाना चाहूंगी कि जो हमारी मोबाइल, सोशल मीडिया या इंटरनेट की जो दुनिया है, इनके माध्यम से किसी किशोरी को बार बार परेशान किया जाना, उसका मजाक उड़ाना, उसकी गलत बातें या फोटो को फैलाना या उसकी धमकी देना या उसकी फोटोज को वहां से लेके और कुछ अलग तरह से उसके साथ छेड़छाड़ करके और उसका प्रचार प्रसार करना, ये सारी चीजें साइबर बुलिंग के अंतर्गत आती है। इसका प्रभाव अगर हम देखें तो किशोरी के आत्मविश्वास कम होने लगेगा, उसका मन खराब रहने लगेगा, वो मानसिक पीड़ा के दौर से गुजरना शुरू करेगी, और उसकी शिक्षा पर, उसकी पढ़ाई पर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ेगा। वह डर और शर्म के कारण लोगों से बात करने, स्कूल जाने से बचने की कोशिश करेगी, और वो खुद को अकेला महसूस करने लगेगी। इसलिए ऐसी परेशानी को छिपाना नहीं चाहिए, किशोरी को किसी भरोसेमंद माता पिता, शिक्षक, समुदाय सहायककर्ता या परिवार के सदस्य से तुरंत बात करनी चाहिए, और जरूरी सबूत जो है इसमें बहुत जरूरी है कि उनको सुरक्षित अपने पास रखे। किसी भी तरह की चीजें अगर उसको दिखती है तो स्क्रीनशॉट लेना, वीडियो को रखना, सबको संभाल के रखे, ताकि अगर इस तरह की चीजों में पुलिस का सहारा लेने की जरूरत पड़े तो हमारे पास में तथ्य हो, और उन तथ्यों की मदद से हम जो भी हमको ये पीड़ा देने वाला व्यक्ति है उसको पकड़ के और उसको सजा दिलाई जा सके।
0: बिल्कुल मैम, अब यही मैं जानना चाहूंगी कि पासवर्ड और सोशल मीडिया अकाउंट को सुरक्षित रखने के लिए किशोरियों को कौन कौन से सावधानी अपनानी चाहिए?
1: किशोरियों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट की सुरक्षा के लिए कुछ छोटी लेकिन जरूरी सावधानियां रखनी बेहद जरूरी है। जैसे मजबूत और अलग पासवर्ड रखें। क्या है ना कि जैसे मान लो कि कई बार हम सोचते हैं कि मेरी जो जन्म तारीख है या जन्म का जो वर्ष है वो हमने चुन लिया, ये कुछ चीजें होती है जो आम होती है, और आम चीजों को जो साइबर अटैक करने वाला होता है वो सबसे पहले उन्हीं को कोशिश करता है। तो पासवर्ड हमेशा मजबूत होना चाहिए और कुछ अलग तरह की सोच का होना चाहिए, और फिर वो अपने पासवर्ड को याद नहीं रख सकती है तो अपने पास कहीं पर लिख के रख ले।
0: बिल्कुल।
1: और उसे किसी दोस्त या अनजान व्यक्ति के साथ साझा नहीं करना चाहिए अपने पासवर्ड, सिर्फ खुद को ही पता होना चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: फिर इसी तरह से जैसे कुछ OTP होते हैं या पिन होते हैं, या जैसे पासवर्ड की अगर हम बात करें, ये किसी को नहीं बताना चाहिए, और जहां तक संभव हो 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन की एक फैसिलिटी होती है उसको जरूर चालू करें। फिर इसमें क्या होता है, सोशल मीडिया की एक प्राइवेसी सेटिंग जो होती है उसको ऐसी रखें कि निजी जानकारी केवल भरोसेमंद लोगों तक ही सीमित रहे।
0: बिल्कुल।
1: अनजान लोगों की जो फ्रेंड रिक्वेस्ट उनके पास आती है उनको कभी भी स्वीकार ना करें, और किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक ना करें। सबसे जरूरी बात यह है कि अगर लगे किसी ने अकाउंट में गलत तरीके से प्रवेश किया है या कोई परेशान कर रहा है तो तुरंत पासवर्ड बदल लें। अगर उसने पासवर्ड बदल लिया है तो वो अकाउंट को सुरक्षित करेगा, और फिर उसके बाद में वो तुरंत किसी भरोसेमंद बड़े या शिक्षक को इस सारी चीज से अवगत कराए।
0: बिल्कुल। तो मैम, अगर किसी किशोरी की निजी फोटो या वीडियो बिना अनुमति के ऑनलाइन साझा कर दी जाए तो परिवार को किस तरह उसका साथ देना चाहिए और शिकायत कहाँ की जा सकती है?
1: देखो, सबसे पहले परिवार की क्या जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह की चीजों में किशोरी को डांटने या दोष देने की बजाय उसका भावनात्मक साथ देना चाहिए, और उसको समझाना चाहिए कि बिना अनुमति उसकी फोटो या वीडियो साझा करना उसकी गलती नहीं है।
0: बिल्कुल।
1: उसे अकेला ना महसूस होने दे, उसकी बात को शांतिपूर्वक सुने, फोटो या वीडियो को आगे किसी को ना भेजें और ना ही सोशल मीडिया पर दोबारा पोस्ट करें, और स्क्रीनशॉट, प्रोफाइल का नाम, लिंक और संदेश जैसे सबूत सुरक्षित रखें। संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रिपोर्ट और रिमूव का विकल्प भी होता है, उसको इस्तेमाल करें। और जो शिकायत करने की बात अगर अपन करते हैं तो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल होता है ऑनलाइन, हमारी गवर्नमेंट की तरफ से है, उस पर हम शिकायत दर्ज करवा सकते हैं या किसी नजदीकी पुलिस साइबर पुलिस स्टेशन पर भी हम संपर्क कर सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: और यदि किशोरी 18 वर्ष से कम उम्र की है तो मामले को विशेष गंभीरता से लेते हुए तुरंत अभिभावक, शिक्षक या किसी भरोसेमंद वयस्क की मदद लेनी चाहिए। और सबसे जरूरी है कि किशोरी को शर्मिंदा ना किया जाए बल्कि उसकी सुरक्षा और सम्मान को प्राथमिकता दिया जाए।
0: बिल्कुल मैम, आपने सही कहा। तो जैसा कि कार्यक्रम में आप हमें बहुत अच्छी बातों से अवगत करवा रही हैं, यही अब मैं जानना चाहूंगी कि माता पिता और परिवार किशोरियों को डिजिटल सुरक्षा सिखाते समय रोक टोक के बजाय किस तरह उसका भरोसा और संवाद बनाए रख सकते हैं।
1: देखो, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि किशोरी के साथ ऐसा भरोसेमंद माहौल बनाया जाए जहाँ पर वो बिना डर या डांट के अपनी ऑनलाइन वाली परेशानियों को साझा कर सके। उसके बाद माता पिता उसकी बात को धैर्य के साथ सुने, उसकी ऑनलाइन दुनिया को समझने की कोशिश करे और मिलकर तय करें कि मोबाइल और सोशल मीडिया का सुरक्षित तरीके से कैसे उपयोग किया जाना चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: पासवर्ड या हर गतिविधि पर लगातार निगरानी रखने की बजाय उसकी निजता को भी महत्व दे, सुरक्षा और जिम्मेदारी के बारे में उसको समझाएं। उसे ये भरोसा होना चाहिए कि अगर कोई अनजान व्यक्ति परेशान कर रहा है, गलत संदेश भेज रहा है या कोई फोटो वीडियो उसके साथ साझा करने का दबाव बना रहा है तो वो बिना शर्म या डर के परिवार को बता सके।
0: बिल्कुल।
1: परिवार का पहला कदम उसे दोष देना नहीं बल्कि उसकी बात सुनना और उसका साथ देना होना चाहिए। खासकर हम अगर इसको आदिवासी जनपद में समझे तो ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल माध्यम का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है।
0: बिल्कुल।
1: परिवार, किशोरी और समुदाय के बीच खुला संवाद डिजिटल सुरक्षा की मजबूत को नींव बनाने में मदद करे।
0: बिल्कुल मैम। तो जैसा कि आज हमने कार्यक्रम में किशोरी डिजिटल सुरक्षा को लेकर ढेर सारी बातें की हैं, तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
1: बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ।
0: मुने જેમ કે આપણે આપણા વ્યાસમાં આપણે મધુમેહ જોડે તક હતો ને એણે આપણને ઘણી અસલ તરીકા થકી ઘણા આકાની વાતે બતાડી હે કે સાયબર બુલિંગ હું કહેવાય હે ને અગર કિશોરી બાલિકા હાથે કાંઈ બી એવી ચીજ થઈ જા તો હર તે આપણને શિકાયત કરવી હે ને કઈ કઈ ચીજોનું આપણને ધ્યાન રાખવાની જરૂરત હે। આશા કરું હું કે હંગરી વાતે આપને ગમ્યું હોંગા, કેમ કે હવે ટાઈમ થઈ ગયો હે આપણે અણસ કાર્યક્રમ થકી સૂટ પડવાનું। તો સૂટ તો પડે પણ સાથે પહેલા હમરી લાયક ગીત ને મોરે પડે સૂટા।

0: हमरो हमरो हमरो गरीबों ने पूछे ही जमीन आते नाम हिरते आवे कागज केने कोने बनावो पड़े सरकारी विभाग में जाओ या पसे गाँव में स्वाद थी जाए
1: तो हमरो बोलो अरे सब समस्या नो समाधान आपे करने से ग्राम सभा तक की बात शुरू थाय है पटवारी सचिव पंचायत आय तक की हर प्रक्रिया जुड़े है एकलस ने हमरो ने हाथ में जावो है फार्म भरो जानकारी लो जमीन माते नाम लगाड़वो काटो नती जय वरे अधिकार हमरा अपना भी जानकारी सबनो हाथ में अधिकार आस है समाधान में राह
0: होवे भाई ने बोनो हक जानो हक मांगो जमीन कागज माते अपनो नाम लगाड़ो
1: वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

बहनों, घर तक निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार कर रही है। माँ ने दुआ, पिता ने उम्मीद, मसोरा ने मुस्कान। होवे इटली गाड़ी धीरे चलावो, हेलमेट पहनो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार कर रही है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन, तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है। जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों, अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जाँच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसे स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं वागड़ की आवाज और आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जी हां, जहां हम बात करते हैं उन छोटी छोटी बातों की जो हमारी सोच को एक नई दिशा दे सकती है और हमारे सपनों को हकीकत के करीब ला सकती है। हमारे पास छोटा साथियों पैसा कम हो तो हम उसे मेहनत करके दोबारा कमा सकते हैं। कोई चीज खो जाए तो कई बार उसे फिर से खरीदा जा सकता है। अवसर छूट जाए तो कभी कभी दूसरा अवसर मिल जाता है, लेकिन एक चीज ऐसी है जो एक बार हमारे हाथ से निकल जाए तो वापस नहीं आती, वह है समय। जी हाँ, अक्सर हम कहते हैं अभी तो बहुत समय है, कल से शुरू करूँगा, अगले महीने से पढ़ाई पर ध्यान दूंगा, अभी थोड़ा आराम कर लेता हूँ, काम बाद में कर लूंगा, और इसी कल के इंतजार में कई बार हमारा आज निकल जाता है। जरा सोचिए श्रोता साथियों कि अगर आपके पास 1000 हो और आप उसमें से 100 रुपए खर्च करते हैं तो आपके पास 900 बचेंगे। लेकिन अगर आपके पास आज के 24 घंटे हैं और उनमें से 2 घंटे बीत गए तो 2 घंटे किसी कीमत पर वापस नहीं आएंगे। इसलिए आज का सवाल है कि क्या जीवन में सबसे बड़ा निवेश समय है? और अगर समय सचमुच हमारा सबसे मूल्यवान निवेश है तो सवाल यह है कि हम रोज अपने समय को कहाँ निवेश कर रहे हैं? क्या अपनी पढ़ाई में, क्या अपने कौशल को बढ़ाने में, क्या अपने स्वास्थ्य में, अपने रिश्तों में, या फिर ऐसी चीजों में जिनका हमारे भविष्य से कोई संबंध ही नहीं है। तो बातें श्रोता साथियों इस विषय पर हमारी आपसे ढेर सारी रहेंगी, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ मैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि साथियों, मैंने गीत से पहले आपको विषय से रूबरू कराया था कि आज मैं बात करने वाली हूँ कि क्या जीवन में सबसे बड़ा निवेश समय है। अब यही बात आती है कि समय को निवेश समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि श्रोता साथियों, निवेश का मतलब केवल पैसा लगाना नहीं होता। निवेश का अर्थ है आज किसी चीज में अपना संसाधन लगाना ताकि भविष्य में उसका परिणाम मिले। इसी नजर से देखें तो समय भी एक निवेश ही है। जब कोई विद्यार्थी रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ता है, वह केवल आज की पढ़ाई पूरी नहीं कर रहा होता बल्कि अपने भविष्य की तैयारी कर रहा होता है। जब कोई युवा रोज आधा घंटा कोई नया कौशल सीखता है तो शायद उसी दिन उसे कोई बड़ा परिणाम दिखाई नहीं देता, लेकिन महीनों बाद यकीन मानिए कि वही कौशल उसके लिए नए अवसर का रास्ता खोल देता है। इसलिए जब कोई व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के लिए रोज थोड़ा समय निकालता है श्रोता साथियों, तो वह केवल व्यायाम नहीं कर रहा होता बल्कि आने वाले वर्षों के लिए अपने शरीर पर ध्यान रख रहा होता है। यानी समय का निवेश अक्सर तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन श्रोता साथियों, उसका प्रभाव धीरे धीरे हमारे जीवन में दिखाई देने लगता है। अब यही बात आती है कि हमारा जो पूरे दिन का समय है वो आखिरकार खर्च कहाँ हो रहा है। जी हाँ, हम सभी के पास एक दिन में 24 घंटे होते हैं। फर्क इस बात से पड़ता है कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। कई बार हमारा बहुत सारा समय बिना ध्यान दिए निकल जाता है। मोबाइल पर लगातार स्क्रॉल करना, बिना जरूरत बार बार फोन करना, दूसरों की जिंदगी से अपनी जिंदगी की तुलना करना, बेवजह की बहस में समय लगाना या किसी काम को लगातार टालते रहना, ये सब हमारे समय का हिस्सा लेते हैं। इसका मतलब श्रोता साथियों, यह नहीं है कि मनोरंजन या आराम गलत है। आराम भी जरूरी है, लेकिन सवाल यह आता है कि क्या हमारे समय पर हमारा नियंत्रण है या हमारी आदतों का। युवा अवस्था में ये सवाल और भी महत्वपूर्ण हो जाता है युवा साथियों, क्योंकि यही वह समय है जब सीखने, प्रयोग करने और अपने भविष्य की दिशा तय करने के अवसर सबसे अधिक होते हैं। जी हाँ, सबसे पहले हमें ये तय करना जरूरी है कि हमारे लिए वास्तव में महत्वपूर्ण क्या है। अगर आपका लक्ष्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना है तो रोज कुछ निश्चित समय पढ़ाई के लिए होना भी जरूरी है। अगर आप कोई नया काम सीखना चाहते हैं तो उसके लिए नियमित समय निकालना होगा। अगर आप अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो केवल सपने देखने के बजाय रोज थोड़ा समय योजना, बाजार की जानकारी और कौशल सीखने में लगाना होगा। और अगर आपका सपना अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, तब भी समय बेकार नहीं जाता। आप अलग अलग चीजें सीख कर यह समझ सकते हैं कि आपकी रुचि किस दिशा में है, क्योंकि सपना केवल सोचने से नहीं बनता, उसे समय देकर आकार देना पड़ता है। तो जैसा कि आज हमारी कार्यक्रम में बहुत अच्छे विषय पर बातचीत चल रही है कि किस तरीके से समय का निवेश करना जरूरी है और क्या समय भी एक निवेश है, बातें इसी तरह आगे और भी यूं ही बनी रहेंगी श्रोता साथियों। लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और प्यारा सा गीत। आप बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में आपके अपने साथी अंजलि पाराशर के साथ में।

इस गीत के बाद श्रोता साथियों फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि गीत से पहले हमने जाना कि समय को सही जगह निवेश कैसे करें, यही बात आती है कि कल की आदत से बाहर निकलना। जी हाँ, हमारे सपनों का सबसे बड़ा विरोधी हमेशा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होता, कई बार हमारा अपना कल होता है। हम कहते हैं कल से पढ़ूंगा, कल से व्यायाम करूंगा, कल से मोबाइल कम चलाऊंगा और कल से नई चीज सीखूंगा। लेकिन जब कल आता है तो वह भी आज बन जाता है और फिर अगले कल का इंतजार करने लगते हैं। इसलिए बड़े बदलाव के लिए हमेशा बड़े कदम की जरूरत नहीं होती है। आज केवल 20 मिनट पढ़िए, आज केवल आप 15 मिनट कोई कौशल सीखिए, आज केवल 30 मिनट अपने लक्ष्य के लिए काम कीजिए। छोटा समय भी महत्वपूर्ण है अगर वह नियमित रूप से सही दिशा में लगाया जाए तो। यही श्रोता साथियों एक सवाल छोटा सा आप खुद से करिए। आज रात को सोने से पहले खुद से 3 सवाल करिएगा। पहला कि आज मैंने अपने भविष्य के लिए क्या किया, आज मेरा कितना समय ऐसी चीजों में गया जो वास्तव में जरूरी मेरी जिंदगी के लिए था ही नहीं। तीसरा, अगर मैं इसी तरह अपना समय इस्तेमाल करता रहा तो एक साल बाद मैं खुद को कहाँ देखना चाहूँगा। इन सवालों के जवाब शायद हमें अपने समय की असली तस्वीर दिखा सकते हैं। जी हाँ, जिंदगी में पैसा कमाया जा सकता है, चीजें दोबारा हासिल की जा सकती है, कई मौके दोबारा मिल सकते हैं, लेकिन बीता हुआ समय वापस नहीं आता। इसलिए समय को केवल गुजरने वाली चीज मत समझिए, उसे युवा साथियों अपने सपनों की जमीन पर बोया जाने वाला बीज समझिए। आज एक घंटा अगर सही दिशा में लगाया गया है तो हो सकता है कि उसका परिणाम आज दिखाई न दे, लेकिन वही एक घंटा यकीन मानिए कि आने वाले दिनों में आपके ज्ञान, आपकी क्षमता, आपके आत्मविश्वास और आपके भविष्य का हिस्सा बन सकता है। याद रखिए कि समय की कीमत घड़ी नहीं बताती, समय का सही इस्तेमाल हमारा भविष्य बताता है। तो अगली बार जब मन कहे

कल से शुरू करेंगे तो खुद से कहिए कि मेरे सपनों के लिए सबसे सही समय कल नहीं आज है। इसी सोच के साथ समय को संभालिए, अपनी प्राथमिकताएं तय करिए और अपने सपनों को रोज थोड़ा समय लीजिए, क्योंकि सपनों को सिर्फ देखा नहीं जाता, उन्हें समय देकर सच बनाया जाता है। जी हाँ, कहना चाहूंगी कि जिंदगी में हम अक्सर यह सोचते हैं कि हमारे पास बहुत समय है, लेकिन समय कभी हमारे सामने रुक कर यह नहीं कहता कि अब तुम मुझे इस्तेमाल कर लो। वो लगातार श्रोता साथियों आगे बढ़ता ही रहता है। इसलिए जरूरी यह नहीं है कि हमारे पास कितना समय है, बल्कि यह है कि हमारे पास जो समय है उसमें हम अपने जीवन के लिए क्या तैयार कर रहे हैं। किसी के पास सुविधाएं कम हो सकती हैं, संसाधन सीमित हो सकते हैं, शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन अगर उसके पास अपने लक्ष्य के लिए लगातार आगे बढ़ने का धैर्य है तो वह अपनी परिस्थितियों में बदलाव की शुरुआत कर सकता है। अपने पूरे दिन को केवल कामों से भर देना भी समय का सही उपयोग नहीं है। कभी अपने बारे में सोचना, अपनी कमियों को समझना, नई चीजें सीखना, परिवार के साथ बैठना, अपने शरीर और मन को आराम देना, ये सब भी जीवन का हिस्सा है। इसलिए समय का बेहतर इस्तेमाल मतलब हर मिनट व्यस्त रहना नहीं, बल्कि जरूरी चीजों को उनकी सही जगह देना है। आज अगर कोई युवा अपने समय का थोड़ा हिस्सा ज्ञान बांटने में लगाता है, कोई अपने हुनर को निखारने में, तो कोई अपने परिवार को समझने में, तो कोई अपने भीतर के डर को पार करने में, तो वह अपने आने वाले कल की नींव तैयार कर रहा है। हो सकता है कि आपकी मेहनत का परिणाम हमें तुरंत न दिखाई दे, जैसा कि मैं बार बार आपको कह रही हूँ। हो सकता है कि कई दिनों तक लगे कि कुछ बदल ही नहीं रहा, लेकिन निरंतर किए गए प्रयास श्रोता साथियों यकीन मानिए चुपचाप असर छोड़ते रहते हैं। इसलिए अपने समय को दूसरों से तुलना करने में नहीं, अपने कल को आज से बेहतर बनाने में लगाइए। कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए बड़े मौके की जरूरत नहीं होती, जरूरत होती है उस छोटे से समय को पहचानने की जो हमारे पास अभी मौजूद है, क्योंकि आज का बचा हुआ समय ही आपके आने वाले कल की शुरुआत बन सकता है। तो श्रोता साथियों, जैसा कि बातें ढेर सारी रही हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में हमारी आपसे, अब समय हो चला है हमारा कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले सुन लेते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। श्रोता साथियों, आज हमारी कार्यक्रम में आपसे बातचीत का विषय है कि उम्र के साथ बदलाव जरूरी है, लेकिन बुजुर्गों के स्वास्थ्य को परिवार कैसे समझे। श्रोता साथियों, उम्र बढ़ना जीवन की स्वाभाविक प्रक्रिया है।
0: बिल्कुल,
1: जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ती है, शरीर की ताकत, सुनने देखने की क्षमता, नींद, पाचन और चलने फिरने में कुछ बदलाव आ सकते हैं, लेकिन इन बदलावों को केवल बुढ़ापा है ऐसा तो होगा ही कहकर नजरअंदाज करना सही नहीं है।
0: बिल्कुल,
1: बुजुर्गों को परिवार से केवल दवा या इलाज की जरूरत नहीं होती, उन्हें समझ, सम्मान, समय और साथ भी चाहिए होता है। तो आज हम बात करेंगे कि परिवार बुजुर्गों के बदलते स्वास्थ्य को कैसे समझे और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे आसान और स्वस्थ बना सकता है।
0: जी हाँ अंजलि जी, तो इस विषय को लेकर हमारे श्रोता साथियों से कार्यक्रम के माध्यम से ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाने हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्यों ना उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को, आप बने रहिएगा वाग रेडियो 90.8 FM पर।
2: इश्क वो बला है, इश्क वो बला है, जिसको छुआ इसने वो जला है। दिल से होता है शुरू, दिल से होता है शुरू, पर कमबख्त सर पे चढ़ा है। कभी खुद से, कभी खुदा से, कभी जमाने से लड़ा है। इतना हूँ

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं उम्र के साथ बदलाव जरूरी है, बुजुर्गों के स्वास्थ्य को परिवार कैसे समझे। यही अगर अंजलि जी बात करें कि उम्र बढ़ने के साथ शरीर में क्या क्या बदलता है इसकी, तो श्रोता साथियों हम देखते हैं कि उम्र के साथ शरीर की कार्य क्षमता में धीरे धीरे बदलाव आना सामान्य है। पहले जैसी शारीरिक ताकत न रहना, जल्दी थकान महसूस होना, नींद में समय के साथ बदलाव आना, पाचन थोड़ा धीमा दिखाई दे सकता है और कुछ बुजुर्गों में श्रोता साथियों चलने से पहले अधिक समय लग सकता है या सीढ़ियां चढ़ने में परेशानी हो सकती है। परिवारों को इन बदलावों को समझते हुए अंजलि जी उनकी क्षमता के अनुसार काम करवाना चाहिए। उम्र बढ़ना कमजोरी का पर्याय नहीं है साथियों, इसीलिए बुजुर्गों को हर काम से अलग कर देना भी हमारे लिए उचित नहीं है।
1: बिल्कुल मनीषा, हम देखते हैं कि कई बार परिवार बुजुर्गों की परेशानी को यह कहकर टाल देता है कि उम्र हो गई है, ऐसा तो होगा ही, लेकिन लगातार चक्कर आना, सांस लेने में परेशानी, अचानक कमजोरी, बार बार गिरना, बहुत अधिक दर्द या व्यवहार में अचानक बदलाव जैसी बातें हो तो उन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ऐसे लक्षण दिखाई दे तो परिवार को डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और समय रहते उन सारी चीजों का ध्यान रखना है। अगर हम समय पर ध्यान नहीं देते हैं तो कई स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ जाती हैं और समय पर देखभाल न होने की वजह से बुजुर्ग जो हैं वो बहुत ज्यादा अपने आप में दर्द महसूस करते हैं।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि बुजुर्गों के लिए स्वाद के साथ साथ पौष्टिक और आसानी से पचने वाला भोजन भी बहुत जरूरी होता है। परिवार उनके भोजन में दाल, हरी सब्जियां, मौसमी फल, अनाज और उनकी जरूरत के अनुसार प्रोटीन वाले पदार्थ भी शामिल कर सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: अगर श्रोता साथियों किसी बुजुर्गों को डॉक्टर ने नमक, चीनी या किसी विशेष खाद्य पदार्थों को सीमित करने की सलाह दी है तो परिवार को उसका ध्यान रखना भी चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: साथ ही साथियों पर्याप्त पानी और तरल पदार्थ लेने की आदत है वो भी महत्वपूर्ण है। जब तक डॉक्टर ने श्रोता साथियों किसी कारण से उसकी सीमा न बताई हो तो हमें ध्यान रखना चाहिए।
1: बिल्कुल मनीषा, यही बात करें दवाइयों में परिवार की भूमिका की तो कई बार नियमित रूप से एक से अधिक दवाइयां लेते हैं, ऐसे में परिवार को यह सुनिश्चित करने में मदद करनी चाहिए कि दवा सही समय पर और डॉक्टर की सलाह के अनुसार ली जा सकती है।
0: जी हाँ।
1: बिना सलाह के दवा बंद करना, मात्रा बदलना या किसी दूसरे व्यक्ति की दवा देना उचित नहीं है। दवाइयों की सूची और डॉक्टर की पर्ची को सुरक्षित रखना भी उपयोगी हो सकता है। हम देखते हैं कि हमारे घर में भी जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, हम देखते हैं कि उम्र ज्यादा होने के साथ उनकी जो चीजें हैं वो बच्चों जैसी हो जाती है।
0: जी हाँ।
1: अगर हम उन्हें कहते हैं कि आप समय पर दवाई लीजिए, ये डॉक्टर ने दवाई दी है, तो ये बोलते हैं मुझे दवाई की जरूरत नहीं है, अब मैं ठीक हूँ, और उनकी मात्रा का भी वो ध्यान नहीं रखते हैं और बहुत सी बार अपने आप वो दवाई भी बंद कर देते हैं।
0: जी हाँ।
1: तो ऐसे में घर के सदस्यों का एक कर्तव्य बनता है कि वे बुजुर्गों के खान पान का, उनके दवाई के समय का विशेष ध्यान रखे, क्योंकि थोड़ी सी भी लापरवाही हमें बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारी श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर बातें चली रही हैं, तो ये बातें आगे भी ऐसे ही जारी रहेंगी।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन क्यों ना साथियों के मनोरंजन के लिए कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दे।
1: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना, यही बात करें मनीषा कि परिवार को किस तरीके से बुजुर्गों की दवाइयों के साथ चलने फिरने की जो चीजें हैं उनका भी ध्यान रखने की जरूरत है। हम देखते हैं कि बुजुर्गों को हमेशा बैठे रहने देना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। उनकी क्षमता के अनुसार हल्की गतिविधि करवाना, टहलाना या डॉक्टर द्वारा सुझाए गए व्यायाम जो है वो उनकी दिनचर्या का हिस्सा हमें बनाने की जरूरत है, लेकिन सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। हम देखते हैं कि आजकल घर में फिसलन, रास्ते में सामान, खराब रोशनी, ऐसी जगह जहां आसानी से ठोकर लग सकती है वहां पर हमें उन्हें ठीक से ले जाना चाहिए। खासकर अगर बुजुर्ग को चलने में परेशानी है तो परिवार के दूसरे सदस्य उनके साथ जाकर उन्हें थोड़ी देर टहला सकते हैं।
1: जी बिल्कुल,
0: उनका मन जो है वो खुश रहता है।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि बुजुर्गों का स्वास्थ्य केवल शरीर से जुड़ा हुआ नहीं है, उनका मन भी स्वस्थ रहना जरूरी है।
0: बिल्कुल,
1: कई बार उम्र बढ़ने के साथ व्यक्ति को लगता है कि अब परिवार को कोई जरूरत नहीं रही। बच्चे अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं, बातचीत कम हो जाती है। पहले जो व्यक्ति घर के फैसलों में शामिल होता था वो धीरे धीरे खुद अलग महसूस करने लग जाता है।
0: बिल्कुल,
1: इसीलिए श्रोता साथियों, परिवार को बुजुर्गों से बातचीत करते रहना चाहिए। उनसे उनके पुराने अनुभव पूछे जा सकते हैं, उनकी पसंद के विषय पर बात की जा सकती है। कभी कभी श्रोता साथियों, केवल कुछ मिनट बैठकर उनकी बात सुन लेना ही उनके लिए सबसे बड़ी खुशी हो सकती है।
0: बिल्कुल मनीषा, अगर बुजुर्ग बार बार बात दोहराने को कह रहे हैं, टीवी बहुत तेज आवाज में सुन रहे हैं या चीजें देखने में परेशानी बता रहे हैं तो इसे केवल उम्र का हिस्सा मानकर छोड़ना नहीं चाहिए। जरूरत पड़ने पर उनकी आंखों और कानों की जांच करवानी चाहिए। सही चश्मा या सुनने में सहायता देने वाले उपकरण उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को काफी आसान बना सकते हैं। हम देखते हैं कि एक उम्र के बाद बुजुर्ग व्यक्ति का सुनना बहुत कम हो जाता है, दिखने में भी समस्या हो जाती है। तो ऐसे में घर के अन्य सदस्य हैं उन्हें उनकी पर्याप्त देखभाल करनी है। बहुत सी बार जब बुजुर्ग ऐसी चीजें दोहराते हैं या कुछ करते हैं तो घर के सदस्य उन पर गुस्सा करने लगते हैं। तो श्रोता साथियों, हमें उन पर गुस्सा नहीं करना है। आज जिस पड़ाव पर वो जी रहे हैं उस पड़ाव पर कल को हम भी आएंगे, हमारे बच्चे भी हमसे देखकर दुर्व्यवहार सीखेंगे, इसलिए हमें ऐसा नहीं करना है। हमें बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना है, वो छोटे बच्चे की तरह हो जाते हैं, इसलिए हमें उन्हें उसी तरीके से उन्हें संभालने की जरूरत है। अगर कोई बात उन्हें समझ नहीं आ रही है तो हम शांति से धैर्य पूर्वक उन्हें अच्छे से समझाएं।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि आराम और नींद का भी ध्यान रखना है। उम्र बढ़ने के साथ नींद के तरीके में बदलाव आ सकता है साथियों। कुछ बुजुर्गों को रात में बार बार नींद खुल सकती है या जल्दी नींद नहीं आती है। परिवार को उनकी नींद की समस्याओं को मजाक में नहीं लेना चाहिए। रात में शांत वातावरण, दिन में उचित गतिविधियां और नियमित दिनचर्या मददगार हो सकती हैं। अगर श्रोता साथियों नींद की परेशानी लगातार बनी रहती है तो हमें उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना है। साथ ही साथियों कहना चाहेंगे कि परिवार में बुजुर्गों की राय लेना हमारे लिए बहुत जरूरी है और यह एक सम्मान का हिस्सा भी है। यह जरूरी नहीं कि हर फैसला उनकी इच्छा के अनुसार लिया जाए, लेकिन उन्हें यह महसूस होना चाहिए कि उनकी बात सुनी जा रही है। घर में कोई महत्वपूर्ण विषय हो तो उस पर राय लेना हमारे लिए जरूरी है। उनके जीवन के अनुभव कई बार हम अंजलि जी देखते हैं कि हमारे घर की परिस्थितियां हैं उनमें काम आ सकती हैं। अनुभव उम्र के साथ मिलता है साथियों, और उसे सम्मान देना हमारे परिवार की जिम्मेदारी है।
0: मनीषा, यही बात करें तो उम्र बढ़ना जिंदगी का वह पड़ाव है जहाँ शरीर शायद पहले जैसी तेजी से काम न करे, लेकिन अनुवाद, समझ और जीवन की सीख लगातार हमारे साथ रहती है। इसलिए श्रोता साथियों, बुजुर्गों के स्वास्थ्य को समझने का मतलब केवल उनकी दवाइयों और बीमारी पर नजर रखना नहीं है। परिवार जब उनके खाने का ध्यान रखता है, उनकी सुरक्षित गतिविधियों को प्रोत्साहित करता है, उनकी जांच समय पर करवाता है, उनकी बातों को धीरे से सुनता है, तब स्वास्थ्य देखभाल एक जिम्मेदारी से बढ़कर परिवार का अपनापन बन जाती है।
1: जी हाँ।
0: याद रखिए श्रोता साथियों कि बुजुर्गों को हमारी जरूरत केवल तब नहीं होती जब वे बीमार हैं, उन्हें स्वस्थ दिनों में भी बातचीत, सहभागिता और अपनेपन की जरूरत होती है। उनके अनुभवों को सुनिए, उनकी पसंद पूछना और परिवार के बीच उन्हें सम्मान की जगह देना भी स्वास्थ्य का ही हिस्सा है। तो आज से अपने घर के बुजुर्गों को थोड़ा आप सभी समय दीजिए, उनसे पूछिए कि आप कैसे हैं और उनके जवाब को सच में सुनिए, क्योंकि स्वस्थ परिवार वही है जहां हर उम्र की जरूरत को समझा जाए और हर सदस्य को सम्मान के साथ जीने का अवसर मिले।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। इसी के साथ कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि उम्र के साथ बदलाव जरूरी है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है शरीर और मन की जरूरतें भी बदलती जाती हैं।
0: जी जी।
1: इसलिए बुजुर्गों की देखभाल का एक तरीका भी हमारे लिए बहुत जरूरी हो सकता है। बुजुर्गों को केवल बीमार व्यक्ति समझना हमें नहीं है, वे परिवार के अनुभव होते हैं, हमारी परंपराओं की कड़ी होते हैं और हमारे जीवन के महत्वपूर्ण धरोहर होते हैं।
0: बिल्कुल।
1: उनके स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक भोजन, समय पर दवाई, उचित आराम, सुरक्षित वातावरण और जरूरत के अनुसार शारीरिक गतिविधियां हैं वो भी जरूरी हैं। इसके साथ साथ श्रोता साथियों, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
0: बिल्कुल मनीषा, तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हमने ढेर सारी बातों को जाना कि किस तरीके से हमें हमारे बुजुर्गों का ध्यान रखने की जरूरत है और ये जो अवस्था होती है उस समय परिवार को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आशा करते हैं कि ये सभी बातें हमारे श्रोता साथियों को अवश्य पसंद आई होगी।
1: बिल्कुल।
0: क्योंकि अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे लेकिन जाने से पहले सुन लेते हैं एक और प्यारा सा गीत।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही हम हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य से विदा लेना चाहेंगे। आशा करेंगे कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातचीत रही वो आपको अवश्य पसंद आई होगी।
1: बिल्कुल।
0: तो आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें जरूर पहुँचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य वाघ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की आपके अपने साथी मनीषा पटेल को
0: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर को।
1: नमस्कार।

0: दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है, जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों, अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जाँच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: भाई ने बोलो, आप एक कारे विचार कर रहे हो कि जैया पेड़ की छांव में आपने रहो या आपने ने कितनी शांति मिली है, जैया हवा में आपने हाल रहो, ये भी आपने थकी कई आश रागे है। हो भी अगर पेड़ ने रहेंगा तो आपने हरते जीवंगा, प्रकृति आपकी जरूरत नहीं बल्कि आपकी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगा दूंगा, पानी में बचा दूंगा, मैं आपकी धरती में जीवन दान लूंगा। होवे प्रकृति ने बचाओ, भविष्य ने हदारो। होवे आज नया कदम है, ये अबा वाला काल में बदलाव की शुरुआत है। वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

सपनों की उड़ान में बात ही करते हैं एक ऐसे विषय को लेकर जो ऊंचाइयों तक हमें पहुंचाए साथियों। तो आज हम कार्यक्रम के माध्यम से जिस विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं दोस्तों, वो है हर विद्यार्थी, हर युवा और हर परिवार के जीवन से जुड़ा हुआ। बात कर रहे हैं पढ़ाई और जीवन में संतुलन को लेकर। जैसे कि साथियों हम सभी जानते हैं कि आज का दौर प्रतिस्पर्धा का दौर है, हर कोई आगे बढ़ना चाहता है और हर किसी के सपने भी बड़े हैं साथियों। लेकिन इस दौड़ में एक सवाल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो ये है कि क्या हम अपने स्वास्थ्य रिश्तों को, मानसिक शांति को नजरअंदाज तो नहीं कर रहे। दोस्तों इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज हम कार्यक्रम के माध्यम से जानेंगे। तो बातें ढेर सारी होंगी, लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है। तो आइए साथियों पहले सुन लेते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में।

दोस्तों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में और वागर रेडियो 90.8 एफएम की ओर। साथियों, जैसा कि आज हम कार्यक्रम को एक नए विषय के साथ लेकर हाजिर हैं और गीत से पहले मैंने विषय के बारे में आपको बता ही दिया था और छोटी मोटी बातें भी हमारी हुई थी कि आज हम जिस विषय को लेकर बातचीत कर रहे हैं वो हर विद्यार्थी के जीवन से जुड़ा हुआ है, हर युवा के लिए जरूरी है और साथ ही हर परिवार के जीवन से जुड़ा हुआ विषय है। बातचीत कर रहे हैं पढ़ाई और जीवन में संतुलन को लेकर। साथियों, जैसा कि गीत से पहले हमने जाना था कि आज का दौर प्रतिस्पर्धा का दौर है और सबके सपने वर्तमान में बड़े बड़े हैं। हर कोई कुछ बड़ा हासिल करना चाहता है साथियों, लेकिन हमारे सामने सवाल ये भी है दोस्तों कि क्या हम सिर्फ पढ़ाई ही करते जा रहे हैं या फिर जीवन को भी जी रहे हैं। तो बात करते हैं श्रोता साथियों सबसे पहले पढ़ाई को लेकर। दोस्तों, जैसा कि पढ़ाई हमारे जीवन का आधार होती है, ये हमें ज्ञान देती है, सोचने की क्षमता देती है और हमें आत्मनिर्भर भी बनाती है। साथ ही हम देखते हैं दोस्तों कि एक अच्छा करियर, सम्मानजनक जीवन और समाज में पहचान, ये सब जो चीजें हैं वो भी पढ़ाई से ही संभव हो पाती है। लेकिन जब दोस्तों पढ़ाई ही जीवन बन जाए और जीवन के बाकी पहलू पीछे छूट जाए, तब समस्या और भी शुरू हो जाती है। हम देखते हैं कि कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो दिन रात पढ़ते रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे कब वे तनाव, थकान और अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता। इसलिए श्रोता साथियों, पढ़ाई के साथ साथ जीवन का संतुलन भी जरूरी माना जाता है। हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि पढ़ाई जीवन का हिस्सा है, जरूरी है दोस्तों, लेकिन वो जीवन नहीं है। तो इसलिए पढ़ाई में भी संतुलन होता है। जैसे कि दोस्तों, संतुलन का मतलब होता है हर चीज को उसके उचित स्थान और समय के रूप में देखना। जैसे कि पढ़ाई जरूरी है, लेकिन उतना ही जरूरी है शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना, मानसिक शांति, अपने शौकों और रुचियों पर कार्य करना। दोस्तों, जब ये सभी चीजें एक साथ चलती है तभी जीवन पूर्ण बनता है। हम कह सकते हैं कि अगर इसके विपरीत हमारी पढ़ाई में और जीवन में असंतुलन हो जाए तो उसके ढेर सारे दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं। वो कैसे, तो देखते हैं कि जब पढ़ाई और जीवन के बीच संतुलन नहीं होता दोस्तों, तो इसके ढेर सारे नकारात्मक प्रभाव होते हैं। तो उन नकारात्मक प्रभावों को लेकर हम कार्यक्रम में आगे बातचीत करेंगे दोस्तों। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर ये जान लेते हैं कि संतुलन क्यों जरूरी है, क्योंकि दोस्तों संतुलित जीवन ही सच्ची सफलता का आधार माना जाता है। हम देखते हैं कि ये हमें स्वस्थ और खुश तो रखता ही है, साथ ही इससे हमारी एकाग्र शक्ति भी बढ़ती है। हमें जीवन का आनंद लेना ये सिखाता है, क्योंकि अगर जीवन में संतुलन होगा तो हम एक छोटी छोटी चीजों में भी खुशी ढूंढ पाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों, ये हमें दीर्घकालिक सफलता भी दिलाता है। हम कह सकते हैं कि एक थका हुआ दिमाग ज्यादा देर तक अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकता, लेकिन वही एक आत्मनिर्भर दिमाग, एक सोचने वाला दिमाग दोस्तों, कितनी समस्याएं क्यों ना आ जाएं, अगर उसके जीवन में संतुलन है तो वो कई समस्याओं का सामना हंस हंस कर सकता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जीवन में संतुलन होना क्यों जरूरी है। तो आगे और भी कार्यक्रम के माध्यम से बातें हमारी होंगी। आगे दोस्तों समय प्रबंधन को लेकर भी कुछ बातें मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अभी मनोरंजन कर लेते हैं एक और गीत के साथ में। तो आप बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर के साथ में।

दोस्तों, इस गीत के बाद मैं फिर से रुक करती हूँ कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि साथियों, गीत से पहले हम संतुलन क्या होता है और संतुलन क्यों जरूरी है, इसको लेकर बातचीत कर पाए थे। यही अगर बात करूं श्रोता साथियों की, अगर जीवन में असंतुलन हो जाए तो उसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। साथियों, जब पढ़ाई और जीवन के बीच संतुलन नहीं होता है तो इसके कई नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं, जैसे कि मानसिक तनाव और चिंता बढ़ जाती है। दोस्तों, लगातार पढ़ाई और परिणामों का दबाव हमारे मन को थका देता है और ये बात सच भी है। जैसे कि जो विद्यार्थी होते हैं वो चिंता और अवसाद का शिकार हो जाते हैं, जिससे उनमें नींद की कमी देखी जाती है और जब नींद पूरी नहीं होगी तो आंखों में दर्द रहता है, सिर दर्द और थकान की समस्या भी हो जाती है। और ये सब श्रोता साथियों जो संकेत है, जो शारीरिक समस्याएं हैं, वो जीवन में असंतुलन के कारण ही होती है। हम कह सकते हैं कि साथ ही रिश्तों में दूरी भी देखी जाती है, क्योंकि जब हम केवल पढ़ाई में व्यस्त रहते हैं तो परिवार और दोस्तों से हमारी दूरी बन जाती है, जिससे हम उन्हें समय नहीं दे पाते, जिसके कारण हमारे रिश्तों में भी दूरी आ जाती है। और लगातार पढ़ाई करने से श्रोता साथियों दिमाग थक जाता है और नई सोच विकसित नहीं हो पाती है। तो इस तरीके से श्रोता साथियों कहा जा सकता है कि अगर संतुलन बनाना है तो पढ़ाई और जीवन दोनों में हमें संतुलन बनाना होगा। हम पढ़ाई के समय पर पढ़ाई करें और बाकी के काम जीवन के समय पर करें। श्रोता साथियों, एक बात आपको यहाँ पर और भी ये ध्यान रखनी है कि आपको समय प्रबंधन को भी अपनाना है। जैसे कि दोस्तों, अगर संतुलन बनाना ही है तो समय का सही उपयोग करना भी जरूरी है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि पढ़ाई का एक निश्चित समय हम तय करें, बीच बीच में छोटे ब्रेक लेते रहें, दिन का एक हिस्सा मनोरंजन और आराम के लिए रखें। श्रोता साथियों, साथ ही मोबाइल और सोशल मीडिया का भी हम सीमित मात्रा में उपयोग करें, क्योंकि जब समय व्यवस्थित होता है दोस्तों तो जीवन अपने आप ही संतुलित होने लगता है। इसलिए आपसे कहना चाहेंगे कि जीवन और पढ़ाई दोनों में अगर संतुलन बनाना है तो हमें सबसे पहले समय की कद्र करना सीखना होगा, क्योंकि श्रोता साथियों समय जो है वो एक दिशीय होता है, यानी कि वो एक ही दिशा में आगे बढ़ता रहता है। ना ही वो किसी का सगा होता है और ना ही किसी का दोस्त होता है, वो श्रोता साथियों अपनी गति में चलता रहता है। बस बदलाव हमें करने की जरूरत पड़ती है, हमें समय का सदुपयोग करना है। अगर हम सोच रहे हैं श्रोता साथियों कि ये काम मैं कल कर लूंगा और क्या पता उस काम को करने का सही समय आज ही हो श्रोता साथियों, तो उसकी वजह से हम कई चीजों को यूं ही छोड़ देते हैं, यूं ही गंवा देते हैं। और बाद में जब हमें पता चलता है कि ये चीज तो उस समय करनी थी या उस समय पर करनी थी, तो हमारे पास बाद में पछताने के अलावा और कुछ नहीं बचता श्रोता साथियों। इसलिए जीवन में हर चीज का संतुलन होना बहुत जरूरी है। साथ ही अगर बात करें स्वास्थ्य पर ध्यान देने की, तो दोस्तों अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हम सफलता भी प्राप्त कर पाएंगे और जीवन में संतुलन भी बना पाएंगे। इसलिए स्वास्थ्य पर ध्यान देना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। अक्सर श्रोता साथियों विद्यार्थियों को ये हमने सोचते हुए देखा है कि अभी पढ़ाई जरूरी है, स्वास्थ्य को बाद में देखेंगे, जिसके कारण वो पढ़ाई ही करते रहते हैं और अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन दोस्तों अगर देखा जाए तो ये सोच गलत है। दोस्तों, पढ़ाई के साथ साथ आराम भी जरूरी है। जैसे कि आप रोज थोड़ा व्यायाम कर सकते हैं, पर्याप्त नींद आपको लेनी जरूरी है, क्योंकि अगर आप 6 से 7 घंटे की नींद या 8 घंटे की नींद नहीं लेते हैं श्रोता साथियों, तो इससे आपके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं। इसलिए पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी को तो नींद पूरी तरीके से लेनी चाहिए, जिससे वो अपनी पढ़ाई पर अच्छी तरीके से फोकस कर सके। साथ ही श्रोता साथियों, हमें खूब पानी भी पीना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि जब हम पानी ठीक तरीके से नहीं पीते हैं, जिससे हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है, उसके कारण भी दोस्तों कई बार हमारी कई चीजों में मन नहीं लगता है। इसलिए हमें हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खूब पानी भी पीना चाहिए और संतुलित रूप से आहार भी लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। तो इस तरीके से दोस्तों हम कह सकते हैं कि अगर हमें पढ़ाई में और जीवन में संतुलन बनाना है तो हमें इन ढेर सारी बातों का ध्यान रखना होगा। क्योंकि श्रोता साथियों, आपने कई बार सफल लोगों के बारे में तो सुना ही होगा, जिन्होंने अपने जीवन में संतुलन बना के रखा। दोस्तों, वे न केवल अपने काम में सफल रहे बल्कि उन्होंने अपने स्वास्थ्य, परिवार और समाज को भी महत्व दिया है, और यही संतुलन उन्हें असाधारण बनाता है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि जीवन में संतुलन बनाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जीवन केवल सफलता प्राप्त करने जैसा नहीं है, बल्कि उसे महसूस करना है और जीना है। अगर हम केवल पढ़ाई करते रहेंगे दोस्तों और जीवन को जीना भूल जाएंगे, तो ये सफलता हमारे लिए अधूरी रह जाएगी।
इसलिए श्रोता साथियों, कार्यक्रम के अंत में आपसे यही कहना चाहूंगी कि आज के इस भागदौड़

0: हमारी जिंदगी में संतुलन ही वह धुरी है जिस पर हमारा पूरा जीवन टिका हुआ है। श्रोता साथियों, पढ़ाई जरूरी है लेकिन जीवन उससे भी बड़ा है। सफलता जरूरी है लेकिन खुश रहना उससे भी ज्यादा जरूरी है साथियों। इसलिए याद रखिए, किताबों से ज्ञान लीजिए, जीवन से अनुभव लीजिए और दोनों को मिलाकर अपना भविष्य बनाइए साथियों, क्योंकि संतुलित जीवन ही सच्ची सफलता का रास्ता होता है। तो इन्हीं उम्मीदों के साथ अब मैं कार्यक्रम से विदा लेने की अनुमति चाहूंगी, क्योंकि दोस्तों देख रहे हैं कि समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का और बातें भी ढेर सारी हो चुकी है। तो विदा मैं जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले आपको मनोरंजन करवाना चाहूंगी यहाँ पर एक प्यारे से गीत के साथ में।
1: सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो।

को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

श्रोता साथियों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम सपनों की उड़ान अब यहीं समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। तो साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखे, कार्यक्रम सपनों की उड़ान, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए साथियों, आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो श्रोता साथियों, फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे अगले कार्यक्रम सपनों की उड़ान में एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार साथियों।

0: हमरो हमरो हमरो गरीबों ने पूछे ही जमीनाती नाम हिरते आवे कागज केने कोने बनाओ पड़े सरकारी विभाग में जाओ या पसे गांव में स्वाद थई जाए तो हमरो बोलो अरे सब समस्या नु समाधान आपे करने से ग्राम सभा तक की बात शुरू थाई है पटवारी सचिव ने पंचायत आय तक की हर प्रक्रिया जुड़े है एकलस ने हमरो ने हाथ मिलने जावु है फार्म भरो जानकारी लो जमी माते नाम लकड़ वो काटो नती जई वरे अधिकार हमरा अपना भी जानकारी सबनो हाथ में अधिकार आस है समाधान में राह
1: होवे भाइयों ने बहनों हक जानो हक मांगो जमीन कागज माते अपनो नाम लकाड़ो
2: वागर रेडियो एवं वागतरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
3: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके जल्दी थकान थावी शारीरिक कमजोरी याददाश्त में कमी श्वास फूलवो आ सब एनीमिया ना लक्षण है होवे भयन बोनू आ लक्षण आपने अपने में देखाए तो आपने अपने पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में जाइने एनीमिया ने निःशुल्क जाँच करावी सुवे आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है होवे एनीमिया ते की बचा बल्ले आपने ने खवाना में दाल पत्तेदार सब्जी गुड़ बाजरा तिल नींबू ने संतरा गोभी तरबूज आंवला टमाटर नु सेवन करवो सुवे होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा
4: वागर रेडियो एवं वागतरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

0: कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। मनीषा, आज कार्यक्रम में श्रोता साथियों से हम बात करने वाले हैं कि वृद्ध हमारे परिवार की जड़ हैं, क्या हम उनके अनुभव और स्नेह की कद्र कर रहे हैं।
0: बिल्कुल
1: जी हाँ श्रोता साथियों, जैसा कि हम जानते हैं और कहते भी हैं कि पेड़ कितना भी बड़ा हो जाए उसकी मजबूती उसकी जड़ों से ही होती है। ठीक उसी तरह हमारा परिवार कितना भी आधुनिक और आगे बढ़ जाए उसकी जड़ हमारे घर के बुजुर्ग होते हैं। उनके जीवन के अनुभव, उनकी सीख, उनका स्नेह और उनका आशीर्वाद परिवार को जोड़कर रखने का काम करता है। लेकिन मनीषा, आज एक सवाल हमारे सामने है कि क्या हम सच में अपने वृद्ध माता पिता और बुजुर्गों के अनुभव और स्नेह की कद्र कर रहे हैं?
0: जी हाँ।
1: क्या हम उनके साथ उतना समय बिताते हैं जितना वे हमारे साथ बिताना चाहते हैं, या फिर व्यस्त जिंदगी, मोबाइल और अपनी परेशानियों के बीच हम उन्हें धीरे धीरे अकेला छोड़ते जा रहे हैं? आज इसी महत्वपूर्ण विषय पर हमारी श्रोता साथियों से ढेर सारी बातचीत रहने वाली है। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में क्यों ना हम पहले गीत के साथ में श्रोता साथियों को मनोरंजन करवा दें।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।

0: श्रोता साथियों, इस प्यारे से गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं, वृद्ध हमारे परिवार की जड़ हैं, क्या हम उनके अनुभव और स्नेह की कद्र कर रहे हैं।
1: बिल्कुल
0: जी हाँ श्रोता साथियों, परिवार केवल कुछ लोगों के साथ रहने का नाम नहीं है, बल्कि यह प्रेम, विश्वास, संस्कार, अनुभव, आपसी सहयोग से बना एक ऐसा संसार है जहाँ हर सदस्य का अपना एक महत्व होता है। परिवार में बच्चों की मुस्कान भविष्य की उम्मीद होती है, युवाओं की ऊर्जा वर्तमान को आगे बढ़ाती है और वृद्धों का अनुभव ही वो परिवार की मजबूती की नींव बनता है। जिस प्रकार किसी विशाल वृक्ष की मजबूती उसकी जड़ों पर निर्भर करती है, उसी प्रकार श्रोता साथियों परिवार की मजबूती उसकी पुरानी पीढ़ी, अनुभव, संस्कार और स्नेह पर निर्भर करती है।
1: जी हाँ मनीषा, बुजुर्ग हमारे परिवार के वे सदस्य हैं जिन्होंने जीवन के कई उतार चढ़ाव देखे हैं। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में परिवार संभाला, बच्चों को बड़ा किया, कम संसाधनों में भी घर चलाया और अपने अनुभवों से आने वाली पीढ़ियों को रास्ता दिखाया। उनकी बातें हमें कभी पुरानी लग सकती हैं, लेकिन उन बातों के पीछे उनका जीवन अनुभव छिपा होता है। खेती बाड़ी से लेकर परिवार के रिश्तों तक, मौसम को पहचानने से लेकर मुश्किल समय में धैर्य रखने तक, बुजुर्गों के पास ऐसी बहुत सी व्यवहारिक समझ होती है जो किसी किताब में आसानी से नहीं मिलती। गाँव में तो बुजुर्ग का अनुभव और भी महत्वपूर्ण है। कौन सी फसल कब बोई जाती है, पुराने समय में पानी कैसे बचाया जा सकता है, कौन से स्थानीय बीज उपयोगी थे, गांव में किस समस्या को मिल बैठ कर हल किया जाता था, इन सब की जानकारी जो है वो हमारे बुजुर्गों के पास होती थी। इसलिए उन्हें केवल उम्र के आधार पर कमजोर समझना सही नहीं है। उनका शरीर भले ही पहले जैसा नहीं हो, लेकिन उनका अनुभव परिवार की बड़ी ताकत हो सकता है।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि हमारे समाज में श्रोता साथियों दादा दादी, नाना नानी और परिवार के बुजुर्ग केवल उम्र दराज के सदस्य नहीं है, वे परिवार के इतिहास, परंपराओं और जीवन मूल्यों के जीवित भंडार होते हैं। उन्होंने अपने जीवन में अनेक उतार चढ़ाव देखे होते हैं, संघर्ष किया है, कठिन परिस्थितियों का सामना किया है, परिवार को संभाला है और अगली पीढ़ी के लिए बेहतर जीवन बनाने के प्रयास किए हैं। उनके अनुभवों में श्रोता साथियों वह ज्ञान छिपा होता है जो किताबों में आसानी से हमें नहीं मिल पाता है।
1: बिल्कुल,
0: हम देखते हैं कि आज का जीवन श्रोता साथी वो तेजी से बदल रहा है। संयुक्त परिवारों की जगह छोटे परिवार बढ़ रहे हैं। काम और पढ़ाई के कारण परिवार के सदस्य अलग अलग शहरों में रहने लगते हैं अंजलि जी, और मोबाइल और इंटरनेट ने लोगों को दूर रहकर भी जोड़ कर रखा है। लेकिन कई बार श्रोता साथियों एक ही घर में रहते हुए भी परिवार के जो सदस्य हैं वे एक दूसरे की भावनाओं से दूर रहते हैं। ऐसी स्थिति में यह सवाल हमारे लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या हम अपने वृद्धजनों के अनुभव और समय और स्नेह का वास्तव में कद्र कर रहे हैं।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। तो इस तरीके से हम श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो

0: अक्सर भोजन, दवा, व्यायाम और जांच की बात करते हैं, लेकिन मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य भी उतना ही जरूरी है। बुजुर्गों को भी ये महसूस होना चाहिए कि परिवार में उसकी जरूरत है, उसकी बात सुनी जाती है और उनका सम्मान किया जाता है। कई बार बुजुर्गों को किसी बड़ी चीज की जरूरत नहीं होती, वे चाहते हैं कि कोई उनके पास बैठ कर दो बातें कर ले, उनके पुराने किस्से सुन ले, उनकी तबीयत पूछ ले, उनके साथ चाय पी ले, उनके हाथ से बना खाना खा ले। हमारे लिए ये छोटी बातें हो सकती हैं, लेकिन उनके लिए यही अपनापन और खुशी का कारण बन सकता है। आज परिवार के सदस्य हम देखते हैं मनीषा कि सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। बच्चे पढ़ाई में, मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, युवा नौकरी और व्यवसाय में व्यस्त रहते हैं। ऐसे में घर के बुजुर्ग कई बार अपने ही परिवार में अकेलापन महसूस करने लगते हैं। कभी वे कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते। अभी समय नहीं है ऐसा कहकर बच्चे भी चले जाते हैं। कभी वे पुरानी बात बताते हैं तो हम उसे सुनने के बजाय मोबाइल देखने लगते हैं। कभी वे अपने स्वास्थ्य की परेशानी बताते हैं तो हम उसे उम्र का सामान्य हिस्सा समझकर टाल देते हैं।
1: जी हाँ,
0: हमें समझना होगा श्रोता साथियों कि किसी बुजुर्ग की बात सुनना केवल बातचीत करना नहीं बल्कि उन्हें सम्मान देना भी है। हर बात पर उनकी राय मानना जरूरी नहीं है, लेकिन उनकी बात को ध्यान से सुनना भी जरूरी है।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, यहीं अगर बात करें कि वृद्ध हमारे परिवार की जड़ क्यों है इसकी, तो श्रोता साथियों हम देखते हैं कि वृद्ध परिवार के उन सदस्यों में शामिल होते हैं जिन्होंने परिवार को बनते और बदलते हुए देखा होता है। उन्होंने अपने जीवन के कई दशक परिवार और समाज के बीच बिताए होते हैं। उनके पास अनुभवों का ऐसा खजाना होता है जिसे अगली पीढ़ी के लिए मार्गदर्शन का साधन बनाया जा सकता है। जड़ दिखाई नहीं देती है साथियों, लेकिन वही पेड़ को खड़ा रख सकती है। इस तरह परिवार के बुजुर्ग हमेशा सामने आकर हमारी मदद करते हैं और हमें नया रास्ता दिखाने में हमारी मदद करते हैं, लेकिन उनके संस्कार और जीवन के अनुभव ही वो हमारी परिवार की सोच और व्यवहार में भी दिखाई देते हैं।
0: बिल्कुल मनीषा, उम्र बढ़ने के साथ शरीर में कई बदलाव आते हैं। आंखों की रोशनी कम हो जाती है, सुनने में परेशानी होती है, कमजोरी, जोड़ों में दर्द, नींद में बदलाव या बार बार थकान जैसी समस्याएं हो सकती है। ऐसे में परिवार की जिम्मेदारी है कि बुजुर्गों की नियमित स्वास्थ्य जाँच करवाए, डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाइयाँ समय पर लेने में उनकी मदद करें। अगर बुजुर्ग अकेले डॉक्टर के पास जाने में असहज महसूस करते हैं तो परिवार का कोई सदस्य उनके साथ जा सकता है। साथ ही घर में उनके लिए सुरक्षित वातावरण होना चाहिए। फर्श पर पानी जमा न होने दें, रास्ते में अनावश्यक सामान न रखा हो, जरूरत के सामान तक उनकी आसानी से पहुंच हो और छोटी सी सावधानी, गिरने जैसी दुर्घटना से बचा जा सकता है, तो हमें इन सारी चीजों का भी विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। बहुत सी बार घर में ऐसा होता है कि बुजुर्ग आवाज लगा रहे हैं और हम इसी किसी कारण की वजह से नहीं पाते हैं, तो हमें जाकर एक बार बुजुर्गों को बोल देना चाहिए कि हम आ रहे हैं, 5 मिनट रुको, क्योंकि बुजुर्गों को ऐसा लगता है कि हमने उनकी आवाज सुनी ही नहीं है और हम नहीं जा रहे हैं। ऐसे में वो अपने काम स्वयं करने जाते हैं और बहुत सी बार वो गिर जाते हैं या उनके साथ कोई हादसा हो जाता है। तो ऐसे में हमें चाहिए कि बुजुर्गों के कार्यों को हम सबसे पहले प्राथमिकता दें, क्योंकि ये ऐसा समय होता है जब उनके अंदर धैर्य और बहुत सारी जो चीजें हैं वो कहीं गुम हो जाती है, वो एक बच्चे की तरह हो जाते हैं, तो उन्हें संभालना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर बातें चली रही हैं, तो ये बातें हमारी आगे भी ऐसे ही जारी रहेंगी। लेकिन क्यों ना श्रोता साथियों के मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दें।
0: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की। और जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना, यही बात करें तो श्रोता साथियों, उम्र बढ़ने के साथ शरीर में कई बदलाव आते हैं। और जैसा कि हमने जाना कि हमारे जो बुजुर्ग हैं उनके आंखों की रोशनी में कमी, सुनने में परेशानी, कमजोरी, जोड़ों में दर्द और नींद में बदलाव और बार बार थकान जैसी समस्या हो सकती है। ऐसे में परिवार की जिम्मेदारी है कि बुजुर्ग की नियमित स्वास्थ्य जाँच हम कराएं और डॉक्टर से ली गई जो दवा है उसे समय पर हम दें। परिवार में किसी छोटे बड़े फैसले के समय बुजुर्गों की राय लेना उन्हें सम्मान देने का एक अच्छा तरीका होता है। चाहे घर में कोई कार्यक्रम हो, खेती से जुड़ा फैसला हो, परिवार में कोई महत्वपूर्ण निर्णय हो, या कशिश या मनीषा बच्चों की परवरिश से जुड़ी कोई बात हो, जहां उनका अनुभव काम आ सकता है वहां उन्हें सलाह दी जा सकती है। इसका अर्थ है कि इसका अर्थ यह नहीं है कि हर निर्णय उन्हीं के अनुसार लिया जाए, बल्कि इसका अर्थ यह है कि उन्हें यह महसूस न हो कि आज भी परिवार का वे महत्वपूर्ण उन्हें ये महसूस हो कि आज भी वे परिवार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम उनकी राय पूछते हैं तो उन्हें अपने जीवन की उपयोगिता भी महसूस होती है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि बुजुर्गों ने अपना समय में कहीं सारी कठिनाइयां हैं वो देखी होती हैं। उन्होंने सीमित साधनों में भी जीवन बिताया होता है, बचत का महत्व वो समझते हैं, रिश्तों को निभाना जानते हैं, कठिन समय में धैर्य रखना वो जानते हैं। आज हम देखते हैं कि आज की पीढ़ी आधुनिक सुविधाओं से घिरी हुई है, लेकिन जीवन की कई सारी व्यवहारिक सीखें होती हैं वो हमारे बुजुर्गों से ही हमें मिल सकती हैं। साथ ही श्रोता साथी, हम देखते हैं कि बुजुर्ग का सबसे बड़ा धन है वो है अनुभव। उन्होंने जीवन में सफलता भी देखी है और असफलताओं का भी सामना किया है। उन्होंने बीमारी, आर्थिक कठिनाइयां, सामाजिक बदलाव, पारिवारिक जिम्मेदारियां और अनेक चुनौतियों का सामना किया होता है।
0: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं श्रोता साथियों कि कई बार युवा किसी समस्या का समाधान इंटरनेट पर खोजते हैं, जबकि उस समस्या से मिलती जुलती जो परिस्थिति का सामना हमारे बुजुर्गों ने किया होता है, पहले ही कर चुके होते हैं। साथियों, इन सारी परिस्थितियों का सामना तो हम उनसे भी ये सारी चीजें हम पूछ सकते हैं। उनके अनुभव किसी पुस्तक की तरह होते हैं, उनके पन्ने जीवन की वास्तविक घटनाओं से लिखे गए होते हैं। यदि हम बुजुर्गों के अनुभवों को ध्यान से सुने तो अंजलि जी, हम देखते हैं कि हम धैर्य रखना, बचत करना, रिश्तों की अहमियत समझना, कठिन समय में निर्णय लेना भी हम उनसे सीख सकते हैं।
0: बिल्कुल मनीषा, कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि पीढ़ियों के बीच सोच का अंतर होना स्वाभाविक है। आज की पीढ़ी तकनीक के साथ बड़ी हुई है, जबकि हमारे बुजुर्ग ने बहुत अलग परिस्थितियों में जीवन बिताया है। इस अंतर को विवाद का कारण बनाने के बजाय सीखने का अवसर बनाया जा सकता है। बच्चे अपने दादा दादी या नाना नानी से पुराने समय की कहानियां सुने, उनसे गांव, खेती, परिवार और परंपराओं के बारे में पूछे, वहीं बुजुर्ग भी बच्चों से मोबाइल, इंटरनेट और नई तकनीकी के बारे में जान सकते हैं। इस तरह दोनों पीढ़ियां एक दूसरे से सीख सकती हैं।
1: जी हां,
0: इसी के साथ बात आती है कि स्नेह का मतलब केवल सेवा करना नहीं है। बुजुर्गों की देखभाल मनीषा केवल खाना और दवा देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए। उनके साथ सम्मान से बात करना, उन्हें अकेला न महसूस होने देना, उनकी पसंद का ध्यान रखना और जरूरत पड़ने पर धैर्य रखना भी देखभाल का हिस्सा है। कभी कभी उम्र बढ़ने के साथ बुजुर्ग एक ही बात बार बार कह सकते हैं।
1: जी हाँ,
0: उनकी चाल धीमी हो सकती है, उन्हें किसी काम में अधिक समय लग सकता है। ऐसी स्थिति में परिवार को चिड़चिड़े होने के बजाय धीरे रखना चाहिए। हम भी कभी बच्चे थे और उन्होंने हमारी छोटी छोटी जरूरतों के लिए कितनी बार धीरे रखा होगा, ये बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि हमारे बुजुर्ग ही वो संस्कारों के वाहक होते हैं। परिवार के संस्कार है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने में हमारे बुजुर्गों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वे बच्चों को परिवार की परंपराएं, लोक कथाएं, त्योहार, रीति रिवाज और सामाजिक मूल्यों से परिचित करवाते हैं। आज के बच्चे अंजलि जी, हम देखते हैं कि तकनीकी दुनिया से बड़े हो रहे हैं और मोबाइल इंटरनेट से इतने जुड़ गए हैं कि उन्हें उनके अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। ऐसे समय में श्रोता साथियों, बुजुर्ग उन्हें अपनी संस्कृति और जड़ों से जोड़ने का काम कर सकते हैं। दादा दादी की कहानियां केवल मनोरंजन का साधन नहीं होती है साथियों, उन कहानियों में ईमानदारी, साहस, मेहनत, करुणा, सहयोग और अच्छे व्यवहार जैसे मूल्य हैं वो छिपे होते हैं। जब बच्चा अपने बुजुर्गों से ये सारी बातें सुनता है तो हम देखते हैं कि उसे अधिक सहजता महसूस होती है, वो सीख पाता है कि ईमानदारी हम कैसे रख सकते हैं, साहस वो अपने अंदर विकसित करना सीख सकता है, मेहनत करना सीख सकता है, करुणा और सहयोग की भावनाएं वो सीख सकता है।
0: बिल्कुल मनीषा, यही श्रोता साथियों से कहना चाहेंगी कि हमारे बुजुर्ग केवल परिवार के सदस्य नहीं हैं, बल्कि परिवार की स्मृतियों और परंपराओं के जीवित दस्तावेज भी हैं। उनसे पूछिए कि हमारे परिवार की शुरुआत कैसे हुई, गांव में पहले जीवन कैसा था, पहले लोग त्योहार कैसे मनाते थे, खेती कैसे करते थे, कठिन समय में परिवार ने क्या किया। इन बातों को सुनकर बच्चे अपने परिवार और गाँव से जुड़ाव महसूस करेंगे। अगर संभव हो तो बुजुर्गों की जो बातें हैं वो रिकॉर्ड भी की जा सकती है। उनकी कहानियां, लोकगीत, पुराने अनुभव और पारंपरिक ज्ञान आने वाली पीढ़ियों के लिए अनमोल धरोहर बन सकते हैं। इसलिए श्रोता साथियों, आज हम अपने घर के बुजुर्गों के लिए छोटे संकल्प लें कि हर दिन कुछ समय उनके साथ बैठेंगे, उनकी बात बीच में काटने के बजाय ध्यान से सुनेंगे, उनकी दवाइयों और स्वास्थ्य जांच का ध्यान रखेंगे, परिवार के जरूरी फैसलों में उनकी राय लेंगे, उनकी क्षमता के अनुसार उन्हें घर के काम और गतिविधियों में शामिल करेंगे, बच्चों को दादी दादा नाना नानी के साथ समय बिताने के लिए प्रेरित करेंगे, उनके पुरानी यादों और अनुभवों को सम्मान देंगे और सबसे जरूरी उन्हें ये एहसास कराएंगे कि वे परिवार पर बोझ नहीं परिवार की ताकत है।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि बुजुर्ग परिवार को केवल सलाह ही नहीं देते, वे भावनात्मक सहारा भी देते हैं। दादा दादी नाना नानी का स्नेह वो बच्चों के लिए विशेष होता है। वो बच्चों की छोटी छोटी बातों को ध्यान से सुनते हैं और बार बार उनके सबसे अच्छे मित्र बन जाते हैं। श्रोता साथियों, जब परिवार का कोई सदस्य परेशान होता है तो बुजुर्ग अपने अनुभव से उसे समझने और हिम्मत देने का प्रयास करते हैं। उनके पास समय होता है, इसीलिए वे कई बार अंजलि जी हम देखते हैं कि दूसरों को धैर्य रखना भी सिखाते हैं। वास्तव में श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि किसी व्यक्ति की परेशानी को दूर करने के लिए हमेशा बड़े संसाधनों की जरूरत नहीं होती है। कभी कभी किसी का ध्यान रखना और किसी की बात है वो ध्यान से सुन लेना भी सबसे बड़ा काम हो सकता है।
0: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हम ढेर सारी बातों को जान पा रहे हैं। ये बातें निरंतर आगे और भी कार्यक्रम के माध्यम से यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि श्रोता साथियों, हम बातें कर रहे थे, वृद्ध हमारे परिवार की जड़ ही, क्या हम उनके अनुभव और स्नेह की कद्र कर रहे हैं? जी हाँ श्रोता साथियों, यह सवाल हमें स्वयं से पूछना चाहिए। हम अपने बुजुर्गों से प्रेम करते हैं, लेकिन क्या हम पर्याप्त समय उन्हें दे पाते हैं? क्या हम उनकी राय को महत्व देते हैं? क्या श्रोता साथियों, हम उनकी जरूरतों को समझने का प्रयास करते हैं? कई बार अंजलि जी, हम देखते हैं कि घर में बुजुर्ग तो मौजूद होते हैं, लेकिन परिवार के बाकी सदस्य अपने काम, मोबाइल और जो व्यस्त दिनचर्या है उसमें इतने उलझे रहते हैं कि उनके पास बातचीत करने के लिए

0: भी समय नहीं निकाल पाते हैं। बुजुर्गों को सबसे अधिक श्रोता साथियों घर के लोगों की आवश्यकता होती है, सुविधाओं की जरूरत होती है, अपनेपन की जरूरत होती है और सम्मान की जरूरत होती है। यदि श्रोता साथियों कोई बुजुर्ग बार बार एक ही बात बताता है तो हमें उसे झुंझकार कर चुप नहीं करा देना है। हो सकता है श्रोता साथियों की कोई बात वो बार बार दोहरा रहे हैं तो हमसे कुछ कहना चाहते हैं या उनकी मन की बात बताना चाहते हैं या किसी काम की वजह से या किसी बात की वजह से उन्हें परेशानी हो रही है तो वो शायद हमें उन्हें वो हमें बताना चाह रहे हैं। तो श्रोता साथियों कभी भी बुजुर्ग हमें कुछ भी बताए तो तुरंत जाके हमें पहले उनका काम करना है।
1: बिल्कुल मनीषा, वृद्ध हमारे परिवार की जड़ है। जड़ दिखाई नहीं देती लेकिन वही पूरे पेड़ को मजबूती देती है। उसी तरह बुजुर्गों का योगदान हमेशा सामने दिखाई नहीं देता लेकिन परिवार की सोच संस्कार और रिश्तों को मजबूत बनाने में बहुत बड़ी भूमिका होती है। समय के साथ उनकी जरूरतें बदल सकती हैं। पहले उन्होंने हमारी शारीरिक जरूरतों पर ध्यान रखा, आज शायद उन्हें हमारी मौजूदगी, बातचीत और सम्मान की जरूरत है। हमें उनके अनुभवों को पुराने जमाने की बातें समझ कर किनारे नहीं करना चाहिए। उनके अनुभवों में जीवन की वह समझ छिपी है जो कई बार मुश्किल परिस्थितियों में हमारा सहारा बन सकती है।
0: जी हाँ।
1: और याद रखिए कि बुजुर्गों की देखभाल केवल हमारी जिम्मेदारी नहीं बल्कि हमारे बच्चों को संवेदनशील और संस्कारी बनाने का माध्यम भी है। जिस घर में बुजुर्गों की बात सुनी जाती है, उनके अनुभवों को सम्मान मिलता है, उनके चेहरे पर अपनापन दिखाई देता है, वहाँ परिवार की पीढ़ियों के बीच रिश्ता मजबूत बना रहता है।
0: जी हाँ।
1: जो आज अपने घर के किसी बुजुर्गों के पास अगर हम बैठते हैं, उनकी बातें सुनते हैं तो हम देखते हैं कि वो हमें बहुत सारी कहानियां सुनाएंगे और उनके अनुभव हैं वो सुनकर हमें ऐसा लगेगा कि वाकई में पहले के जीवन में और अभी के जीवन में बहुत ज्यादा फर्क है। लेकिन फिर भी अभी के जीवन में इतनी सुविधा होने के बाद भी हमें हमारे जीवन से इतनी शिकायतें क्यों हैं? तो बहुत सारे ऐसे अनुभव है श्रोता साथियों जो हम हमारे बड़े बुजुर्गों से ले सकते हैं।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि आज की जीवन शैली पहले की तुलना में काफी बदल गई है। नौकरी, शिक्षा, व्यवसाय और अन्य जो कारणों से हम परिवार के जो सदस्य हैं वो अलग अलग स्थान पर रहते हैं। संयुक्त परिवार कम होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं और छोटे परिवार हैं वो बढ़ रहे हैं। इसी बदलाव के अपने कारण और सुविधाएं होती हैं साथियों, लेकिन इसके साथ ही एक चुनौती भी होती है। बुजुर्ग कई बार अपने आप को अकेलापन महसूस करने लगते हैं। परिवार के सदस्य पास होने के साथ साथ श्रोता साथियों वे सोचते हैं कि घर के लोग हमसे बातें नहीं कर रहे हैं, दूर हैं और किसी कारणवश कोई नाराज है। ये सब सोच के श्रोता साथियों उनके मन में जो निराशा है वो बैठी रहती है। इसलिए श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि अपने बुजुर्गों का सम्मान करें, उनकी निराशा को समझें, उन्हें किस काम से क्या जरूरत है वो सारी चीजें समझें और उनकी मदद करने की कोशिश करें।
1: बिल्कुल मनीषा, उम्र बढ़ना जीवन की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये हम सभी जानते हैं। आज जिस उम्र के पड़ाव पर हम हैं कल को हम भी बूढ़े होने वाले हैं, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ किसी व्यक्ति की उपयोगिता, गरिमा और परिवार में उसकी जगह कम नहीं होनी चाहिए। बुजुर्गों ने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा परिवार को संभालने, बच्चों को आगे बढ़ाने और आने वाली पीढ़ी के लिए बेहतर रास्ता बनाने में लगाया है। इसलिए उनके जीवन के इस पड़ाव पर परिवार का व्यवहार उनके लिए बहुत मायने रखता है।
0: बिल्कुल,
1: जरूरत इस बात की है कि हम बुजुर्गों को केवल उनकी जरूरतों और कमजोरियों के नजरिए से न देखें, उनके भीतर मौजूद अनुभव, धैर्य, जीवन की समझ और रिश्तों को संभालने की क्षमता को भी पहचाने। कई बार वे हमें किसी समस्या का ऐसा समाधान बता सकते हैं जो उनके वर्षों के अनुभव से निकला होता है। उनके साथ बैठकर बातचीत करना परिवार के पुराने अनुभवों को समझने का अवसर भी देता है और पीढ़ियों के बीच दूरी को कम करना भी हमें बताता है। परिवार में बुजुर्गों को सम्मान देने का अर्थ यह नहीं है कि हर बात में उनकी राय ही अंतिम हो। सम्मान का अर्थ है उनकी बात को महत्व देना, उनकी भावनाओं को समझना, उन्हें परिवार से जुड़ा हुआ महसूस कराना और नई पीढ़ी और अपनी सोच के साथ आगे बढ़ना और बुजुर्गों को अपने अनुभव साझा करने देना।
0: जी हाँ।
1: दोनों के बीच ऐसा संतुलन परिवार को अधिक मजबूत बना सकता है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, श्रोता साथियों हम देखते हैं कि हम अक्सर बुजुर्गों का सम्मान उनके पैर छूकर या त्योहारों पर उनके आशीर्वाद लेकर करते हैं। यह एक अच्छी परंपरा है, लेकिन वास्तव में श्रोता साथियों सम्मान कहीं आगे होता है इससे। उनकी बात सुनना, उनकी आवश्यकताओं को समझना, उनके साथ समय बिताना, उनकी पसंद नापसंद का ध्यान रखना और उन्हें परिवार के निर्णयों में शामिल करना भी श्रोता साथियों एक सम्मान का रूप हो सकता है। यदि हम अपने आसपास के जो बुजुर्ग हैं उनको सम्मान दिखाएं श्रोता साथियों, लेकिन उनकी अनुपस्थिति या उन्हें अकेलेपन में छोड़ दे तो अंजलि जी हम देखते हैं कि वो सम्मान है वो अधूरा रह जाता है। सच्चा सम्मान हमारे व्यवहार में दिखाई देता है साथियों। हम देखते हैं कि बुजुर्गों को परिवार के हर निर्णय में अंतिम अधिकार देना आवश्यक नहीं है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन श्रोता साथियों राय लेना उतना ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं कि घर, रिश्ते, आर्थिक योजनाएं, बच्चों की शिक्षा या पारंपरिक जो विषय जुड़े होते हैं उनमें हम अपने बुजुर्गों के अनुभव लेकर हम काम कर सकते हैं।
1: बिल्कुल मनीषा, एक गांव में मोहन जो है वो अपने परिवार के साथ रहता था। घर में उसके बूढ़े दादाजी भी थे। दादाजी अक्सर आंगन में बैठकर पुराने दिनों की बातें करते थे, लेकिन मोहन को लगता था कि ये बातें आज के समय में किसी काम की ही नहीं है। एक दिन घर की खेती में अचानक पानी की समस्या हो गई। परिवार के लोग परेशान थे कि फसल को कैसे बचाया जाए। तभी दादाजी ने कहा कि हमारे समय में भी एक बार ऐसा हुआ था। खेत के पीछे पुराने कुएं से पानी लाने के लिए हमने एक छोटी सी नाली बनाई थी। मोहन दादाजी को साथ लेकर खेत पहुंचा। दादाजी ने जगह देखकर बताया कि नाली कहां से बनाई जाए। परिवार ने उनके पुराने तरीके को थोड़ा बदल कर अपनाया और खेत तक पानी पहुंचाया गया। मोहन चुपचाप दादाजी के पास बैठ गया और बोला, दादाजी मुझे लगता था कि आपकी बातें सिर्फ पुरानी यादें हैं। आज समझ आया कि आपके अनुभव में तो हमारे काम की बहुत सी बातें छिपी हैं। दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा पुराना होना बेकार होना नहीं होता, समय बदलता है लेकिन अनुभव की कीमत कभी पुरानी नहीं होती। उस दिन के बाद मोहन रोज कुछ समय दादाजी के साथ बैठकर बातें करता, उनकी कहानियां सुनता और उनकी कहानियों को केवल सुनता ही नहीं बल्कि उनसे सीख भी लेता। तो श्रोता साथियों ये कहानी हमें सीख देती है कि बुजुर्ग परिवार की पुरानी तस्वीर नहीं बल्कि वह अनुभव है जिसे आज और आने वाले कल को बेहतर बनाया जा सकता है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारी श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर बातें चली रही हैं और कार्यक्रम के माध्यम से हमने ढेर सारी बातों को जाना कि श्रोता साथियों नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के बीच संवाद क्यों जरूरी है, परिवार के निर्णयों में हमारे बुजुर्गों की भागीदारी है वो कितनी महत्वपूर्ण होती है। साथ ही साथियों हमने जाना कि हमें बुजुर्गों का सम्मान कैसे करना चाहिए। तो आगे भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो हम आपसे करना चाहेंगे, लेकिन क्यों ना अंजलि जी अभी श्रोता साथियों के मनोरंजन के लिए कार्यक्रम का एक और गीत सुन ले।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जान ही लिया है, यही श्रोता साथियों हमें यह भी समझना होगा कि बुजुर्गों की जरूरतें केवल दवा, भोजन और आर्थिक सहायता ही नहीं होती है, उन्हें हमें भावनात्मक सुरक्षा, अपनापन, बातचीत और अपनेपन का एहसास भी देना होगा। कई बार दिन में कुछ मिनट उनके पास बैठ जाना, उनकी पुरानी यादें सुन लेना, उनके साथ भोजन कर लेना, बस यह पूछ लेना कि आज आप कैसे हैं, उनके दिन को बेहतर बना सकता है। बुजुर्गों के प्रति हमारा व्यवहार हमारे बच्चों के लिए भी एक सीख बनता है। बच्चे वही देखते और सीखते हैं जो घर में होता है। अगर वे अपने माता पिता, दादा दादी और नाना नानी का सम्मान करते हुए देखते हैं मनीषा, तो उनके मन में भी रिश्ते, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के संस्कार मजबूत होते हैं। इस तरह बुजुर्गों का सम्मान केवल आज के रिश्ते को मजबूत नहीं करता, बल्कि आने वाली पीढ़ी के पारिवारिक संस्कारों को भी आकार देता है।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि आज डिजिटल तकनीकी का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। साथियों, ऑनलाइन भुगतान, मोबाइल बैंकिंग, वीडियो कॉल, डिजिटल सेवाओं का उपयोग बुजुर्गों के लिए, श्रोता साथियों, कभी कभी ये कठिन हो सकता है। युवा पीढ़ी धैर्य के साथ उन्हें तकनीकी का उपयोग करना सिखा सकती है। मोबाइल चलाना, वीडियो कॉल करना, जरूरी डिजिटल सेवाओं का इस्तेमाल करना, ये सारी चीजें अंजलि जी हम सिखाते हैं तो जो बुजुर्ग है वो खुद को आत्मनिर्भर महसूस करने लगते हैं। लेकिन श्रोता साथियों, तकनीकी सिखाते समय उनका मजाक हमें नहीं उड़ाना चाहिए। हर व्यक्ति को नई चीज सीखने में अलग अलग समय लग सकता है, इसलिए श्रोता साथियों हमें ध्यान रखना है। साथ ही साथियों कहना चाहेंगे कि बुजुर्ग हमें बताते हैं कि कठिन परिस्थितियां स्थायी नहीं होती, समय बदलता है और परिस्थितियां भी बदलती है। उनके अभाव में श्रोता साथियों हम अपने जीवन से पीछे नहीं हट सकती। हम कहना चाहेंगे साथियों कि हमारे जीवन में जो कठिनाइयां होती हैं उनका सामना हमें करना पड़ता है। छोटे छोटे प्रयासों से हम सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। इससे श्रोता साथियों हम देखते हैं कि हमारे जीवन में हमें आगे बढ़ने का मौका मिलता है और हमारी जो परेशानियां हैं वो कम होने लगती हैं। उनसे हमें यह सीख मिल सकती है कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। रिश्तों को समय देना जरूरी है, संकट में धैर्य बनाकर रखना जरूरी है, हमारी जरूरतों और इच्छाओं में जो अंतर है उसे पहचानना जरूरी है। आज की तेज जिंदगी में श्रोता साथियों अक्सर तुरंत परिणाम चाहते हैं। बुजुर्ग हमें धैर्य सिखाने के लिए हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं।
0: बिल्कुल मनीषा, इसलिए हमें अपने घर के बुजुर्गों को कभी यह नहीं कहना चाहिए कि अब आप क्या कर सकते हैं, बल्कि उनसे पूछना चाहिए कि उनके अनुभव से हम क्या सीख सकते हैं। ये एक छोटा सा बदलाव लेकिन परिवार के भीतर उनके सम्मान और जुड़ाव को बहुत गहरा कर सकता है। हम ऐसा परिवार बनाने की कोशिश करें जहां बुजुर्गों को अपनी उम्र के कारण पीछे न किया जाए, बच्चों को उनकी बातें सुनने का अवसर मिले, युवा उनकी चीजों से सीख ले सके और हर पीढ़ी जो है वो दूसरी पीढ़ी के अनुभव और जरूरतों को समझने की कोशिश करे। क्योंकि परिवार केवल साथ रहने से नहीं बनता, परिवार तब बनता है जब उसकी हर पीढ़ी को यह महसूस हो कि वह इस घर के लिए महत्वपूर्ण है। हमारे बुजुर्ग हमारे बीते हुए समय की कहानी ही नहीं, हमारे वर्तमान की समझ और आने वाले कल के लिए एक मूल्यवान विरासत भी है। उनकी उपस्थिति को बोझ नहीं, अपने जीवन में मिले एक अनुभव के रूप में देखना ही सच्चे अर्थों में परिवार की संवेदनशीलता है।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हमारे साथियों को हम कहना चाहेंगे कि बुजुर्गों के साथ हमें सम्मान का जो व्यवहार है वो हमें करना चाहिए। बुजुर्गों के लिए परिवार के साथ समय बिताना सबसे मूल्यवान उपहारों में से एक हो सकता है। हर दिन श्रोता साथियों कुछ समय उनके साथ बैठना, उनकी पुरानी बातों को सुनना, परिवार की यादों को साझा करना, साथ उनके साथ बैठकर भोजन करना हमारे रिश्तों को मजबूत बनाता है। कई बार अंजलि जी हम सोचते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, लेकिन जब हम अपने समय का मूल्यांकन करते हैं तो हमें पता चलता है कि थोड़ी देर मोबाइल चलाना हमारे लिए अनावश्यक गतिविधियों को करने के बजाय हम घर के बुजुर्गों के साथ समय बिता सकते थे। इसलिए साथियों कहना चाहेंगे कि कुछ समय अपने बुजुर्गों के लिए निकाले, उनसे बातें करें, उनकी जो मन की बातें हैं उनको सुने और उनके जो अनुभव है वो हमें मिल सकते हैं। इसलिए हमें उनके साथ बैठना हमारे लिए अंजलि जी बहुत जरूरी।
0: बिल्कुल मनीषा, तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें हो गई हैं कि किस तरीके से बुजुर्गों का सम्मान हमें करना चाहिए, उनके अनुभव की कद्र हमें कैसे करनी है। तो आशा करते हैं कि ये सभी बातें श्रोता साथियों को अवश्य पसंद आई होगी, क्योंकि अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे लेकिन जाने से पहले श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पता बताना चाहेंगे ताकि आज का ये कार्यक्रम उन्हें कैसा लगा उसके लिए वह राय सुझाव हमें पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ दोस्तों आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की आपके अपने साथी मनीषा पटेल को
0: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर को।
1: नमस्कार साथी। श्रोता साथियों, आप सभी को छोड़े चलते हैं कार्यक्रम के अंतिम गीत के साथ में।

सेहत नु राज हूँ है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिंदगी पर बात में शुरुआत पानी तक ही करो, थोड़ा सो व्यायाम ने तात्काली में जीवन जीवन, फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगाव, जंक फूड तक ही दूर रह, नींदर पूरी ला ने खुश रह। ओवे सेहत है असली धन आपरो, आज जीवन नो सहारो है, आज तक इस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन ने स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नो असली राज। वाग रेडियो वाग धारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त और इस कार्यक्रम के होस्ट कशिश पाराशर। स्वागत करती हूं दोस्तों आप सभी का हमारे आज के इस कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसे कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम आपकी फरमाइश का सिलसिला हमारा आपके साथ रोज़ाना बना रहता है, सोमवार से शनिवार सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक। और इसी बीच दोस्तों आप अपनी फरमाइश गीतों के लिए हमें व्हाट्सएप SMS करते हैं। तो आज भी कार्यक्रम का सिलसिला सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक इसी तरह चलता रहेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से अपने फरमाइश के गीत हम तक पहुंचाते हैं साथियों। और अगर आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से नए जुड़ रहे हैं, आप भी अपने फरमाइश के गीत सुनना चाहते हैं, हम तक पहुंचाना चाहते हैं, ज़रूर पहुंचा सकते हैं व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से। आपको करना कुछ नहीं है, आपको लिखना है फिल्म का नाम, गीत के बोल, आप कहाँ से इस फरमाइश को सुनना चाह रहे हैं वहाँ का आपको नाम लिखना है, साथ ही फरमाइशकर्ताओं के नाम लिखकर भेज देना है व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से। हमारा नंबर है 9414082643। तो दोस्तों हमें इंतज़ार रहेगा आपके फरमाइश गीतों का। अब जैसा कि कार्यक्रम में फरमाइशों का सिलसिला शुरू हो चुका है, तो मैं फिर से बढ़ना चाहूँगी हमारी पहली फरमाइश के गीत की ओर। पहली फरमाइश के गीत हमारे बीच आई है उत्तर प्रदेश से। फिल्म का नाम है श्रोता साथियों सिर्फ तुम, गीत के बोल हैं एक मुलाकात ज़रूरी है सनम। फरमाइशकर्ता जुड़ रहे हैं आसिफ अली खान, मोमिन अनास, मुस्कान, सादिक अली खान, सारिक अली खान और भी हमारे दोस्त जो हैं जो जुड़ रहे हैं इसी गीत के साथ में। मोहाली पंजाब से हैं बबल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा जी जुड़ना चाह रहे हैं इस गीत के साथ में। नेपा नगर मध्य प्रदेश से भी सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, परगर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगला बेन जी शाह, राजेंद्र शाह, सुषमा कपूर जी और भी श्रोता साथी जुड़ रहे हैं। बागपत से हैं जगमोहन सिंह बदाबुद, मनीष देवी, अर्जुन जी, अंजलि, नितिन जगमोहन, भुवनेश्वरी देवी जी, सुधीर नूतन, रामनाथ कश्यप जी। दिल्ली से जुड़ रहा रामनाथ प्रजापति, सुमन देवी जी। तो आइए श्रोता साथियों सुन लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल हैं एक मुलाकात ज़रूरी है सनम। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

वाली क्रीम लगा के निकलोगे ना तो मिलेंगे वो तीन दाग धब्बे, झाइयां और सांवला पन, मतलब तीन तिगाड़ा चेहरा बिगाड़। ग्लो एंड लवली लगा के बाहर निकलो तो मिलेंगे ये तीन, नमी देने वाला विटामिन ई, दाग घटाने वाला विटामिन बी, सांवले पन से बचाने वाले सनस्क्रीन तत्व, मतलब तीन तिगाड़ा।

श्रोता साथियों, जैसा कि फरमाइश का सिलसिला बहुत अच्छा चल रहा है, शुरुआत हो चुकी है कार्यक्रमों के माध्यम से फरमाइशों गीतों की सुनने की, तो श्रोता साथियों इसी बीच में फिर से बढ़ना चाहूंगी हमारी अगली फरमाइश की गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है रोहिदास चौक पंडापुर सिटी से। फिल्म का नाम है प्यार तो होना ही था। गीत के बोल हैं अजनबी मुझको इतना बता। फरमाइशकर्ता जुड़ना चाह रहे इस गीत के साथ में प्रशांत सिंधे, सुनीता सिंधे, यशा सिंधे, शिंदे, कृष्णा घोड़के जी और भी हमारे श्रोता साथी हैं जो इसी गीत के साथ जुड़ना चाह रहे हैं। आपको नाम बताना चाहूंगी। दोस्त जुड़ना चाह रहे हैं पूसत से रारू मानकर, रानी मानकर, राम मानकर, सबुरी मानकर, केदारनाथ जी, ये पूसत से जुड़ना चाह रहे हैं। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं, नाम बताना चाहूंगी गाजीबाद से शिशपाल अकेला, तेजपाल प्रजापति जी। कश्मीर से है फैजरा मिराजुद्दीन, नजमुद्दीन, क्वासिरुद्दीन। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं अजनबी मुझको इतना बता। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोता साथियों, जैसा कि बहुत ही प्यारा सा गीत था, प्यार तो होना ही था फिल्म का, अजनबी मुझको इतना बता दिल मेरा क्यों परेशान है, इसी गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की। और अगली फरमाइश हमारे बीच आई है फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश से। फिल्म का नाम है श्रोता साथियों धड़कन। गीत के बोल हैं, दुल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। फरमाइशकर्ता जुड़ना चाह रहे हैं सूरज चुरैसा, सरोज चुरैसा, सुबोध चुरैसा, लल्ला चुरैसा जी, नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से भी श्रोता साथी इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं। महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मण देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, टिंकल टिंपल मीनाक्षी, निशा जी तुलसी और दिशा जी गोस्वामी जी, और भी हमारे साथी हैं जो जुड़ रहे हैं। पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से हैं बलकर्ण वर्मा, अंजनी वर्मा, ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र मनहरण वर्मा जी। इंदौर से जुड़ना चाह रहे कुमारी वंदना मराठा, भाव मराठा, पूजा रेखा रघुवंशी, निशा बल्लन रघुवंशी, ललिता लक्ष्मी खड़से जी, आराध्या गणेश खड़से जी और सत्यनारायण भाव खड़से जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे अनुरोध करता संजय कॉलोनी खंडवा से भी अब्दुल गफार डावर, खुशसिब अब्दुल हक डावर, जिया उलक, अब्दुल रहमान डावर, हमजा डावर जी, और भी दोस्त जुड़ रहे हैं गुणवंत श्रीवास, करुणा श्रीवास, आयुष श्रीवास, विवेक श्रीवास, बीबी आयुष श्रीवास छत्तीसगढ़ से हैं, मोहन सिंह राज, अनितराज, सुमित सोमू, मानस राज, ये कौरबे बलतरा से जुड़ रहे हैं। भोपालगढ़ राजस्थान से हैं धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान छिपा, पूजा परिहार जी। तो आइए श्रोता साथियों सुन लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं, दुल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोता साथी, उस गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है, मैं आपको बताना चाहूँगी। फिल्म का नाम है श्रोता साथियों मासूम। गीत के बोल हैं, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी। ये फरमाइश हमारे बीच गिरटिए झारखंड से आई है। फरमाइश करता जुड़ना चाह रहे हैं इस गीत के साथ में ममन यासिन हाशमी, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफरा नवाज, बेबी चाहत और भी हमारे श्रोता साथी हैं जो इसी गीत के साथ जुड़ रहे हैं। बताना चाहूँगी, पाटापारा छत्तीसगढ़ से हैं हीरा मणिवर्मा, पारस मणिवर्मा, पुष्पेंद्र मणिवर्मा, नौखेलाल वर्मा जी। डाबकी रोड अकोला से हैं सुशीला देवी मंदुरकर, सदानंद मंदुरकर, कुमार गौरव मंदुरकर। यवतमाल से हैं निशा रानी नागरिकर, निनेश नागरिकर, आरव अर्पिता जी। जोधपुर राजस्थान से हैं रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी और हिमाक्ष जी। पतरोड से हैं विजय अंबाड़कर, सुनीता अंबाड़कर, अक्षय ऋषिकेश, राधिका अंबाड़कर जी। राहुल नगर अमरावती से जुड़ना चाह रहे सिद्धार्थ गुणाने, अर्चनाताई गुणाने, हीरामन शेंडे, प्रेम प्रसिद्धि प्रतिभा गुणाने जी। तो आइए श्रोता साथियों सुन लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोता साथियों, जैसा कि बहुत ही प्यारा सा गीत था मासूम फिल्म का, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं। इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की ओर। दोस्तों, अगली फरमाइश हमारे बीच आई खेल बाजार पानीपत से। फिल्म का नाम है मैं

आपको बताना चाहूंगी। जिस्म गीत के बोल है आवारापन बंजारापन। फरमाइश करता जुड़नाचार्य नरेश मल्होत्रा नीटू लक्ष्मण मल्होत्रा लाडो कोयल मल्होत्रा नानक चल मल्होत्रा रोहतक से पीयूष सिक्का को निकट कोयल और डुगू भावी का सिक्का जी। कुंभार गली कौल गांव से हैं पांडु चंदन उषा चंदन रानी प्रतीक्षा चंदन अभिषेक चंदन सार्थक प्रतिमेश चंदन संतोष पांडुरंग कुम्हार जी। नेहरू चौक पैठन से सुरेश यादव अनिता यादव आरती प्रसाद सोनल यादव बेबी सिया यादव जालना शहर से सोमनाथ यादव गीता ओम सुभाष चंद्र एकनाथ यादव। इसी बीच हमारे और भी श्रोता साथी हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं, जुड़ रहे हैं। उत्तराखंड से ताजुबंद अंसारी गुलाम शाबी राही मेहराज जहां। नवाशहर पंजाब से हैं गंगनदीप थांडी तृप्ता कुमारी थांडी प्रियंका थांडी प्रशांत थांडी प्रियम वामिका थांडी जी और वाणी थांडी जी। सिंधी बुजुर्ग महाराष्ट्र से हैं किशोर वड़तकर शुभम वड़तकर पुन्नू वड़तकर जी। दादरी गेट भिवानी से हैं कृष्ण मेहरा कोमल किरण कपिल कुणाल मेहरा। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल है आवारापन बंजारापन। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

दोस्तों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश के गीत की ओर। श्रोता साथियों, अगली फरमाइश हमारे बीच आई है मुंडा टोला डोरी लोहारा से। फिल्म का नाम है दीवाना, गीत के बोल हैं पाई अलिया ओहो हो हो। फरमाइश करते हैं, इस गीत के साथ जुड़ना चाह रहे हैं, आपको बताना चाहूँगी डोमेंद्र नेताम, गंगेश्वरी नेताम, चंचल नेताम, कामेश नेताम, माहिर जी और भी हमारे साथी जुड़ना चाह रहे हैं इसी गीत के साथ में। आपको नाम बताना चाहूँगी, जुड़ना चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश से, जुड़ना चाह रहे हैं रामशर विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू रजना, प्रियाली और दिव्यांशी विश्वकर्मा जी। इसी बीच दुलापुर उत्तर प्रदेश से हैं मोहम्मद फरमान, सलमान इरफकार, नरगिस खातून जी, इसराज जी और नरगिस जी। छत्तीसगढ़ से जुड़ना चाह रहे हैं कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, निशा मरावी, नेहा मरावी, पुष्पराज, ऋषभ मरावी जी। येताला महाराष्ट्र से जुड़ रहा है शंकरलाल जायसवाल, गणेशलाल जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल, अर्णय जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल, राखी जायसवाल, तृप्ति जायसवाल। पटियाला से बत्ता परिवार जुड़ रहा है मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन और नितिन, करण और गीतू, निहारिका, मनीष बत्ता जी। एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट और भी हमारे श्रोता साथी जुड़ रहे हैं। सहारनपुर से हैं जनकपुरी से जॉन डिकेस्ट्रो, रिकेस्ट्रो, पल डिकेस्ट्रो, विलिस डिकेस्ट्रो जी। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं पाई अलिया हो हो हो हो। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर के साथ में।

नमस्कार श्रोता साथियों, मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी मनीषा पटेल। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसा कि श्रोता साथियों, कार्यक्रम का सिलसिला बना हुआ था सुबह 11 बजे से, जिसे आप सुन पा रहे थे प्रस्तुतकर्ता कशिश पारेशर के साथ में। अब आप इसे सुन पाएंगे मेरे साथ में, यानी कि आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में। साथियों, इसी सिलसिले को जारी रखते हुए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है झाकोत राजस्थान से। फिल्म का नाम है धर्मवीर। गीत के बोल ही, अरे मैंने तुमको चाहा ये मेरी मेहरबानी। इस गीत को आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी जी ने। इस गीत की फरमाइश करता है शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार खटक, कुमारी पूजा जी खटक। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं पटिया कला दुर्ग से, संजय कुमार शाहू, सुजिता शाहू, शशन जी शाहू और सीमा जी शाहू। इसे भी जुड़ना चाह रहे हैं अनारकली बाजार जगराओं से, सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, बाई सुच्चा सिंह पाठक। महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं बाबा साहेब कणककर, साखरबाई कणककर, परमेश्वरी रोहिणी, श्रावणी ईश्वरी और कणककर परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वाग रेडियो 90.8 FM पर आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

आइए श्रोता साथियों, इस प्यारे से गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है कंस्टुडवारा से। फिल्म का नाम है क्रांति, गीत के बोल ही जिंदगी की ना टूटे लड़ी। इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर जी ने और किशोर कुमार जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है शमशुल कमर राही, साहिन फातिमा, अजनान खान, फिजाद खान, अनु खान। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं, जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, पप्पी भाटिया, तमन्ना जी भाटिया। इस गीत के अनुरोध करता है पंजाब से सुभाष गोद्रा, बिमला गोद्रा, पार्वती, हिमांशु गोद्रा। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं वासी महाराष्ट्र से मास्टर विठल सुरेशी, सुषमा सुरेशी, परिधि सुरेशी, मायराजी सुरेशी। इस गीत के अनुरोध करता है सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति वर्मा, शिवांशी वर्मा। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। फिल्म का नाम है क्रांति, गीत की बोल है जिंदगी की ना टूटे लड़ी। इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर जी ने और नितिन मुकेश जी ने। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं साथियों की फरमाइश के इस गीत को। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहिएगा साथियों आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।

श्रोता साथियों, अभी हमने नितिन मुकेश और लता मंगेशकर जी की आवाज़ में बहुत ही प्यारा गीत सुना। गीत के बोल थे, जिंदगी की ना टूटे लड़ी। इस प्यारे से गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। फिल्म का नाम है नसीब। गीत के बोल ही जिंदगी इम्तिहान लेती है। इस गीत की फरमाइश करता है गुणवत श्रीवास, श्रीमती करुणा श्रीवास, आयुष श्रीवास, विवेक जी श्रीवास, बीबी आयुष श्रीवास। बेलतारा छत्तीसगढ़ से जुड़ना चाह रहे हैं मोहन सिंह राज, अनिता राज, सुमे सोमो और मानस सिंह राज। इस गीत के अनुरोध करता है बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हेमंत नामदेव, नंदनी नामदेव, नेहा नामदेव, निशा नामदेव, छन्नूलाल श्रीवास, रंजन साहू जी। इस गीत के अनुरोध करता है सहारनपुर से समीद मशरूम, साइना हसन, अगजा अदीब, नाजिया आफिया, इब्राहिम और सदाम जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं नरवेल महाराष्ट्र से पीएच निहावकर, निर्मला निहावकर, विशाल निहावकर। मलकापुर महाराष्ट्र से जुड़ना चाह रहे हैं नारायण इगले, सोपान इगले, आशीष मेहकर जी। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल ही जिंदगी इम्तिहान लेती है। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, आपकी अपनी साथी मनीषा पटेल के साथ में।

आयुश्रोता साथियों, इस प्यारे से गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है चूरी छत्तीसगढ़ चीला कोरबा से। फिल्म का नाम है बंदनी, गीत की बोल ही वो कौन है तेरा। इस गीत को आवाज दी ही एस जी बर्मन ने। इस गीत की फरमाइश करता है लक्ष्मण सिंह ठाकुर, सावित्री देवी ठाकुर, कमल सिंह ठाकुर, ईश्वर सिंह ठाकुर, माला ठाकुर, बबन मीनू, काना हरिप्रिया जी ठाकुर। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं चौराहा यूपी से, सुरेश चौरासिया, श्रीमती सरोज चौरासिया, सबो सलोनी चौरासिया, संजू लल्ला चौरासिया, पूजा पिंकी चौरासिया, बाबू शिवानी शिवाजी चौरासिया। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं पलारी छत्तीसगढ़ से नीतीश कुमार, दुर्गा प्रसाद, पराग टेलर, पूना राम और कृष्णा जी। इस गीत की अनुरोध करता है उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजवाज पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष्य सोहिनी, मोहिनी ऋतिक, बलवीर सिंह जी। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश की इस गीत को। गीत के बोल ही वह कौन है तेरा। इस गीत को आवाज दी है सचिन देव बर्मन ने। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

सी कमाई, कुछ तेरा ना मेरा, कुछ तेरा ना मेरा मुसाफिर।

आइए श्रोता साथी, इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है धनुरी तेलीवाला से। फिल्म का नाम है आज का अर्जुन, गीत के बोल हैं गोरी है कलैया। इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर जी ने और शब्बीर कुमार जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है निसार सलमानी, नौसाद सलमानी, बेबी आलिया, आयन बाबू। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे, छत्तीसगढ़ से मानसी राम प्रजापति, श्रीमती सरिता प्रजापति, धनश्याम राम, हरिशंकर, रमेंद्र कुमार, प्रशांत, हेमंत प्रजापति जी। इसे भी जुड़ना चाह रहे हैं टिकमगढ़ मध्य प्रदेश से बजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा, आशीष जी विश्वकर्मा। इस गीत के अनुरोध करता है भीड़ शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, अंजलि करवा, बाल प्रसाद करवा, धनजय बिट्टू, बीपी गुलेश जी, रामनिवास अग्रवाल जी। बोरखेड़ा पित्रामल से जुड़ रहे हैं विनोद मुणत, नेहा जैन, दीपक मयंग मुणत, चेतन नाइटा, दिलीप कुशपणा पवार जी। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल ही गोरी है कलैया और इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर जी ने और शब्बीर कुमार जी ने। तो आइए साथियों, सुनते हैं श्रोता साथियों की फरमाइश के इस गीत को। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

आइए श्रोता साथियों, इस प्यारे से गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है कलानोर से। फिल्म का नाम है तेरे नाम, गीत के बोल हैं क्यों किसी को। इस गीत को आवाज़ दी है उदित नारायण जी ने। इस गीत की फरमाइश करता है नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन शर्मा, मयंक जी शर्मा। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं श्री रामपुर महाराष्ट्र से नाशी शेख, नाजियाना शेख, साहिद शेख। अहमदनगर से जुड़ना चाह रहे हैं जुमेद मुजावर, सबिहा मुजावर, मिखाइल जुमेब जी मुजावर। इसे भी जुड़ना चाह रहे हैं कुंभार गली श्री रामपुर से अशोक दली, सविता दली, अनिकेत दली, रोहिणी दली, ऋषिकेश दली, जीविका दली, सानिका जी दली। पुनावली पुणे से जुड़ना चाह रहे हैं अजय सोनोने, करिश्मा सोनोने, अविका सोनोने, विशाखा सोनोने जी। अकोट से जुड़ना चाह रहे हैं विनायक भिंडी, श्रीमती मंगला जी भिंडी, विजय शुभम जरिए, पवन जरिए, सजीव जी। इस गीत के अनुरोध करता है पंजाब से बबल मल्होत्रा, ओम प्रकाश जी मल्होत्रा। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं श्रीरामपुर से डी अशोक कुम्भार, अविका जीविका, सोनू कुम्भार, अर्चना कुम्भार। पुनावले से जुड़ रहे हैं अजीत सोनोने, करिश्मा सोनोने, अविका सोनोने, शाइसा जी सोनोने। बोरी खुर्दे से जुड़ना चाह रहे हैं सुधाकर राज यादव, प्रशांत राज यादव, जंगूताई राज यादव, सचिन, प्रथमेश देशमुख, सर्वत देशमुख, हर्षिता देशमुख, सानवी जी देशमुख, कुमारी प्रणाली जी देशमुख। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। फिल्म का नाम है तेरे नाम, गीत के बोल हैं क्यों किसी को प्यार में मोहब्बत नहीं मिलती। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

आइए श्रोता साथियों, इस प्यारे से गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है जलालाबाद वेस्ट से। फिल्म का नाम है राम तेरी गंगा मेली। गीत के बोल है सुन साहिबा सुन प्यार की धुन। इस गीत को आवाज दी लता मंगेशकर जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी, निमित आहूजा जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं आगरा से श्रीमती सरिता चौरासिया, सुमित चौरासिया, वीर और अभीर जी चौरासिया। कानपुर से जुड़ना चाह रहे हैं श्रीमती सुजाता चौरासिया, पंकज चौरासिया, पीहू और दिया जी चौरासिया। इस गीत के अनुरोध करता है बिलासपुर छत्तीसगढ़ से छनुला श्रीवास, संत्या पुष्पा श्रीवास, अंजुयुक्ता श्रीवास, रंजन शाहू, हेमंत नामदेव, धर्मदास वाधवानी जी। और भी साथी जुड़ना चाह रहे हैं महाराष्ट्र से रुपेश संगई, महेश संगई, प्रजेश संगई, प्रीतेश संगई और संगई परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश की इस गीत को। फिल्म का नाम है राम तेरी गंगा मेली। गीत की बोल है सुन साहिबा सुन बरस प्यार की धुन। इस गीत को आवाज दी है लता जी ने। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं श्रोता साथियों की फरमाइश की इस गीत को। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

आइए साथियों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है मुरादाबाद से। फिल्म का नाम है अनाड़ी, गीत के बोल ही क्या मौसम आया है। इस गीत को आवाज दी है उदित नारायण जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है माया देवी, ऋतिक, आदित्य जी का साना। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे महाराष्ट्र से, महादेव दामोदर, शशिला दामोदर, सुमित कुमार दामोदर, साधना पवन पाटिल, अनमोल मानवर, शोभाताई मानवर, श्लोक और दीपाली जी इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं। अहमदनगर से नाजिर जैन पटेल, अमीना पटेल। इस गीत के अनुरोध करता है दिल्ली से बीबी अंसारी, डब्ल्यू अंसारी, दानिश जी अंसारी। रायगढ़ से जुड़ना चाह रहे हैं नरेंद्र डोमेन, महेंद्र डोमेन, जानवी जी डोमेन। बिहार से जुड़ रहे हैं राज एडी अंसारी, फातिमा राज अंसारी। इस गीत के अनुरोध करता है गंजद्वारा से आफ्ताब अंसारी, रियाना अंसारी, मोहम्मद फेक अंसारी, अनवर मास्टर लुभाना अंसारी, आलिया जी अंसारी। दिल्ली से जुड़ना चाह रहे हैं डॉक्टर बीबी अंसारी, डॉक्टर डब्ल्यू जी अंसारी। गुजरात से जुड़ रहे हैं अजीत पाल। अंबाला से जुड़ना चाह रहे हैं दिलीप यादव, राकेश यादव और संदीप यादव। बिहार से जुड़ना चाह रहे हैं राज एडी वली अंसारी जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्ला अंसारी, असमानाज अंसारी, शबनम बानो। जेल रोड बक्सर से जुड़ रहे हैं राज एडी अंसारी, फातिमा नाज। दिल्ली से जुड़ना चाह रहे हैं डॉक्टर सोनम और डॉक्टर अलीबाजी। इस गीत के अनुरोध करता है दादरी गेट भवानी से कृष्णा मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणाल जी मेहरा। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं कलकत्ता से बसंत कुमार सिंहा, रेखा देवी, अजय कुमार, रश्मि अनुश्री। तिलैया से जुड़ना चाह रहे हैं शिवानी कुमारी, प्रियंका कुमारी, रिया जिया, टूशी आरुषी, अरविंद बाबू, मुन्नी देवी, जयप्रकाश, बसंत लाल और हीरा और मोती जी। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश की इस गीत को। फिल्म का नाम है अनाड़ी और गीत के बोल हैं क्या मौसम आया है। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर। और श्रोता साथियों यह गीत आज के कार्यक्रम आपकी फरमाइश का अंतिम गीत थी। हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।

बहन बोनो, आ तो हती हमारी आज की सभा। हमें आशा कर रहा हूँ कि आज की सभा में प्रसारित था हमारा कार्यक्रम गीत संगीत आपने पसंद आई हुआ होगा। आपने हमारा आज ना कार्यक्रम केवल आ गया इन्हें बल्ले आप अपने राय सुझाव आ ले सको हमारे अड़पता माते। हमारो पतु है वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारो पिन कोड नंबर है 327001। अजी वधारे जानकारी बल्ले आप मने फोन करी शको अमारे अणा फोन नंबर माते। अमारो फोन नंबर है 9414082643। तो भाई बनो, आ तो हती आपने आज नी सभा। बीजी सभा में फेरी मुलाकात थागा। तारुदी आपनी बोन अंजलि नु राम राम राम राम।

આજ ની હાજર ની સભા મે આપ સભાંડી રહ્યો આપણો સમુદાય રેડિયો વાગડ રેડિયો ને 98.8 FM માટે મો હું આપને હાથે આપની પુનંજલી પારેશ્વર ને આજે વાર ગુરુવાર ની તારીખ 1 ઓક્ટોબર 2026 નો દાડો હે મેન મોનો મે દેખી રહ્યો હું કે આપણે સ્ટુડિયો ની ઘડી મે હાજર ની પાસવા કી કી હે તવે આપણે શરૂઆત કરો હાજર ની સભા મે પુનઃ પ્રસારિત થવા વાળા કાર્યક્રમો ની સંક્ષિપ્ત રૂપરેખા सभा ने शुरुआत करूंगा सप्ते की पहले भक्ति श्रद्धा ने आस्था की जुड़ कार्यक्रम आराधना तक की इन्हें में अपना हम रंगा आज न सुविचार ने हाथे भक्ति में गीत अनस क्रम में अपने आगे बढ़ूंगा हमारी ने तुम्हारी आवाज कार्यक्रम युवाओं आवाज ने आड़ी आ कार्यक्रम आप हम सकोगा ठीक 5:30 माते प्रस्तुत करता जागृति भट्ट ने कशिश पारेश्वर ने हाथे इस कड़ी में बीजा कार्यक्रम ने शुरुआत था का जिन्हें कहें बालकन बालपन एटले कार्यक्रम सच्चा बचपन और कार्यक्रम आप हमें सकोगा ठीक 6 प्रस्तुत करता कशिश पारेश्वर ने आपनी बोन अंजलि पारेश्वर ने हाथे इस कड़ी में अपना आगे बढ़ूंगा अपने किसान भाई बहनों की जोड़ कार्यक्रम खेती बाड़ी आ कार्यक्रम आप हम सकोगा ठीक 6:30 माते प्रस्तुत करता जागृति भट्ट ने आपनी बोन अंजलि पारेश्वर ने हाथे इस कड़ी में अपना आगे बढ़ूंगा अपने अधिकार कानून आनंद की जोड़ कार्यक्रम सच्चा स्वराज आ कार्यक्रम आप हम सकोगा ठीक 7:00 प्रस्तुत करता जागृति भट्ट ने आपनी बोन अंजलि पारेश्वर ने हाथे बीजा कार्यक्रम की शुरुआत था का ठीक 7:30 माते कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य आ कार्यक्रम में आवीने प्रस्तुत करता कशिश पारेश्वर मनीषा पटेल अना साथे भाई बोनू ठीक 8:00 आप हमारों का कार्यक्रम सपनों की उड़ान आ कार्यक्रम लेने आवेगा हमारे रेडियो साथी भाई बोनू इन बात ठीक 8:30 माते आप हमारों का कार्यक्रम फिल्म संगीत जिनमें आप हम लोग फिल्मी गीतों ने सुनने की मैन बोनू ठीक 8:00 तक की 9:00 भी आप हम लोग कार्यक्रम शामिल कर सर तो आ तो होती अपने हाजिर सभा में पुनः प्रसारित थाले वाला कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा अब अपने सभा में शुरुआत करें भक्ति श्रद्धा ने आस्था तक जोड़ कार्यक्रम आराधना तक की

0: भविष्य का दूसरा नाम है संघर्ष। हृदय में आज इच्छा होती है और यदि पूर्ण नहीं हो पाती तो हृदय भविष्य की योजना बनाता है। भविष्य में इच्छा पूर्ण होगी ऐसी कल्पना करता रहता है, किंतु जीवन जीवन ना तो भविष्य में है ना अतीत में। जीवन तो इस क्षण का नाम, अर्थात इस क्षण का अनुभव ही जीवन का अनुभव। पर हम ये जानते हुए भी इतना सा सत्य समझ नहीं पाते। या तो हम बीते हुए समय के स्मरणों को घेर कर बैठे रहते हैं, या फिर आने वाले समय के लिए हम योजनाएं बनाते रहते हैं और जीवन जीवन बीत जाता है। एक सत्य यदि हम हृदय में उतार लें कि ना हम भविष्य देख सकते हैं, ना ही भविष्य निर्मित कर सकते हैं, हम तो केवल धैर्य और साहस के साथ भविष्य को आलिंगन दे सकते हैं, स्वागत कर सकते हैं भविष्य का, तो क्या जीवन का हर पल जीवन से नहीं भर जाएगा? स्वयं विचार कीजिए।
1: आप सुन रहे हैं आराधना, आपके अपने वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन। होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपड़ा ने थी सके। जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाई बोनु, आ लक्षण आपड़ा ने आपड़े में देखाए तो आपड़ा ने आपड़े पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाईने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होवे एनीमिया तकी बचा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दाल, पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: जागृति बुन, आपने कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुकी जाएंगा तो हूँ था है?
4: नाना अंजलि बुन, हूँ था का?
3: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदिये है ये हुकी जाएंगा, खेतर बंजर थे ही जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा।
4: ओ अंजलि बुन, इटले इस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
3: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है।
4: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
3: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बहनों ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
5: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आप सभी साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ साथियों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: लेकर हाजिर श्रोताओं कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातचीत रहने वाली है युवा और बुजुर्गों के अनुभव दो पीढ़ियों के बीच संवाद की दूरी क्यों को लेकर।
0: बिल्कुल,
1: जैसा कि कशिश हम देखते हैं कि एक तरफ है युवा पीढ़ी जिसके हाथ में स्मार्टफोन है, आंखों में सपने हैं और कदम भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ है हमारे बुजुर्ग जिनके पास शायद स्मार्टफोन की सारी सुविधाएं न हों लेकिन उनके पास है जिंदगी का अनुभव। आज का सवाल श्रोता साथियों, क्या युवा और बुजुर्गों के बीच संवाद की दूरी बढ़ रही है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। क्या हम अपने घर के बुजुर्गों की बातें सुनने के लिए उतना समय निकालते हैं जितना सोशल मीडिया पर बिताते हैं? और सबसे जरूरी सवाल ये है श्रोताओं कि क्या दो पीढ़ियों के बीच ये दूरी तकनीक की वजह से है, सोच की वजह से है या फिर संवाद की कमी की वजह से है?
0: जी हाँ,
1: इन्हीं सवालों के साथ आज का हमारा कार्यक्रम है युवा और बुजुर्गों के अनुभव दो पीढ़ियों के बीच संवाद की दूरी क्यों है को लेकर।
0: बिल्कुल,
1: ये बातें आज हम जरूर जानेंगे, इन प्रश्नों के उत्तर हम जरूर देंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से। लेकिन जैसा कि शुरुआत का दस्तूर है कि शुरुआत में हम हमारे श्रोता साथियों को मनोरंजन करवाते हैं, तो सुन लेते हैं कार्यक्रम का पहला गीत और हमारे युवा साथियों को मनोरंजन भी करवा देते हैं।
0: बिल्कुल।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसा कि गीत से पहले विषय बता चुके हैं कि आज का जो कार्यक्रम के माध्यम से विषय है वो काफी महत्वपूर्ण है।
1: बिल्कुल,
0: आज के इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं ऐसी दो पीढ़ियों की जो एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकती है जागृति जी, लेकिन कई बार एक दूसरे को ही समझ नहीं पाती।
1: जी हाँ,
0: अगर बात करें दो पीढ़ियां दो अनुभव की, तो दोस्तों एक परिवार की आप कल्पना कीजिएगा, घर में दादी जी बैठी हैं, उनके पास पुराने समय की कई कहानियां हैं।
1: बिल्कुल,
0: खेती की, संघर्ष की, परिवार की, गांव की, रिश्तों की, और उस समय की जब जीवन में सुविधाएं कम थी, लेकिन लोगों के पास एक दूसरे के लिए समय ज्यादा था। वहीं घर का युवा अपने मोबाइल में व्यस्त है, उसके पास जागृति जी ऑनलाइन पढ़ाई है, सोशल मीडिया है, दोस्तों के मैसेजेस हैं, करियर की चिंता है और भविष्य को लेकर ढेर सारे सपने हैं।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, दोनों है तो एक ही घर में, लेकिन क्या दोनों वास्तव में एक दूसरे के साथ हैं? कई बार जवाब इसका होता है नहीं। बुजुर्गों को लगता है कि आज की युवा पीढ़ी हमारी बातें सुनना नहीं चाहती, और युवाओं को लगता है कि बुजुर्ग हमारी सोच और हमारी परिस्थितियों को समझ नहीं पाएंगे।
1: जी हाँ,
0: और यहीं से जागृति जी शुरुआत होती है दो पीढ़ियों के बीच संवाद की दूरी की। लेकिन अगर हम थोड़ा रुक कर सोचेंगे श्रोता साथियों, तो हम ये पाएंगे कि दोनों पीढ़ियां गलत नहीं है, बस दोनों की दुनिया अलग अलग है।
1: जी हाँ कशिश, क्योंकि किताबें हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, इंटरनेट पर हमें हजारों जानकारियां मिल सकती है, लेकिन साथियों जीवन का अनुभव केवल जीकर ही हासिल किया जा सकता है। हमारे बुजुर्गों ने ऐसे समय को देखा है जब घर में टीवी तक नहीं होता था, मनोरंजन के लिए परिवार साथ में बैठते थे, बिजली की सुविधा हर जगह नहीं थी, मोबाइल और इंटरनेट तो दूर की बात हो गई। उन्होंने कम साधनों में भी जीवन जीना सीखा है कशिश, उन्होंने देखा है कि मुश्किल समय में परिवार कैसे साथ खड़ा होता है। श्रोता, उन्होंने सीखा है कि रिश्ते केवल फोन के कॉन्टेक्ट लिस्ट में नहीं होते, उन्होंने जाना है कि किसी की मदद करने के लिए हमेशा पैसे की जरूरत नहीं होती, कभी कभी सिर्फ साथ खड़े होना भी बहुत ज्यादा हो जाता है।
0: बिल्कुल,
1: उनके अनुभव हमारी संस्कृति है, हमारी स्थानीय परंपराएं हैं, लोक कथा है, खेती किसान का ज्ञान है, घरेलू समझ है, और जीवन के संघर्षों से निकली सीख है।
0: बिल्कुल,
1: इसीलिए साथियों बुजुर्ग केवल हमारे परिवार के सदस्य नहीं है, वे हमारे जीवित अनुभवों की किताब है।
0: जी हाँ जागृति जी, लेकिन हमारे युवा साथियों से हम कहना चाहेंगे कि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बुजुर्गों के पास सीख है और युवाओं को सिर्फ सुनना ही है। युवा पीढ़ी भी अपने समय की चुनौतियों से गुजर रही है। आज के युवाओं के सामने भी पढ़ाई है, प्रतियोगिता है, करियर है, तकनीक है, सोशल मीडिया है, और बदलती दुनिया जैसी कई चुनौतियां हैं। आज का युवा नई तकनीक को जल्दी समझता है, वह दुनिया के अलग अलग हिस्सों की जानकारी कुछ ही सेकंड में हासिल कर लेता है जागृति।
1: बिल्कुल,
0: साथ ही वह नए विचारों को अपनाने के लिए भी तैयार है। इसलिए पीढ़ियों के बीच संवाद का मतलब ये नहीं है कि एक पीढ़ी बोले और दूसरी केवल सुने, संवाद का मतलब है कि दोनों एक दूसरे को सुने। बुजुर्ग जो हैं वो युवाओं को अनुभव दे सकते हैं, और युवा बुजुर्गों को बदलती दुनिया से जोड़ सकते हैं।
1: जी हाँ,
0: और यही श्रोता साथियों खूबसूरत रिश्ता हो सकता है अनुभव और ऊर्जा का।
1: जी हाँ कशिश, क्योंकि आज के समय में मोबाइल हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हो गया है। हम देखते हैं कि दोस्तों से बात करने के लिए हमें फोन चाहिए होता है, सोशल मीडिया पर लोगों की जिंदगी देखते हैं, वीडियो देखते हैं, गेम खेलते हैं और इंटरनेट से जानकारी लेते हैं, लेकिन कभी कभी मोबाइल हमारे घर में बैठे लोगों से हमारी दूरी बना देता है।
0: जी जी।
1: एक ही कमरे में हम देखते हैं कि हम चार लोग बैठे हुए हैं और चारों के हाथ में अलग अलग फोन है। श्रोताओं, दादाजी कुछ कहना चाहते हैं लेकिन युवा कहते हैं अभी एक मिनट रुक जाइए दादाजी, हम फिर आपसे बात कर लेंगे।
0: बिल्कुल,
1: वो एक मिनट कई बार बहुत लंबा हो जाता है दोस्तों, और धीरे धीरे बुजुर्ग को बोलना कम कर देते हैं। शायद उन्हें लगता है कि कोई सुनना ही नहीं चाहता है। इसलिए समस्या केवल मोबाइल की नहीं श्रोताओं, समस्या तब बनती है जब मोबाइल हमारे रिश्तों से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो जैसा कि कार्यक्रम युवाओं की आवाज के माध्यम से हमारे युवा साथियों से हमारी बातें चल रही है बुजुर्गों के अनुभव और दो पीढ़ियों के बीच संवाद की दूरी को लेकर, तो ये बातें हम आगे भी करते रहेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।
1: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। अब बने रहे कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।

0: इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। और हमारी बातें चल रही थी युवा और बुजुर्ग के अनुभव दो पीढ़ियों के बीच संवाद की दूरी क्यों को लेकर।
1: बिल्कुल,
0: जैसा कि इस गीत के माध्यम से हमने जाना था दोनों पीढ़ियों के बारे में और दोनों के अनुभव के बारे में, साथ ही हम जान पा रहे थे बुजुर्ग के पास अनुभव की वो किताब है जो कहीं नहीं हमें मिलती है।
1: जी हाँ।
0: इसी के साथ हम जानते हैं कशिश कि संवाद की कमी सबसे बड़ी दूरी होती है।
1: बिल्कुल। तो दोस्तों, पीढ़ियों के बीच मतभेद होना स्वाभाविक है। युवाओं की सोच अलग होगी जागृति जी, और बुजुर्गों की सोच भी अलग होगी।
0: जी हाँ।
1: जैसे कि बुजुर्ग कहेंगे कि हमारे समय में ऐसा नहीं होता था, वहीं हमारे युवा साथी कहेंगे लेकिन आज का समय तो अलग है। दोनों बातें श्रोता साथियों अपने अपने स्थान पर सही हो सकती है।
0: जी हाँ।
1: जरूरत है कि हम कौन सही है इससे पहले ये पूछे कि हम एक दूसरे को समझ क्यों नहीं रहे हैं। अगर कोई बुजुर्ग किसी बात पर अपनी राय देता है तो जरूरी नहीं है कि युवा को वह रोकना चाहता हो।
0: जी हाँ।
1: संभव है श्रोता साथियों वह अपने अनुभव से उसे किसी कठिनाई से बचाना चाहता है।
0: बिल्कुल।
1: और अगर युवा किसी नई बात को अपनाना चाहते हैं तो जरूरी ये भी नहीं है कि बुजुर्गों की बात को गलत समझा जाए। संभव है श्रोता साथियों कि वह बदलते समय के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं।
0: जी हाँ।
1: इसलिए जरूरी है कि हम अपनी बात कहने से पहले दूसरों की बात को जरूर सुने।
0: बिल्कुल कशिश, जैसा कि आपने बताया कि संवाद की कमी सबसे बड़ी दूरी होती है, यही अगर हम हमारे श्रोता साथियों को बताएं कि बुजुर्गों को सलाह से ज्यादा साथ चाहिए होता है।
1: जी हाँ।
0: जैसा कि हम देखते हैं कि जैसा कि हम कई बार सोचते हैं कि बुजुर्गों को केवल उनकी जरूरत की चीजें दे देना ही हमारी जिम्मेदारी है, दवा दे दी, खाना दे दिया, जरूरत का सामान दे दिया, लेकिन क्या इतना ही काफी है श्रोताओं? शायद नहीं। कई बुजुर्गों को सामान से ज्यादा जरूरत होती है समय की।
1: बिल्कुल।
0: उनके पास बैठने वाला कोई नहीं है, उनकी पुरानी कहानी सुनने वाला कोई नहीं है, उनकी बात पर मुस्कुराने वाला कोई नहीं है, उनसे पूछने वाला कोई नहीं है, आज आपका दिन कैसा रहा ये भी कोई नहीं पूछता। कभी कभी 10 मिनट की बातचीत भी किसी बुजुर्ग के लिए बहुत बड़ी खुशी बन सकती है।
1: बिल्कुल।
0: श्रोताओं कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से आपसे कि संवाद हमेशा एक तरफा नहीं होना चाहिए। अगर कोई इस तरह हमारे साथ करे तो हमें कितना बुरा लगता है।
1: बिल्कुल।
0: तो हमें हमारे घर में जो बुजुर्ग हैं उनके साथ भी इसी तरह से पहचाना है कि उन्हें कभी कोई सी चीज का बुरा ना लगे। युवा भी बुजुर्ग के जीवन में नई ऊर्जा ला सकते हैं, हमारे युवा साथी हमारे जो घर में बुजुर्ग उन्हें मोबाइल चलाना सिखा सकते हैं कशिश, ऑनलाइन वीडियो कॉल करना सिखा सकते हैं, डिजिटल भुगतान जैसी सुविधाओं का सुरक्षित इस्तेमाल समझा सकते हैं, उनकी पुरानी तस्वीर को डिजिटल रूप में सुरक्षित कर सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन श्रोताओं सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें ये महसूस करा सकते हैं आपकी वे परिवार के लिए आज भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उम्र बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि इंसान की जरूरत खत्म हो गई है। हर उम्र में इंसान को सम्मान, अपनापन और संवाद की जरूरत जरूर होती है।
1: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। अब यही प्रश्न ये उठता है कि युवा साथी अपने बुजुर्गों से बात कैसे कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें कई बार हम देखते हैं कि कई युवा साथियों को अपने दादा दादी या नाना नानी से बात करते समय झिझक महसूस होती है। तो श्रोता साथियों आप रोजाना सिर्फ 10 से 15 मिनट अपने परिवार के बुजुर्गों के साथ बैठें।
0: बिल्कुल।
1: आप उनसे पूछें कि आपका बचपन कैसा था, आपके समय में पढ़ाई कैसी होती थी, आपने अपने जीवन की सबसे बड़ी मुश्किलों को पार कैसे किया।
0: बिल्कुल।
1: आपकी सबसे प्यारी याद कौन सी है, आप हमें क्या सीख देना चाहेंगे। लेकिन मानिए युवा साथियों कि इन सवालों के जवाब केवल बातचीत नहीं होंगे, वे हमारे परिवार का इतिहास होंगे।
0: जी हाँ कशिश,
1: जैसे कि हमारे युवा साथी कर सकते हैं वे अपने दादाजी से ये पूछे कि दादाजी आपके समय में मोबाइल नहीं था तो आप लोग समय को कैसे बिताते थे। तो दादाजी बोलेंगे कि बेटा मोबाइल नहीं था लेकिन हमारे पास एक दूसरे के लिए समय जरूर था।
0: जी हाँ।
1: अब युवा बोलेगा कि आपको कभी बोरियत नहीं होती थी क्या, होती नहीं थी क्या। बुजुर्ग बोलेंगे होती थी लेकिन तब हम पड़ोस में चले जाते थे, दोस्तों से मिलते थे, परिवार के साथ बैठते थे। युवा कहेगा कि दादाजी आज हमारे पास सब कुछ है फिर भी समय क्यों नहीं है।
0: बिल्कुल।
1: तो बुजुर्ग बोलेंगे कि शायद इसलिए क्योंकि तुम समय बचाने वाली चीजों में इतना समय लगा देते हो कि तुम्हारे लिए समय ही नहीं बचता।
0: बिल्कुल।
1: अब युवा के मन में ये सवाल आया जागृति जी कि उसे क्या करना चाहिए, और यही सवाल उसने अपने दादाजी से भी पूछा। दादाजी ने कहा कि बस कभी कभी मोबाइल नीचे रख कर सामने बैठे इंसान की आंखों में देख लेना।
0: जी हाँ
1: जागृति जी, ये बहुत छोटी सी बात है लेकिन ये इतनी बड़ी सीख दी जाती है जिसे हम कभी कभार नजरअंदाज कर देते हैं।
0: जी हाँ कशिश, आपने बहुत सही बात बताई, क्योंकि आज जो ये बातें हम कर रहे हैं ये हमें याद दिला रहा है कि वृद्धावस्था जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है और बुजुर्गों की गरिमा, भागीदारी और सम्मान महत्वपूर्ण है। आज हमें सोचने की जरूरत है श्रोता साथियों कि हमारे घर और समाज में बुजुर्गों की आवाज कितनी सुनी जाती है।
1: जी हाँ।
0: क्या हम उनके निर्णयों में उनकी बात पूछते हैं, क्या हम उनके अनुभव को महत्व देते हैं? क्या हम उन्हें केवल जिम्मेदारी समझते हैं या परिवार की ताकत? और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या हम उनके साथ वास्तव में संवाद करते हैं?
1: जी हाँ
0: श्रोताओं, जैसा कि दो पीढ़ियों के बीच अंतर होना कोई समस्या नहीं है, समस्या तो तब होती है कशिश जब ये अंतर दीवार बन जाती है। अगर युवा अपनी ऊर्जा लेकर आगे बढ़ेंगे, बुजुर्ग अपना अनुभव साथ लेकर चलेंगे, तो दोनों मिलकर एक ऐसी राह बना सकते हैं जिस पर भविष्य भी मजबूत हो जाएगा और अतीत की सीख भी सुरक्षित रह जाएगी।
1: जी हाँ।
0: युवा कहते हैं कि हम भविष्य बनाना चाहते हैं और वहीं बुजुर्ग कहते हैं कि हमने जिंदगी देखी है, तो क्यों ना दोनों बातें एक साथ हो जाए। श्रोता साथियों, अनुभव भविष्य का रास्ता दिखाए और युवा उस रास्ते पर नई रफ्तार से आगे बढ़ जाए।
1: बिल्कुल जागृति जी, तो इस तरीके से दोस्तों आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से आप एक छोटा सा संकल्प लें कि जब घर का कोई बुजुर्ग हमसे बात करने आए तो हम सिर्फ सुनने का इंतजार न करें कि उनकी बात कब खत्म होगी, बल्कि ये सोचे कि इस इंसान ने जिंदगी से क्या सीखा है जो मैं अभी नहीं जानता।
0: बिल्कुल,
1: हो सकता है कि उनकी कोई कहानी आपकी सोच को बदल दे, उनकी कोई गलती हमें गलती करने से बचा दे और उनकी कोई सीख हमारे मुश्किल समय में काम आ जाए। जागृति जी
0: बिल्कुल,
1: और शायद सबसे खूबसूरत बात यही होगी कि जब हम उनकी बातें सुनेंगे साथियों, तो उन्हें भी ये महसूस होगा कि हमारी उम्र जरूर बड़ी है लेकिन हमारी जरूरत आज भी नहीं घटी।
0: जी हाँ, तो साथियों आज से थोड़ा समय मोबाइल से निकालिए और अपने घर के बुजुर्गों को दीजिए, क्योंकि पीढ़ियों का अंतर सोच से नहीं संवाद से कम होता है। इसी खूबसूरत संदेश के साथ आज के हमारे इस कार्यक्रम से हम विदा लेना चाहेंगे, पर जाने से पहले सुन लेते हैं कार्यक्रम का एक और गीत।
1: बिल्कुल,
2: टूटा टूटा एक

0: फिर आएगा।
1: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं और आपसे कहना चाहेंगे कि याद रखिए, बुजुर्ग हमारे बीते कल की कहानी नहीं, हमारे आज का अनुभव और आने वाले कल की सीख है।
2: जी हाँ,
1: इन्हीं उम्मीदों के साथ आपसे विदा लेते हैं। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
2: तो श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
1: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
2: तो दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को
1: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को।
2: नमस्कार।

0: कार्यक्रम सच्चा बचपन में आप सभी साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करिएगा हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: हाजिर हो गए हैं साथियों कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। कशिश, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बातचीत का विषय है बच्चों और बुजुर्गों का रिश्ता दो पीढ़ियों से सिकता बचपन को लेकर।
0: जी हाँ
1: श्रोता साथियों, जरा अपने बचपन को आप याद कीजिए। क्या आपको दादी नानी की सुनाई कहानियाँ याद है? दादाजी के साथ खेतों में घूमना, नानी के हाथों से बनी कोई खास चीज खाना, या रात को सोने से पहले किसी राजा रानी की कहानी सुनना, ये छोटी छोटी यादें हमारे जीवन का एक ऐसा हिस्सा बन जाती है कशिश, जिन्हें हम उम्र भर नहीं भूलते।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन आज समय बदल रहा है, परिवारों की दिनचर्या बदल रही है, बच्चों की पढ़ाई, मोबाइल, टीवी और माता पिता की व्यस्तता के बीच कई बार बच्चों और घर के बुजुर्गों के बीच बातचीत के अवसर कम होते जा रहे हैं। आज के कार्यक्रम में हम इसी रिश्ते पर बात करेंगे और जानेंगे कि बच्चों के विकास में दादा दादी नाना नानी की क्या भूमिका होती है और बुजुर्गों के अनुभव से बच्चे क्या सीख सकते हैं। हम किस तरह घर के वातावरण को ऐसा बनाएं जहां दोनों पीढ़ियां एक दूसरे के करीब आ सके।
0: बिल्कुल।
1: तो आइए आज की इस बातचीत की शुरुआत से पहले सुनते हैं कार्यक्रम के पहले इस गीत को।
0: जी हाँ साथियों, तो आप बने रहिएगा कार्यक्रम सच्चा बचपन में आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर
1: और आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर के साथ में।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय बता चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं बच्चों और बुजुर्गों के रिश्ते को लेकर।
1: बिल्कुल।
0: और इन दोनों पीढ़ियों से बचपन कैसे सीख सकता है, इस विषय को लेकर आज हम ढेर सारी बातें करने वाले हैं अंजलि जी। अगर बात करें बुजुर्गों का साथ बचपन की अनमोल पूंजी किस प्रकार से है, तो साथियों बच्चे का विकास केवल स्कूल जाने और किताबें पढ़ने से नहीं होता।
1: बिल्कुल।
0: उसके आसपास का वातावरण, परिवार के लोगों का व्यवहार और उसे मिलने वाला प्यार भी उसके व्यक्तित्व को आकार देता है। अंजलि जी, जब बच्चे अपने दादा दादी या नाना नानी के साथ समय बिताते हैं तो उन्हें एक ऐसा साथी मिलता है जिसके पास समय भी होता है और जीवन के अनुभव भी। बुजुर्ग बच्चों की छोटी छोटी बातों को सुनते हैं, उनके जिज्ञासाओं का जवाब देते हैं और कई बार ऐसी बातें समझा देते हैं जिन्हें बच्चे केवल किताबों से नहीं सीख सकते।
1: बिल्कुल।
0: जैसे कि जब बच्चा किसी बात पर गुस्सा करता है या खेल में हारने के बाद रोने लगता है तो दादी उसे अपने अनुभव से समझा सकती है कि हर बार जीतना जरूरी नहीं, कोशिश करते रहना जरूरी होता है। इसी तरह श्रोता साथियों, बच्चे धीरे धीरे धैर्य रखना, अपनी भावनाओं को समझना और दूसरों की बातों को सुनना भी सीख जाते हैं। बुजुर्गों का प्यार बच्चों को यह एहसास भी दिलाता है कि परिवार में कोई ऐसा है जिनके पास वे बिना किसी डर के अपनी बात कह सकते हैं।
1: बिल्कुल कशिश, इसी के साथ कहानी सुनना बच्चों के लिए केवल मनोरंजन नहीं है बल्कि सीखने का एक सुंदर माध्यम है। दादी नानी की कहानियों में राजा रानी, जंगल, पशु पक्षी और कई तरीके के पात्र होते हैं।
0: बिल्कुल।
1: इन कहानियों के माध्यम से बच्चे सही गलत, ईमानदारी, साहस, सहयोग, दया जैसी बातों को आसानी से समझते हैं। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि जब किसी कहानी में कोई पात्र दूसरे की मदद करता है तो बच्चा समझता है कि जरूरतमंद की सहायता करना अच्छी बात है।
0: बिल्कुल।
1: जब किसी पात्र को अपनी गलती का एहसास होता है तो बच्चा सीखता है कि गलती स्वीकार करना भी जिम्मेदारी है।
0: जी हाँ।
1: माता पिता और बुजुर्ग बच्चों को कहानी सुनाते समय उनसे छोटे छोटे सवाल पूछ सकते हैं, जैसे अगर कहानी में किसी बच्चे ने अपने दोस्त की मदद की तो पूछे कि अगर तुम उसकी जगह होते तो क्या करते। इससे बच्चों की सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है और वे अपनी बात कहना सीखते हैं।
0: बिल्कुल।
1: आज मोबाइल पर कहानी सुनने के अनेक साधन हैं, लेकिन परिवार के लिए सदस्य के पास बैठकर कहानी सुनने का अनुभव अलग होता है। उनमें आवाज के साथ भावनाएं होती हैं, प्यार होता है और अपनापन भी जुड़ा होता है।
0: बिल्कुल अंजलि जी। साथी अगर बात करें तो बुजुर्गों ने अपने जीवन में कई तरह की परिस्थितियां देखी हैं। साथियों, उन्होंने कठिन समय का सामना किया है, परिवार की जिम्मेदारियों को निभाया है और सीमित संसाधनों में भी जीवन को आगे बढ़ाया है।
1: बिल्कुल।
0: जब वे अपने अनुभव बच्चों को बताते हैं, उनके साथ बांटते हैं तो बच्चों को समझ में आता है कि जीवन में हर चीज तुरंत नहीं मिलने वाली और मेहनत का भी एक अपना अलग महत्व होता है।
1: बिल्कुल।
0: जैसे कि उदाहरण के लिए गांव में रहने वाले बुजुर्ग बच्चों को बता सकते हैं कि पहले खेती कैसे की जाती थी, पानी को किस तरह बचाया जाता था और लोग एक दूसरे की मदद से बड़े काम को कैसे पूरा करते थे।
1: बिल्कुल।
0: श्रोता साथियों, ऐसी बातें बच्चों को अपने आसपास के जीवन और समाज से भी जोड़ती है और साथ ही बच्चों को यह भी समझ आ जाता है कि परिवार में जो सुविधाएं आज उपलब्ध हैं उनके पीछे पिछली पीढ़ियों की मेहनत और संघर्ष शामिल है।
1: जी जी।
0: लेकिन अंजलि जी, बच्चों को समझाते समय ये भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि पुराने समय की हर बात आज के समय में उसी तरह लागू नहीं होती। नई पीढ़ी के सवालों और विचारों को भी उतना ही सम्मान मिलना जरूरी है।
1: बिल्कुल कशिश, तो जैसा कि आज हम कार्यक्रम में बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं बच्चों और बुजुर्गों का रिश्ता दोनों पीढ़ियों से सीखता बचपन को लेकर, तो बातें निरंतर आगे और भी कार्यक्रम के माध्यम से यूं ही बनी रहेंगी। लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि गीत से पहले हमने जाना कि जीवन के अनुभव से किस तरीके से बच्चों को सीख मिलती है, वहीं बात करें बच्चों का भावनात्मक विकास और बुजुर्गों का अपनापन, तो श्रोता साथियों, बचपन में बच्चों को केवल भोजन, कपड़े और शिक्षा ही नहीं बल्कि प्यार, सुरक्षा और भावनात्मक सहारे की भी जरूरत होती है।
1: बिल्कुल
0: कशिश, कई बार बच्चे स्कूल में किसी बात से दुखी होते हैं, दोस्तों से झगड़ा हो जाता है या किसी काम में असफल होने पर परेशान हो जाते हैं। ऐसे समय में परिवार का कोई ऐसा सदस्य जो उसकी बात धीरे से सुन सके, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। बुजुर्ग बच्चों को अपनी बात कहने का अवसर दे सकते हैं, उन्हें तुरंत डांटने या उनकी परेशानी को छोटा समझने के बजाय ध्यान से सुन सकते हैं। जब बच्चा महसूस करता है श्रोता साथियों की उसकी बात सुनी जा रही है, तो वो अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से व्यक्त करना सीखता है।
1: बिल्कुल
0: माता पिता को भी चाहिए कि बच्चों के सामने बुजुर्गों के प्रति सम्मान सहयोग का व्यवहार रखें। परिवार में होने वाली असहमति को बच्चों के सामने अपनापन या कटुता का रूप न दें, क्योंकि बच्चे केवल हमारी कही हुई बातें नहीं बल्कि हमारा व्यवहार भी सीखते हैं।
1: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। इसी के साथ अगर बात करें तो श्रोता साथियों, वागड़ क्षेत्र की एक अपनी समृद्ध लोक संस्कृति है। यहाँ के लोकगीत, पारंपरिक भोजन, त्योहार, मेलों की परंपराएं और आपसी सहयोग की भावना हमारी पहचान है अंजलि जी।
0: बिल्कुल,
1: बुजुर्ग इन परंपराओं के जीवंत अनुभव है। उनके पास स्थानीय गीतों, कहावतों, रीति रिवाजों और पुराने खेलों से जुड़ी ढेर सारी यादें होती हैं।
0: जी जी,
1: जब दादा दादी बच्चों को स्थानीय लोकगीत सिखाते हैं या नाना नानी उन्हें अपने गांव के त्योहारों के बारे में बताते हैं, तो बच्चे अपनी जड़ों से जुड़ते हैं।
0: बिल्कुल,
1: साथ ही बच्चे अपने बुजुर्गों से पारंपरिक खेल भी सीख सकते हैं, स्थानीय पेड़ पौधों की पहचान कर सकते हैं, घर में बनने वाले पारंपरिक व्यंजनों के बारे में जान सकते हैं। इस तरह अंजलि जी, हमारी संस्कृति केवल किताब में लिखी जानकारी बनकर नहीं रह जाती है बल्कि बच्चों के दैनिक जीवन का भी हिस्सा बन जाती है।
0: बिल्कुल,
1: ये जिम्मेदारी केवल बुजुर्गों की नहीं है साथियों बल्कि पूरे परिवार की है कि बच्चों को अपनी भाषा और परंपराओं को समझने और अपनाने का अवसर दिया जाए।
0: बिल्कुल कशिश, अब जरा इस रिश्ते का दूसरा पहलू भी हमें समझना होगा। अक्सर हम कहते हैं कि बुजुर्ग बच्चों को संस्कार देते हैं और बच्चे उनसे सीखते हैं।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बच्चे भी अपने बुजुर्गों को बहुत कुछ सिखा सकते हैं? आज के बच्चे नई तकनीक, मोबाइल, डिजिटल दुनिया से परिचित हैं। वे अपने दादा दादी को वीडियो कॉल करना, मोबाइल में फोटो देखना या फिर परिवार के दूसरे सदस्यों से ऑनलाइन बात करना सिखा सकते हैं।
1: जी हाँ,
0: बच्चों के सवाल बुजुर्गों को भी नई जानकारी प्राप्त करने का अवसर देते हैं। जब कशिश दादाजी अपने पोते के साथ कोई नया खेल खेलते हैं या नानी अपनी नातिन से मोबाइल पर कुछ सीखती है, तो दोनों के बीच बातचीत और अपनापन बढ़ता है। इसलिए बच्चों और बुजुर्गों के रिश्तों को केवल बड़े से छोटे को सीख देने तक सीमित नहीं रखना चाहिए। ये एक ऐसा रिश्ता है जिसमें दोनों पीढ़ियां एक दूसरे की दुनिया को समझती हैं।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ साथ ही अगर आपको बताएं तो आज के समय में माता पिता की जिम्मेदारी भी काफी बढ़ चुकी है। जैसे कि नौकरी, खेती, घर के काम और बच्चों की पढ़ाई के बीच हर व्यक्ति व्यस्त रहता है।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन परिवार में बच्चों और बुजुर्गों के बीच रिश्ता मजबूत बनाए रखने के लिए अधिक संसाधनों की जरूरत नहीं होती। जरूरत होती है बस थोड़े समय और सकारात्मक वातावरण की।
0: बिल्कुल,
1: जैसे कि माता पिता कुछ छोटी छोटी पहल कर सकते हैं अंजलि जी। रोज कुछ समय परिवार की सभी सदस्य साथ बैठकर बातचीत कर सकते हैं। बच्चों को दादा दादी से कहानियां और पुराने अनुभव सुनने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। बुजुर्गों के स्वास्थ्य और आराम का ध्यान रखते हुए बच्चों को उनके साथ समय आप बिताने दें।
0: बिल्कुल,
1: बच्चों के सवालों को अनदेखा न करें और बुजुर्गों की बातों का भी सम्मान करें। साथ ही परिवार में ऐसा माहौल बनाएं जहां उम्र के अंतर के बावजूद भी हर सदस्य की बात सुनी जाती हो।
0: बिल्कुल,
1: साथ ही अंजलि जी, बच्चों की सुरक्षा और उनकी उम्र के अनुसार उचित देखभाल का ध्यान रखना भी काफी जरूरी है। बच्चों की परवरिश में माता पिता और बुजुर्गों के बीच संवाद के साथ साथ आपसी समझ बनी रहनी चाहिए।
0: जी हाँ कशिश, आज की चर्चा से हम समझ सकते हैं कि बच्चों और बुजुर्गों का रिश्ता परिवार की एक ऐसी धरोहर है जिसे किसी वस्तु या धन से नहीं खरीदा जा सकता।
1: जी,
0: बच्चों के लिए बुजुर्गों का साथ जीवन के उन अनुभवों से जुड़ने का अवसर है श्रोता साथियों, जो उन्हें किताबों में पूरी तरह नहीं मिल सकते। वहीं बुजुर्गों के लिए बच्चों की हंसी, उनके सवाल और उनकी छोटी छोटी उपलब्धियां जीवन में नई उमंग भर सकती है।
1: जी हाँ,
0: जब कोई बच्चा अपनी दादी जी का हाथ पकड़कर खेत की ओर जाता है, जब नानी अपनी नाती को कोई पुराना गीत सुनाती है या दादी के पास बैठा बच्चा अपने दिन भर की बातें सुनता है, तो ये पल उसके बचपन की यादों का हिस्सा बन जाता है। समय के साथ कशिश, बच्चा बड़ा हो जाएगा, उसकी पढ़ाई, काम और जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, लेकिन बचपन में मिले प्यार, अपनापन और परिवार के साथ बिताया गया समय कि जो यादें हैं उसके जीवन में हमेशा विशेष स्थान रखेगी। इसलिए जरूरी है श्रोता साथियों कि हम बच्चों को केवल भविष्य की तैयारी में ही व्यस्त न रखें, बल्कि उन्हें आज अपने परिवार के साथ जुड़ने का अवसर भी दें।
1: बिल्कुल,
0: बुजुर्गों की बात सुनना, उनके साथ बैठना, उनकी मदद करना, उनके अनुभवों को समझना बच्चों के जीवन में अच्छे रिश्ते की नींव रख सकता है।
1: जी हाँ अंजलि जी, साथ ही बुजुर्गों से भी ये आग्रह हो सकता है कि बच्चों की बदलती दुनिया को वो समझें, उनकी जिज्ञासाओं का सम्मान करें और उन्हें अपनी बात कहने का भी अवसर दें।
0: बिल्कुल,
1: साथियों पीढ़ियों के बीच विचारों का अंतर होना स्वाभाविक है, लेकिन बातचीत और सम्मान से इस अंतर को समझने में मदद मिल सकती है।
0: बिल्कुल,
1: ऐसे में हम सब मिलकर ऐसे परिवार और समाज का निर्माण करें जहां बच्चे अपने बचपन को खुलकर जी सके और बुजुर्ग अपने अनुभव और स्नेह से नई पीढ़ी के जीवन को समृद्ध बना सके।
0: बिल्कुल कशिश, तो जैसा कि आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रही हैं और अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना हम हमारे श्रोता साथियों को कार्यक्रम का एक और प्यारा सा गीत सुनवा दें।
1: बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही अब हम हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा बचपन से विदा लेना चाहेंगे। आशा करेंगे कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातचीत रही है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी। तो आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें जरूर पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को
0: और आपके अपने साथी अंजलि पारशर को।
1: नमस्कार।

0: भाई न बोनो, घर तक निकलते वक्त कोई आपनो इंतजार करी रू है। माँ ने दुआ, पिता ने उम्मीद, सोरा ने मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे चलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरू इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: पप्पा पप्पा, मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
0: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा, तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा। होवे न कोई गरीबी रोके, न कोई हालात रोके, शिक्षा तक इस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
1: हिंडो स्कूल जा, अपड़े अपना भी अपना पूरा करो।
0: याद रखिए, कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
1: होवे जयवरे सब सोरा भणेगा, तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा।
0: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
2: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: थारी में पासो लावो जूनू हवाद, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर, ने पोषण भी पक्कू। बारते नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो।
4: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा।
5: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: हमारा जो क्षेत्र है इसमें मक्की के नाम से भी लोग जाना जाता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा अपनी मक्की होती है। तो ये केवल भोजन और पशु का आहार का स्रोत नहीं है, बल्कि ये जो है हमारे आदिवासी और जो हमारे ग्रामीण परिवार है उनके खाद्य सुरक्षा है। और जो पारंपरिक कृषि जो है वो हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई है।
1: बिल्कुल।
0: मक्का की बात करते हैं तो अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए उतना ही महत्वपूर्ण कार्य है जितना कि हम जो जो सही तरीके से उसको सुखाना, साफ करना, उसको सुरक्षित रखना, ताकि वो लंबे समय तक कीट, जैसे हम बात करते नमी की है, उसको सुखाना है, साफ रखना है, सुरक्षित रखना है। तो ये है जो आपको, इससे क्या होता है कि कीट है, नमी है, फफूंद है या चूहे है, उनसे आपको सुरक्षित रहेगी। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं, जैसे हमारे पूर्वज थे वो कभी रासायनिकों का उपयोग नहीं करते थे, कोई बाजार की ऐसी कोई दवा या ऐसी कुछ नहीं उपयोग करते थे, क्योंकि वो विधियां थी वो लंबे समय तक हमारे मक्की को सुरक्षित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण थी। जैसे कि आप देखें तो आप लोग देखते भी हैं जैसे हमारे समुदाय में कि अच्छी तरह से सुखाना, हम मक्की के जो भुट्टे को छीलने के बाद में बहुत जगह में फैला के उसको अच्छे से सुखाते हैं, उसको घुमाते हैं। दूसरा कि उसकी जो स्वच्छता है उसका भी हम ध्यान रखते हैं कि आसपास को गंदगी ना हो, पानी नहीं जाए, वो सारी चीजें हम देखते हैं। उसी तरह धूप जो है वो अच्छे से उनके ऊपर आए, उसका ध्यान रखना है। हवा है वो भी आर पार होनी चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: ऐसा नहीं है कि एक जगह आपने बहुत ज्यादा मात्रा में ढेर लगा दिया, उसको बहुत एक एक दो दो की मात्रा में उसको फैलाएं ताकि वो जल्दी से वो सूख जाए।
1: बिल्कुल।
0: इसके साथ में जैसे जो भंडारण की हम बात करते हैं तो जो पारंपरिक ज्ञान है तो वही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है।
1: बिल्कुल।
0: तो हम जैसे अभी बात कर रहे हैं कि जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं कटाई का समय, जब मक्के की बात आती है तो सबसे महत्वपूर्ण जो है उसका ये भी होता है कि वो की कटाई, अगर कटाई आपने सही समय से की, जैसे आपकी बालियां है वो पक गई, आपने उसके रेशे को देखा कि वो भूरा हो गया, आपने देखा कि दाना कठोर हो गया, उसका कलर है बराबर हो गया, तो उस तरह अगर आप काटते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक तो फफूंद नहीं लगती है जब आप भंडारण करेंगे तो, और जो आपकी फसल है वो खराब होने के जो चांस है वो बहुत कम रहते हैं, नहीं के बराबर। तो ये जो संकेत है उन संकेतों को ध्यान में रखते हुए एक तो उसकी कटाई करनी चाहिए, दूसरा जब आप बात करते हैं कि सुरक्षित रखने की, तो एक चीज ये भी है कि जो स्वच्छ भुट्टे हैं मक्की के उनका विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि जब हम कटाई करते हैं तो कुछ भुट्टे ऐसे निकलेंगे जिसमें कुछ बीमारियां होगी, जब आप देखेंगे उसको छील के, तो अगर आपको लगता है कि ऐसे कुछ भुट्टे हैं जिनमें कुछ लगा हुआ है, जैसे काला पड़ गया या उसमें कुछ कीट है या वो थोड़ा सड़ा हुआ है, तो इस तरह के जो है उनकी छटाई कर लेनी चाहिए, उनको अलग करें, और छटाई करने के बाद में जो बढ़िया जो अच्छे भुट्टे हैं उनको अलग से सुखाए और उनको आप अलग रख सकते हैं, ताकि वो व्यर्थ नहीं है, वो हमारी गाय भैंस के लिए काम आ सकता है। लेकिन अगर आप उसको अलग ना करेंगे तो वो हो सकता है कि बाकी भुट्टों को भी नुकसान पहुंचा सकता है।
1: जी जी।
0: तो ये एक हमें अच्छे से ध्यान रखना है ताकि अलग अलग करके उनका चयन करके हम उसको सुखाएं। इसके बाद हम बात करते हैं जब सूख जाता है तो सबसे महत्वपूर्ण ये भी कि सूखना भी अच्छी तरह चाहिए, ऐसा नहीं कि हमने जल्दीबाजी कर दी और हमने भर दिया या कहां पे रख दिया।
1: बिल्कुल।
0: ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, तो हमें उनको पलटते रहना चाहिए बार बार, और जब अच्छे से सूख जाए तो उसमें क्या है कि उसका दाना आप जो है उसको निकाल कर उसको चेक कर सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो पता लग जाएगा कि सूख गया, तो उस तरह से हमें इसको अच्छे सुखाने के लिए ध्यान रखना चाहिए।
1: जी बिल्कुल सर, जैसा कि आप बता रहे हैं कि मक्का की कटाई के बाद दानों को सुरक्षित रखने के लिए हमें पारंपरिक समझ की जरूरत है, तो जैसा कि आपने बताया कि कटाई के समय की पहचान करनी है, स्वस्थ भुट्टों का चयन करें, साथ ही भुट्टो को अच्छे तरीके से सुखाएं। यही पारंपरिक रूप से भुट्टे को सुरक्षित रखने के क्या तरीके हैं जो किसान भाई अपना सकते हैं?
0: जी, तो देखेंगे आप कि हमारे बागड़ में हैं जो बहुत सारे जो किसान हैं अभी भी अपना रहे हैं, तो हमें जो पारंपरिक तरीके हैं वही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो जब हम स्थानीय बात करते हैं तो आप देखेंगे कि एक तो क्या है कि बांस की टोकरियां हम बनाते हैं, उनमें हम अच्छे सूखने के बाद में उन टोकरियों को भर के रख देते हैं।
1: बिल्कुल।
0: हम बांस के जो है कबले बनाते हैं, तो कबले हैं उनको आप अच्छे से बना के उसका मिट्टी का गोबर का लेप करने के बाद में बढ़िया सूखने के बाद में आप उसमें भर सकते हैं।
1: जी।
0: इसी तरह जो है हमारे जो आपने देखा होगा कि मिट्टी के बर्तन होते हैं, जैसे कोटियां हो गई मिट्टी की, ड्रम मिट्टी का जैसा बना हुआ हो गया, तो उनमें आप अच्छे से सूखने के बाद में सुरक्षित रख सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: उसी तरह जो है एक ये भी है कि हमारे समुदाय में मचान, जैसे आपने

0: लकड़ी से कोई मचान बनाया, उस मचान पे आपने उनको पर हवादार उसमें जगह में रख दिया।
1: बिल्कुल।
0: तो इस तरह से आप भंडारण कर सकते हैं भुट्टों का। और जब आप अगर मक्की का भी अगर निकालने के बाद भंडारण करें तो आपके यही तरीके हैं कि आप उसको मिट्टी के बर्तनों में रखें, उसमें आप जो है कबले में रखें, तो वो बहुत सुरक्षित रहता है क्योंकि वो हवा है उनके आर पार जाती है, वो महत्वपूर्ण होता है।
1: बिल्कुल।
0: इसके साथ ही जब भंडारण की हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, भंडारण में एक ये भी है कि जो जैसे चूहे ही हैं तो आपके एक तो उनसे बचत होगी, तो उनका भी एक ध्यान रखना चाहिए कि एक अच्छे स्थान पे उनको रखें।
1: बिल्कुल।
0: इसी तरह जब भंडारण करे तो देखिए हमारी पारंपरिक विधियां है, जैसे नीम की पत्तियां आपने रख दी तो नीम की पत्तियां है वो आपका बहुत सारा काम करती है कि उसमें कीट नहीं लगेंगे, तो उसमें कीड़े नहीं बैठेंगे, तो इस तरह से आप है उसको जो है उसमें रख सकते हैं जो हमारी परंपराओं से हम करते आए हैं, तो इस तरह से उसमें रख सकते हैं। इसके बाद में जैसे हमने बात की जैसे गढ़े हैं मिट्टी के, तो उनमें रख सकते हैं, जैसे कोठियां बना ली आपने मिट्टी की, जो हमारे बुजुर्ग जो है वो पहले अपने गांव में देखने को मिलती थी, उसमें आपने बांस की टोकरियां भर के आपने आपके घर में लटका दी। और एक है कि आपने जो बुट्ठे हैं उनको आप जैसे छीलने के बाद जो उसके बुट्ठे के वो होते पत्ते चारों तरफ की कवर होता है, उस कवर से बांध के भी आप लटका सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: इस तरह से जो है आप कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो मिट्टी के और गोबर का लेप के साथ हम रखते हैं तो लंबे समय तक सुरक्षित रहती है।
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। जैसा कि आपने बताया कि किस तरीके से हम नीम की पत्तियों और मिट्टी के बर्तन में हमारी जो मक्का के दाने हैं उन्हें सुरक्षित रख सकते हैं, यही अब मैं जानना चाहूंगी कि बीजों को अलग रखने के क्या तरीके हैं और उनका हमारे किसान भाई बहनों को क्या ध्यान रखना है।
0: देखिए जब हम बात करते हैं बीज की, तो बीज हमेशा हमारा परिवार का हिस्से की तरह हमारे संस्कृति का हिस्सा रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए कि जब हम मक्की के भुट्टे सुखा रहे हैं तो उसमें जो मजबूत या बड़े आकार के होते हैं, अच्छे पके हुए हैं या अच्छे बड़ा बड़ा जो दाने वाले हैं, उनको आप छांट ले बढ़िया से कि मुझे अगर 20 से 25 किलो बीज चाहिए या 30 किलो चाहिए, तो उतनी मात्रा में आप उनको अच्छे अच्छे भुट्टे हैं जो बेहतर भुट्टे हैं वो उसमें से आप छांट कर और फिर उसको निकाल कर आप रख सकते हैं। जैसे हम राख के साथ मिला के जो पत्ते हैं नीम के उनके साथ मिला के आप रख सकते हैं। तो ध्यान रखे कि बीज के लिए जो है अच्छे भुट्टों का चयन करें आप, जो अच्छे से पके हुए भी हो, उनका दाना भी है मजबूत हो।
1: बिल्कुल।
0: तो इस तरह आप रख सकते हैं। इसमें बीज रखे तो उससे पहले जैसे आपने कहा कि मिट्टी के बर्तन में रख दिया, लेकिन बीज को भरने से पहले एक ध्यान रखे कि उसकी जो नमी है वो पूरी तरह सूखी हुई होनी चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: नहीं तो फिर वो है आपको दिक्कत कर सकती है।
1: जी हाँ सर। तो जैसा कि आपने बताया कि हमें जो बीज है उनका चयन करके किस तरीके से सुरक्षित तरीके से उनका भंडारण करना है, यही पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक जो सावधानी है उसका मेल हमें कैसे बनाकर रखने की जरूरत है।
0: देखिए आधुनिक की और पारंपरिक की हम बात करते हैं तो दोनों तरीके सुरक्षित रखने का है, लेकिन जब हम परंपराओं की बात करते हैं तो वो हमारे लिए सस्ता और सुंदर और लंबे समय तक रखने के लिए एक अच्छा ज्ञान है हमारे पास। तो जैसे धूप में सुखाना, नीम की पत्तियों का उपयोग करना, स्थानीय जो बर्तन है जैसे अपने पहले बात की कोटियां हैं कबले हैं उनका उपयोग करना, उसकी अनाज की सफाई जो अच्छे से करना, नियमित उसकी निगरानी रखना, तो ये चीजें हैं जो आपका जो है पारंपरिक और आधुनिक दोनों तरीके से आप देख सकते हैं इसको। लेकिन हमारा तरीका है पारंपरिक वो बहुत अच्छा है, आप उस तरह से आप उसकी निगरानी जरूर रखें।
1: बिल्कुल।
0: हो सकता है कि बाय चांस कुछ कीट लग गया हो तो उसका भी हम ध्यान रखें, ऐसा नहीं कि हमने भर के छोड़ दिया।
1: बिल्कुल।
0: वो भी एक ध्यान रखने की जरूरत है।
1: जी,
0: तो
1: जी।
0: इस तरह से आप देख सकते हैं।
1: बिल्कुल सर। तो जैसा कि आपने बताया कि मक्का की कटाई के बाद दानों को सुरक्षित तरीके से हमें भंडारण कैसे करना है और किन किन विशेष बातों का ध्यान रखने की जरूरत है, तो सर मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
0: जी धन्यवाद।
1: भाई बनो सिम के आवड़े आपने वैस में विषय विशेषज्ञ जुड़े तक कहा था ने इन्होंने माध्यम तक की आपने जानू कि हर ते कटाई नु जे सही टाइम है इन्हें आपने ओरखवू होगा, स्वस्थ भुट्टो की पहचान करवी होगा ने इन्हें साथे आपने जे डूडियो ही इन्होंने आपने हुकाड़वा होगा इन तकी नमी काढ़ी ने हते आपड़ा ने परंपरागत जे स्थानीय तरीका है आपड़ा जे पात्र है इनमें भंडारण करवो होगा ने कई कई बातों नु ध्यान रखू है ए भी एने आपड़ा ने बताड़ियो। तो आशा करो हो कि आ हेती बाते आपने गमी होगा किम के भी टाइम थई गयो है आपड़े अणस कार्यक्रम तकी सूटा पड़वानो, तो सूटा तो पड़ पण साथे पहले हमरी लायक और गीत ने मोरे पड़ा सूटा।

0: राज मुंह है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिंदगी पर बात की शुरुआत पानी तक ही करो, थोड़ू सी व्यायाम ने तात्काली में जीवन जीवा, फल सब्जी रोजे खा बीमारी में दूर भगावा, जंक फूड तक ही दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। ओवे सेहत है असली धन आपरो, आज जीवन नो सहारो है, आज तक इस आराज ने अपना वंगा ने जीवन ने स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो, क्योंकि आज से सेहत नो असली राज। वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है, जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जांच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है, ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ साथियों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
1: लेकर हाजिर है श्रोता साथियों कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें रहने वाली है रिटायरमेंट के लिए कितनी आय हम निवेश कर सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: जैसा कि अंजलि, जीवन की शुरुआत हम सपनों के साथ करते हैं, पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी या व्यवसाय, फिर परिवार की जिम्मेदारियां, बच्चों की शिक्षा, घर बनाना और भविष्य को सुरक्षित करने की कोशिश, इन सबके बीच श्रोता साथियों हम अक्सर एक जरूरी सवाल भूल जाते हैं कि रिटायरमेंट के बाद हमारा जीवन आर्थिक रूप से कैसे चलेगा। जब तक नियमित नौकरी या व्यवसाय से आय आती रहती है तब तक रोजमर्रा के खर्च पूरे करना आसान लगता है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद नियमित आय कम या बंद हो जाती है, जबकि घर का खर्च, स्वास्थ्य संबंधी जरूरतें और महंगाई बनी रहती है। इसीलिए रिटायरमेंट की तैयारी आखिरी समय में नहीं बल्कि कामकाजी जीवन के दौरान ही शुरू करना बहुत समझदारी की बात है।
0: बिल्कुल,
1: तो हमारे श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि रिटायरमेंट की योजना पहले से बनाने से भविष्य की जरूरतों के लिए धन तैयार करने में मदद मिलती है और निवेश का समय बढ़ने से चक्रवर्ती लाभ भी मिल सकता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो आज कार्यक्रम में इस विषय पर हमारी श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत का पहला गीत क्यों ना हम हमारे श्रोता साथियों को सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि गीत से पहले विषय से भी अवगत करवाया था और हमारी बातें भी रही थी कि आज हम बात करने वाले हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज के माध्यम से रिटायरमेंट के लिए कितनी आय हम निवेश कर सकते हैं।
1: बिल्कुल जागृति जी, तो यही अब बात आती है सबसे पहले कि आय का कितना हिस्सा हमें निवेश करना है। श्रोता साथियों, रिटायरमेंट के बाद के लिए आय का कितना प्रतिशत निवेश करना चाहिए, इसका एक ही नियम सभी लोगों पर लागू नहीं होता। यह व्यक्ति की उम्र, आय, खर्च, कर्ज और परिवार की जिम्मेदारियों पर निर्भर करता है। फिर भी शुरुआत के लिए व्यक्ति अपनी मासिक आय का लगभग 15-20% लंबे समय के लक्ष्य को और रिटायरमेंट के लिए अलग रखने का लक्ष्य बना सकता है।
0: बिल्कुल,
1: जिन लोगों की आय अच्छी है और जिम्मेदारियां कम है, वे अपनी क्षमता के अनुसार उससे अधिक भी बचा सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति की मासिक आय 40,000 रुपए है और वह 20% बचाने का लक्ष्य रखता है, तो वह लगभग 8,000 रुपए हर महीने भविष्य के लिए अलग रख सकता है।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन केवल राशि तय करना पर्याप्त नहीं है, पहले यह देखना भी जरूरी है जागृति जी कि घर का आवश्यक जो खर्च है वो आराम से चल रहा है या नहीं, कोई महंगा कर्ज तो नहीं है और अचानक आने वाले खर्चों के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध है या नहीं।
2: बिल्कुल अंजलि, इसी के साथ बचत और निवेश एक जैसे नहीं है। बचत का उद्देश्य अक्सर निकट भविष्य की जरूरतों के लिए पैसा सुरक्षित रखना होता है श्रोताओं, जबकि निवेश का उद्देश्य लंबे समय में धन को बढ़ाना होता है। हम देखते हैं अंजलि कि निवेश व्यक्ति को वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने और महंगाई के प्रभाव से निपटने में मदद कर सकता है। रिटायरमेंट के लिए केवल पैसा बचाकर रखना पर्याप्त नहीं हो सकता श्रोताओं, क्योंकि समय के साथ वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें भी बढ़ती जाती है। आज जो खर्च हम देखते हैं कि 20,000 रुपए में पूरा हो रहा है, जरूरी नहीं कि कई वर्षों बाद भी उतने ही पैसों में पूरा हो जाए।
1: बिल्कुल,
2: इसलिए रिटायरमेंट की योजना बनाते समय महंगाई को जरूर ध्यान में रखना जरूरी है।
1: बिल्कुल, इसी के साथ कम उम्र से ही शुरुआत करें तो लाभ अच्छा होता है। श्रोता साथियों, रिटायरमेंट निवेश में समय बहुत महत्वपूर्ण होता है।
0: बिल्कुल,
1: यदि कोई व्यक्ति कम उम्र से नियमित रूप से थोड़ी थोड़ी राशि निवेश करता है तो उसे लंबे समय तक चक्रवृद्धि का लाभ मिलने की संभावनाएं रहती है। मान लीजिए कि दो लोग हैं, एक व्यक्ति नौकरी शुरू करते ही हर महीने थोड़ी राशि रिटायरमेंट के लिए अलग करना शुरू कर देता है और दूसरा व्यक्ति यह सोचकर कई साल इंतजार करता है कि बाद में बचत कर लेंगे। दूसरे व्यक्ति की आय भविष्य में अधिक हो सकती है, लेकिन उसने निवेश के कई महत्वपूर्ण वर्ष खो दिए।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए छोटी राशि से शुरुआत करना भी देर से बड़ी राशि शुरू करने से उपयोगी हो सकता है।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए श्रोता साथियों, नियमित निवेश शुरू करने को ही महत्वपूर्ण माना जाता है।
0: बिल्कुल,
1: लिए हमें पहले बजट बनाना होगा।
2: जी हाँ अंजलि, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि रिटायरमेंट निवेश का पहला कदम कोई निवेश उत्पाद चुनना नहीं है, बल्कि अपने घर का बजट समझना होगा।
0: बिल्कुल,
2: हर महीने हमें कुछ लिखना होगा, जैसे कुल आय कितनी है, घर के आवश्यक खर्च कितने हैं, बच्चों की शिक्षा पर हम कितना खर्च हो रहा है, कर्ज की किस्त कितनी है, स्वास्थ्य और बीमा पर कितना खर्च हो रहा है, मनोरंजन और अन्य खर्च कितने हैं, हर महीने कितनी राशि बचाई जा सकती है। जब आय और खर्च का सही हिसाब सामने होगा तभी रिटायरमेंट के लिए उचित राशि निर्धारित की जा सकती है। श्रोता साथियों, इस कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहेंगे कि वित्तीय शिक्षा सामग्री भी आय व्यय का बजट बनाने और भविष्य के वित्तीय लक्ष्यों के अनुसार योजना बनाने पर जोर देती है।
1: बिल्कुल जागृति जी, कहना चाहेंगे कि रिटायरमेंट के लिए निवेश करने से पहले अचानक आने वाली परिस्थितियों के लिए अलग धन रखना भी बहुत जरूरी है।
0: जी हाँ,
1: बीमारी, नौकरी जाने, व्यवसाय में नुकसान या किसी अन्य आकस्मिक परिस्थिति में यदि हमारे पास आपातकालीन धन नहीं है तो हमें रिटायरमेंट के लिए जमा किए गए पैसे को निकालना पड़ सकता है। इसलिए रिटायरमेंट योजना के साथ साथ आपातकालीन निधि और पर्याप्त स्वास्थ्य बीमा पर भी ध्यान देना चाहिए। इसके लिए निवेश संबंधी जानकारी भी हमें पता चलेगी कि कितना हम खर्च कर रहे हैं और कितना हमें निवेश करना है, ताकि हम स्वास्थ्य आपदा स्थिति में तैयार रह सके।
2: बिल्कुल अंजलि, तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात कर रहे हैं कि रिटायरमेंट के लिए हमें कितनी आय निवेश करनी है, ये बातें ऐसे ही बनी रहेंगी कार्यक्रम सच्चा स्वराज में, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
1: बिल्कुल,

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि जागृति जी, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बहुत अच्छी बातें चल रही है कि किस तरीके से हमें भविष्य के लिए पैसा निवेश करने की जरूरत है। तो श्रोता साथियों, पैसा तो निवेश हम कर लेंगे, लेकिन निवेश करते समय सभी पैसे हमें एक जगह नहीं रखने हैं। रिटायरमेंट के लिए निवेश करते समय जोखिम को समझना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल,
0: किसी एक ही साधन में पूरा पैसा लगाना उचित नहीं माना जाता। निवेश के अलग अलग विकल्पों में अलग अलग प्रकार के जोखिम और संभावनाएं रिटर्न होते हैं। इसलिए निवेश का चुनाव व्यक्ति की उम्र, लक्ष्य, समय अवधि और जोखिम सहन करने की क्षमता के अनुसार होना चाहिए।
1: जी हाँ।
0: श्रोता साथियों, निवेश में वित्ता रखने और निवेश से पहले जोखिम, लक्ष्य तथा समय अवधि को समझने की सलाह भी हमें जो अनुभवी व्यक्ति होते हैं उनसे लेनी चाहिए।
1: बिल्कुल अंजलि, इसी के बाद हमारे श्रोता साथियों को इस कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहेंगे कि रिटायरमेंट के बाद कितने पैसों की जरूरत होगी, ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्रश्न हो जाता है। तो श्रोता साथियों, रिटायरमेंट की योजना बनाते समय केवल ये सोचना पर्याप्त नहीं है कि आज हर महीने कितना खर्च होता है, ये भी अनुमान लगाना होगा कि रिटायरमेंट के समय कितना खर्च हो सकता है। उदाहरण के लिए, आज किसी परिवार का मासिक खर्च 30,000 रुपए है, जैसा कि हमने पहले भी बताया था।
0: बिल्कुल,
1: भविष्य में महंगाई के कारण यही जरूरत काफी बढ़ सकती है। इसके अलावा रिटायरमेंट के बाद स्वास्थ्य खर्च बढ़ने की संभावनाओं को भी हमें ध्यान में रखना होगा। इसीलिए रिटायरमेंट कोपर्स यानी भविष्य के लिए जमा होने वाली कुल राशि का लक्ष्य वर्तमान खर्च के साथ साथ भविष्य की महंगाई और स्वास्थ्य जरूरत को ध्यान में रखकर बनानी होगी। यदि रिटायरमेंट के समय तक बड़े कर्ज बाकी हैं, तो नियमित आय कम होने पर आर्थिक दबाव पड़ सकता है। इसलिए कामकाजी जीवन के दौरान कर्ज को व्यवस्थित तरीके से कम करना और संभव हो तो रिटायरमेंट से पहले बड़े कर्ज समाप्त करने की योजना बनाना भी उपयोगी हो सकता है।
0: बिल्कुल,
1: रिटायरमेंट का उद्देश्य केवल पैसा जमा करना नहीं है श्रोताओं, बल्कि आर्थिक चिंता को कम करना भी जरूरी है।
0: जी हाँ जागृति जी, हर साल अपनी योजना की समीक्षा हमें करनी है। एक बार निवेश शुरू करने के बाद उसे भूल जाना सही तरीका नहीं है। हर साल देखें श्रोता साथियों कि क्या आय बढ़ी है, क्या खर्च बढ़े हैं, क्या परिवार की जिम्मेदारियां बदली हैं, किसी के साथ रिटायरमेंट की उम्र क्या है वो भी हमें देखना है। क्या निवेश का जोखिम आपकी जरूरत के अनुसार है, क्या पर्याप्त बीमा और आपातकालीन निधि उपलब्ध है, और समय समय पर निवेश योजना की समीक्षा और जरूरत के अनुसार बदलाव करने की बातें भी हमें ध्यान में रखने की जरूरत है।
1: जी हाँ,
0: क्योंकि जागृति जी, कई युवा सोचते हैं कि रिटायरमेंट

0: अभी बहुत देर है, इसलिए इसकी योजना बाद में बनाई जाएगी। लेकिन वास्तव में रिटायरमेंट योजना जितनी जल्दी शुरू होती है उतना अधिक समय निवेश को मिलता है।
1: जी हाँ,
0: छोटी उम्र से शुरू की गई नियमित बचत धीरे धीरे बड़ा फंड बनने में मदद कर सकती है। इसका मतलब यह नहीं है श्रोता साथियों कि हर व्यक्ति को अपनी पूरी आय निवेश कर लेनी चाहिए। जरूरी है कि वर्तमान जरूरतों, परिवार की जिम्मेदारियों और भविष्य के लक्ष्य के बीच संतुलन बनाया जाए।
1: जी हाँ अंजलि, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर जल्दी पैसा दोगुना करने और निश्चित रूप से बहुत अधिक रिटर्न देने वाले कई दावे दिखाई देते हैं। ऐसे दावों से सावधान रहना बहुत जरूरी है। स्पष्ट श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि निवेश में जोखिम होता है और रिटर्न की गारंटी नहीं होती। निवेश करने से पहले उत्पाद जोखिम, लागत और अपनी जरूरत को समझना भी बहुत जरूरी है। इसलिए रिटायरमेंट के पैसे को केवल किसी के कहने पर निवेश नहीं करना चाहिए। जरूरत पड़ने पर पंजीकृत वित्तीय सलाहकार से सलाह ली जा सकती है। रिटायरमेंट की योजना केवल एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है, परिवार के सदस्यों को भी पता होना चाहिए कि भविष्य के लिए क्या क्या योजना बनाई गई है। पति पत्नी को मिलकर आय, खर्च, बचत, बीमा, निवेश और भविष्य के लक्ष्यों पर बातचीत करनी होगी। इससे आर्थिक फैसले और अधिक व्यवस्थित हो सकते हैं और आपात स्थिति में परिवार को सही जानकारी मिल सकती है।
0: बिल्कुल जागृति जी, ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत से परिवारों की आय नियमित वेतन के बजाय खेती, पशुपालन, मजदूरी, छोटे व्यवसाय और अन्य स्रोतों से आती है।
1: बिल्कुल,
0: ऐसे परिवारों के लिए रिटायरमेंट योजना थोड़ी अलग हो सकती है। यहाँ नियमित आय का कुछ हिस्सा अलग रखना, फसल या व्यवसाय से होने वाली अतिरिक्त आय में से भविष्य के लिए राशि सुरक्षित करना और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों के लिए तैयारी करना महत्वपूर्ण हो सकता है। चाहे आय का स्रोत खेती हो या नौकरी, सिद्धांत एक ही है कि आज की कमाई में से भविष्य का हिस्सा सुरक्षित करना।
1: बिल्कुल,
0: कई बार हम सोचते हैं कि जब बड़ी आय होगी तभी निवेश शुरू करेंगे, लेकिन बड़ी आय का इंतजार करते करते कई वर्ष निकल जाते हैं। बेहतर तरीका यह है कि अपनी क्षमता के अनुसार छोटी राशि से शुरुआत की जाए और आय बढ़ने के साथ निवेश की राशि भी बढ़ाई जाए।
1: बिल्कुल,
0: मान लीजिए श्रोता साथियों कि कोई व्यक्ति शुरुआत में 3,000 रुपए प्रतिमाह अलग करता है, कुछ वर्षों बाद उसकी आय बढ़ती है तो वह राशि बढ़ाकर 5,000 या 7,000 रुपए कर सकता है। इस तरह जागृति जी, निवेश की आदत धीरे धीरे मजबूत होती है।
1: जी हाँ अंजलि, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ये भी कहना चाहेंगे कि रिटायरमेंट का मतलब रुक जाना नहीं है श्रोता साथियों। रिटायरमेंट का अर्थ जीवन का अंत या सक्रियता का अंत नहीं है, ये जीवन का एक नया चरण है। इस समय व्यक्ति अपनी रुचियों के अनुसार सामाजिक कार्य, खेती, बागवानी, लेखन, बच्चों को पढ़ाना, यात्रा या अपने किसी पुराने शौक को समय दे सकता है। लेकिन इस नए चरण को खुशी और आत्मविश्वास के साथ जीने के लिए आर्थिक तैयारी जरूरी है। अगर रोजमर्रा के खर्चों की चिंता बनी रहती है श्रोताओं, तो रिटायरमेंट के बाद की स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है। इसलिए रिटायरमेंट फंड केवल पैसा नहीं बल्कि भविष्य की स्वतंत्रता और आत्मसम्मान का आधार भी है।
0: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं कि रिटायरमेंट की तैयारी कोई एक दिन का काम नहीं बल्कि वर्षों तक चलने वाली प्रक्रिया है। कितनी राशि निवेश करनी है ये हर व्यक्ति की आय और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। शुरुआत के लिए आय का 15 से 20% भविष्य के लिए अलग रखने का लक्ष्य बनाया जा सकता है, लेकिन इसे अपनी वास्तविक आर्थिक स्थिति के अनुसार तय करना होगा। और सबसे जरूरी बात यह है श्रोता साथियों की बजट बनाना, नियमित बचत करना, आपातकालीन निधि रखना, बीमा पर ध्यान देना, महंगाई को समझना, निवेश में विविधता रखना और समय समय पर अपनी योजना की समीक्षा करना। याद रखिए, आज की समझदारी भरी बचत कल की आर्थिक आजादी बन सकती है।
0: बिल्कुल जागृति जी, रिटायरमेंट की तैयारी उस समय नहीं शुरू होती जब नौकरी खत्म होने वाली हो। रिटायरमेंट की तैयारी उस दिन शुरू होती है जिस दिन हम अपने भविष्य को आज की कमाई में जगह देते हैं। इसलिए कम हो या ज्यादा, नियमित रूप से बचत कीजिए, सोच समझकर निवेश कीजिए और अपने आने वाले कल को आर्थिक रूप से मजबूत बनाइए।
1: बिल्कुल, क्योंकि रिटायरमेंट के लिए कोई एक तय प्रतिशत सबके लिए सही नहीं होता। अपनी आय, खर्च और भविष्य की जरूरतों के अनुसार आप लक्ष्य तय कर सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो साथियों जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारी बातें की जान पाए, रिटायरमेंट के बाद हमें किस तरह से निवेश करना है और किस तरह से बचत करनी है, अब देख पा रहे हैं कि समय चला है आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा हम जरूर लेंगे पर जाते जाते सुन लेते हैं एक और गीत।
0: बिल्कुल,

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से जो भी बातें रही वो बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। इसी उम्मीद के साथ आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारश्वर
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को। नमस्कार।

0: कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा
2: नमस्कार।
0: जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। श्रोता साथियों, आज हमारी कार्यक्रम में आपसे बातचीत का विषय है कि उम्र के साथ बदलाव जरूरी है, लेकिन बुजुर्गों के स्वास्थ्य को परिवार कैसे समझे। श्रोता साथियों, उम्र बढ़ना जीवन की स्वाभाविक प्रक्रिया है। जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ती है, शरीर की ताकत, सुनने देखने की क्षमता, नींद, पाचन और चलने फिरने में कुछ बदलाव आ सकते हैं, लेकिन इन बदलावों को केवल बुढ़ापा है ऐसा तो होगा ही कहकर नजरअंदाज करना सही नहीं है।
0: बिल्कुल,
1: बुजुर्गों को परिवार से केवल दवा या इलाज की जरूरत नहीं होती, उन्हें समझ, सम्मान, समय और साथ भी चाहिए होता है। तो आज हम बात करेंगे कि परिवार बुजुर्गों के बदलते स्वास्थ्य को कैसे समझे और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे आसान और स्वस्थ बना सकता है।
0: जी हाँ अंजलि जी, तो इस विषय को लेकर हमारे श्रोता साथियों से कार्यक्रम के माध्यम से ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्यों ना उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं उम्र के साथ बदलाव जरूरी है, बुजुर्ग के स्वास्थ्य को परिवार कैसे समझे। यही अगर अंजलि जी बात करें कि उम्र बढ़ने के साथ शरीर में क्या क्या बदलता है इसकी, तो श्रोता साथियों हम देखते हैं कि उम्र के साथ शरीर की कार्य क्षमता में धीरे धीरे बदलाव आना सामान्य है। पहले जैसी शारीरिक ताकत न रहना, जल्दी थकान महसूस होना, नींद में समय के साथ बदलाव आना, पाचन थोड़ा धीमा दिखाई दे सकता है और कुछ बुजुर्गों में श्रोता साथियों चलने से पहले अधिक समय लग सकता है या सीढ़ियां चढ़ने में परेशानी हो सकती है। परिवारों को इन बदलावों को समझते हुए अंजलि जी उनकी क्षमता के अनुसार काम करवाना चाहिए। उम्र बढ़ना कमजोरी का पर्याय नहीं है साथियों, इसीलिए बुजुर्गों को हर काम से अलग कर देना भी हमारे लिए उचित नहीं है।
1: बिल्कुल मनीषा, हम देखते हैं कि कई बार परिवार बुजुर्गों की परेशानी को यह कहकर टाल देता है कि उम्र हो गई है, ऐसा तो होगा ही, लेकिन लगातार चक्कर आना, सांस लेने में परेशानी, अचानक कमजोरी, बार बार गिरना, बहुत अधिक दर्द या व्यवहार में अचानक बदलाव जैसी बातें हो तो उन्हें नजर

0: तो परिवार को उसका ध्यान रखना भी चाहिए। साथ ही साथ पर्याप्त पानी और तरल पदार्थ लेने की आदत है वो भी महत्वपूर्ण है। जब तक डॉक्टर ने श्रोता साथियों किसी कारण से उसकी सीमा न बताई हो तो हमें ध्यान रखना चाहिए।
1: बिल्कुल मनीषा, यही बात करें दवाइयों में परिवार की भूमिका की, तो कई बार नियमित रूप से एक से अधिक दवाइयां लेते हैं। ऐसे में परिवार को यह सुनिश्चित करने में मदद करनी चाहिए कि दवा सही समय पर और डॉक्टर की सलाह के अनुसार ली जा सकती है।
0: जी हाँ।
1: बिना सलाह के दवा बंद करना, मात्रा बदलना या किसी दूसरे व्यक्ति की दवा देना उचित नहीं है। दवाइयों की सूची और डॉक्टर की पर्ची को सुरक्षित रखना भी उपयोगी हो सकता है। हम देखते हैं कि हमारे घर में भी जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, हम देखते हैं कि उम्र ज्यादा होने के साथ उनकी जो चीजें हैं वो बच्चों जैसी हो जाती है।
0: जी हाँ।
1: अगर हम उन्हें कहते हैं कि आप समय पर दवाई लीजिए, ये डॉक्टर ने दवाई दी है, तो ये बोलते हैं मुझे दवाई की जरूरत नहीं है, अब मैं ठीक हूँ, और उनकी मात्रा का भी वो ध्यान नहीं रखते हैं और बहुत सी बार अपने आप वो दवाई भी बंद कर देते हैं।
0: जी हाँ।
1: तो ऐसे में घर के सदस्यों का एक कर्तव्य बनता है कि वे बुजुर्गों के खान पान का, उनके दवाई के समय का विशेष ध्यान रखे, क्योंकि थोड़ी सी भी लापरवाही हमें बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारी श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर बातें चली रही हैं, तो ये बातें आगे भी ऐसे ही जारी रहेंगी।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन क्यों ना साथियों के मनोरंजन के लिए कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दे।
1: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना, यही बात करें मनीषा कि परिवार को किस तरीके से बुजुर्गों की दवाइयों के साथ चलना फिरने की जो चीजें हैं उनका भी ध्यान रखने की जरूरत है। हम देखते हैं कि बुजुर्गों को हमेशा बैठे रहने देना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। उनकी क्षमता के अनुसार हल्की गतिविधि करवाना, टहलाना या डॉक्टर द्वारा सुझाए गए व्यायाम जो है वो उनकी दिनचर्या का हिस्सा हमें बनाने की जरूरत है। लेकिन सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। हम देखते हैं कि आजकल घर में फिसलन, रास्ते में सामान, खराब रोशनी, ऐसी जगह जहां आसानी से ठोकर लग सकती है वहां पर हमें उन्हें ठीक से ले जाना चाहिए। खासकर अगर बुजुर्ग को चलने में परेशानी है तो परिवार के दूसरे सदस्य उनके साथ जाकर उन्हें थोड़ी देर टहला सकते हैं।
1: जी बिल्कुल,
0: उनका मन जो है वो खुश रहता है।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि बुजुर्गों का स्वास्थ्य केवल शरीर से जुड़ा हुआ नहीं है, उनका मन भी स्वस्थ रहना जरूरी है।
0: बिल्कुल,
1: कई बार उम्र बढ़ने के साथ व्यक्ति को लगता है कि अब परिवार को कोई जरूरत नहीं रही। बच्चे अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं, बातचीत कम हो जाती है। पहले जो व्यक्ति घर के फैसलों में शामिल होता था वो धीरे धीरे खुद अलग महसूस करने लग जाता है।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए श्रोता साथियों, परिवार को बुजुर्गों से बातचीत करते रहना चाहिए। उनसे उनके पुराने अनुभव पूछे जा सकते हैं, उनकी पसंद के विषय पर बात की जा सकती है। कभी कभी श्रोता साथियों, केवल कुछ मिनट बैठकर उनकी बात सुन लेना ही उनके लिए सबसे बड़ी खुशी हो सकती है।
0: बिल्कुल मनीषा, अगर बुजुर्ग बार बार बात दोहराने को कह रहे हैं, टीवी बहुत तेज आवाज में सुन रहे हैं या चीजें देखने में परेशानी बता रहे हैं तो इसे केवल उम्र का हिस्सा मानकर छोड़ना नहीं चाहिए। जरूरत पड़ने पर उनकी आंखों और कानों की जांच करवानी चाहिए। सही चश्मा या सुनने में सहायता देने वाले उपकरण उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को काफी आसान बना सकते हैं। हम देखते हैं कि एक उम्र के बाद बुजुर्ग व्यक्ति का सुनना बहुत कम हो जाता है, दिखने में भी समस्या हो जाती है। तो ऐसे में घर के अन्य सदस्य हैं उन्हें उनकी पर्याप्त देखभाल करनी है। बहुत सी बार जब बुजुर्ग ऐसी चीजें दोहराते हैं या कुछ करते हैं तो घर के सदस्य उन पर गुस्सा करने लगते हैं।
1: जी हाँ।
0: तो श्रोता साथियों, हमें उन पर गुस्सा नहीं करना है। आज जिस पड़ाव पर वो जी रहे हैं उस पड़ाव पर कल को हम भी आएंगे, हमारे बच्चे भी हमसे देखकर दुर्व्यवहार सीखेंगे, इसलिए हमें ऐसा नहीं करना है। हमें बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना है। वो छोटे बच्चे की तरह हो जाते हैं, इसलिए हमें उन्हें उसी तरीके से उन्हें संभालने की जरूरत है। अगर कोई बात उन्हें समझ नहीं आ रही है तो हम शांति से धैर्य पूर्वक उन्हें अच्छे से समझाएं।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि आराम और नींद का भी ध्यान रखना है। उम्र बढ़ने के साथ नींद के तरीके में बदलाव आ सकता है साथियों। कुछ बुजुर्गों को रात में बार बार नींद खुल सकती है या जल्दी नींद नहीं आती है। परिवार को उनकी नींद की समस्याओं को मजाक में नहीं लेना चाहिए। रात में शांत वातावरण, दिन में उचित गतिविधियां और नियमित दिनचर्या मददगार हो सकती हैं। अगर श्रोता साथियों नींद की परेशानी लगातार बनी रहती है तो हमें उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना है। साथ ही साथियों कहना चाहेंगे कि परिवार में बुजुर्गों की राय लेना हमारे लिए बहुत जरूरी है और यह एक सम्मान का हिस्सा भी है। यह जरूरी नहीं कि हर फैसला उनकी इच्छा के अनुसार लिया जाए, लेकिन उन्हें यह महसूस होना चाहिए कि उनकी बात सुनी जा रही है। घर में कोई महत्वपूर्ण विषय हो तो उस पे राय लेना हमारे लिए जरूरी है। उनके जीवन के अनुभव कई बार हम अंजलि जी देखते हैं कि हमारे घर की परिस्थितियां हैं उनमें काम आ सकती हैं। अनुभव उम्र के साथ मिलता है साथियों, और उसे सम्मान देना हमारे परिवार की जिम्मेदारी है।
0: मनीषा, यही बात करें तो उम्र बढ़ना जिंदगी का वह पड़ाव है जहाँ शरीर शायद पहले जैसी तेजी से काम न करे, लेकिन अनुवाद, समझ और जीवन की सीख लगातार हमारे साथ रहती है। इसलिए श्रोता साथियों, बुजुर्गों के स्वास्थ्य को समझने का मतलब केवल उनकी दवाइयों और बीमारी पर नजर रखना नहीं है। परिवार जब उनके खाने का ध्यान रखता है, उनकी सुरक्षित गतिविधियों को प्रोत्साहित करता है, उनकी जाँच समय पर करवाता है, उनकी बातों को धीरे से सुनता है, तब स्वास्थ्य देखभाल एक जिम्मेदारी से बढ़कर परिवार का अपनापन बन जाती है।
1: जी हाँ।
0: याद रखिए श्रोता साथियों कि बुजुर्गों को हमारी जरूरत केवल तब नहीं होती जब वे बीमार हैं, उन्हें स्वस्थ दिनों में भी बातचीत, सहभागिता और अपनेपन की जरूरत होती है। उनके अनुभवों को सुनिए, उनकी पसंद पूछना और परिवार के बीच उन्हें सम्मान की जगह देना भी स्वास्थ्य का ही हिस्सा है। तो आज से अपने घर के बुजुर्गों को थोड़ा आप सभी समय दीजिए, उनसे पूछिए कि आप कैसे हैं और उनके जवाब को सच में सुनिए, क्योंकि स्वस्थ परिवार वही है जहां हर उम्र की जरूरत को समझा जाए और हर सदस्य को सम्मान के साथ जीने का अवसर मिले।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। इसी के साथ कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि उम्र के साथ बदलाव जरूरी है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है शरीर और मन की जरूरतें भी बदलती जाती हैं।
0: जी जी।
1: इसलिए बुजुर्गों की देखभाल का एक तरीका भी हमारे लिए बहुत जरूरी हो सकता है। बुजुर्गों को केवल बीमार व्यक्ति समझना हमें नहीं है, वे परिवार के अनुभव होते हैं, हमारी परंपराओं की कड़ी होते हैं और हमारे जीवन के महत्वपूर्ण धरोहर होते हैं।
0: बिल्कुल।
1: उनके स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक भोजन, समय पर दवाई, उचित आराम, सुरक्षित वातावरण और जरूरत के अनुसार शारीरिक गतिविधियां हैं वो भी जरूरी हैं। इसके साथ साथ श्रोता साथियों, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
0: बिल्कुल मनीषा, तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हमने ढेर सारी बातों को जाना कि किस तरीके से हमें हमारे बुजुर्गों का ध्यान रखने की जरूरत है और ये जो अवस्था होती है उस समय परिवार को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आशा करते हैं कि ये सभी बातें हमारे श्रोता साथियों को अवश्य पसंद आई होगी।
1: बिल्कुल।
0: क्योंकि अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे लेकिन जाने से पहले सुन लेते हैं एक और प्यारा सा गीत।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही हम हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य से विदा लेना चाहेंगे। आशा करेंगे कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातचीत रही वो आपको अवश्य पसंद आई होगी।
1: बिल्कुल।
0: तो आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें जरूर पहुँचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य वाघ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की आपके अपने साथी मनीषा पटेल को
0: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर को।
1: नमस्कार।

0: भूमि आवंटन हो, दाखिल खारिज हो या राजस्व विभाग ने प्रक्रिया, हर बोना ने मले सही जानकारी, सही मार्गदर्शन ने बराबरी नो अधिकार। याद रखो, जई बोन सशक्त थाय यस विकास नो सही रास्तो निकरे है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: जागृति बोन, आप कार्य सोचो है, अगर आप बूंदे रुके जाएगा तो हूँ था नाना अंजलि बोन हूँ था का अरे जागृति बोन आपड़ी जे नदिया है ई हुकी जाएगा खेतर बंजर थी जाएगा ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा ओ अंजलि बोन एटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है पानी थकीस आपड़ो जीवन है होवे जागृति बोन हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है होवे अंजलि बोन आपड़े भाई बोन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो बारिश ने पानी नु संग्रह करो आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा होवे होवे जागृति बोन आपड़े भाई बोनों ने कहो कि पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है हर बूंद नु मोल आपड़े जानो वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
2: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM पर।

हेलो दोस्तों, नमस्कार। कार्यक्रम सपनों की उड़ान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर। साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM। जैसा कि साथियों आप सभी जानते हैं कि हम जब भी कार्यक्रम सपनों की उड़ान को लेकर हाजिर होते हैं तो हमारा आपसे एक नया विषय रहता है बातचीत का, क्योंकि हम कार्यक्रम सपनों की उड़ान में बात ही करते हैं एक ऐसे विषय को लेकर जो ऊंचाइयों तक हमें पहुंचा है। साथियों, तो आज हम कार्यक्रम के माध्यम से जिस विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं दोस्तों, वो है हर विद्यार्थी, हर युवा और हर परिवार के जीवन से जुड़ा हुआ। बात कर रहे हैं पढ़ाई और जीवन में संतुलन को लेकर। जैसा कि साथियों हम सभी जानते हैं कि आज का दौर प्रतिस्पर्धा का दौर है। हर कोई आगे बढ़ना चाहता है और हर किसी के सपने भी बड़े हैं साथियों। लेकिन इस दौड़ में एक सवाल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो ये है कि क्या हम अपने स्वास्थ्य, रिश्तों को, मानसिक शांति को नजरअंदाज तो नहीं कर रहे। दोस्तों, इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज हम कार्यक्रम के माध्यम से जानेंगे। तो बातें ढेर सारी होंगी, लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है। तो आइए साथियों, पहले सुन लेते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में।

दोस्तों इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में और वागड़ रेडियो 90.8 FM की ओर। साथियों जैसा कि आज हम कार्यक्रम को एक नए विषय के साथ लेकर हाजिर हैं और गीत से पहले मैंने विषय के बारे में आपको बता ही दिया था और छोटी मोटी बातें भी हमारी हुई थी कि आज हम जिस विषय को लेकर बातचीत कर रहे हैं वो हर विद्यार्थी के जीवन से जुड़ा हुआ है, हर युवा के लिए जरूरी है और साथ ही हर परिवार के जीवन से जुड़ा हुआ विषय है। बातचीत कर रहे हैं पढ़ाई और जीवन में संतुलन को लेकर। साथियों जैसा कि गीत से पहले हमने जाना था कि आज का दौर प्रतिस्पर्धा का दौर है और सबके सपने वर्तमान में बड़े बड़े हैं। हर कोई कुछ बड़ा हासिल करना चाहता है साथियों, लेकिन हमारे सामने सवाल ये भी है दोस्तों कि क्या हम सिर्फ पढ़ाई ही करते जा रहे हैं या फिर जीवन को भी जी रहे हैं। तो बात करते हैं श्रोता साथियों सबसे पहले पढ़ाई को लेकर। दोस्तों जैसा कि पढ़ाई हमारे जीवन का आधार होती है, ये हमें ज्ञान देती है, सोचने की क्षमता देती है और हमें आत्मनिर्भर भी बनाती है। साथ ही हम देखते हैं दोस्तों कि एक अच्छा करियर, सम्मानजनक जीवन और समाज में पहचान, ये सब जो चीजें हैं वो भी पढ़ाई से ही संभव हो पाती है। लेकिन जब दोस्तों पढ़ाई ही जीवन बन जाए और जीवन के बाकी पहलू पीछे छूट जाए तब समस्या और भी शुरू हो जाती है। हम देखते हैं कि कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो दिन रात पढ़ते रहते हैं लेकिन धीरे धीरे कब वे तनाव, थकान और अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता। इसलिए श्रोता साथियों पढ़ाई के साथ साथ जीवन का संतुलन भी जरूरी माना जाता है। हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि पढ़ाई जीवन का हिस्सा है, जरूरी है दोस्तों, लेकिन वो जीवन नहीं है। तो इसलिए पढ़ाई में भी संतुलन होता है। जैसे कि दोस्तों संतुलन का मतलब होता है हर चीज को उसके उचित स्थान और समय के रूप में देखना। जैसे कि पढ़ाई जरूरी है लेकिन उतना ही जरूरी है शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना, मानसिक शांति, अपने शौकों और रुचियों पर कार्य करना। दोस्तों जब ये सभी चीजें एक साथ चलती है तभी जीवन पूर्ण बनता है। हम कह सकते हैं कि अगर इसके विपरीत हमारी पढ़ाई में और जीवन में असंतुलन हो जाए तो उसके ढेर सारे दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं। वो कैसे तो देखते हैं कि जब पढ़ाई और जीवन के बीच संतुलन नहीं होता दोस्तों तो इसके ढेर सारे नकारात्मक प्रभाव होते हैं। तो उन नकारात्मक प्रभावों को लेकर हम कार्यक्रम में आगे बातचीत करेंगे दोस्तों, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर ये जान लेते हैं कि संतुलन क्यों जरूरी है। क्योंकि दोस्तों संतुलित जीवन ही सच्ची सफलता का आधार माना जाता है। हम देखते हैं कि ये हमें स्वस्थ और खुश तो रखता ही है, साथ ही इससे हमारी एकाग्र शक्ति भी बढ़ती है। हमें जीवन का आनंद लेना ये सिखाता है, क्योंकि अगर जीवन में संतुलन होगा तो हम एक छोटी छोटी चीजों में भी खुशी ढूंढ पाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों ये हमें दीर्घकालिक सफलता भी दिलाता है। हम कह सकते हैं कि एक थका हुआ दिमाग ज्यादा देर तक अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकता, लेकिन वही एक आत्मनिर्भर दिमाग, एक सोचने वाला दिमाग दोस्तों कितनी समस्याएं क्यों ना आ जाए, अगर उसके जीवन में संतुलन है तो वो कई समस्याओं का सामना हंस हंस कर सकता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जीवन में संतुलन होना क्यों जरूरी है। तो आगे और भी कार्यक्रम के माध्यम से बातें हमारी होंगी। आगे दोस्तों समय प्रबंधन को लेकर भी कुछ बातें मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अभी मनोरंजन कर लेते हैं एक और गीत के साथ में। तो आप बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर के साथ में।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद मैं फिर से रुक करती हूँ कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि साथियों, गीत से पहले हम संतुलन क्या होता है और संतुलन क्यों जरूरी है, इसको लेकर बातचीत कर पाए थे। यही अगर बात करूं श्रोता साथियों की, अगर जीवन में असंतुलन हो जाए तो उसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। साथियों, जब पढ़ाई और जीवन के बीच संतुलन नहीं होता है तो इसके कई नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं, जैसे कि मानसिक तनाव और चिंता बढ़ जाती है। दोस्तों, लगातार पढ़ाई और परिणामों का दबाव हमारे मन को थका देता है और ये बात सच भी है। जैसे कि जो विद्यार्थी होते हैं वो चिंता और अवसाद का शिकार हो जाते हैं, जिससे उनमें नींद की कमी देखी जाती है और जब नींद पूरी नहीं होगी तो आंखों में दर्द रहता है, सिर दर्द और थकान की समस्या भी हो जाती है। और ये सब श्रोता साथियों जो संकेत है, जो शारीरिक समस्याएं हैं, वो जीवन में असंतुलन के कारण ही होती है। हम कह सकते हैं कि साथ ही रिश्तों में दूरी भी देखी जाती है, क्योंकि जब हम केवल पढ़ाई में व्यस्त रहते हैं तो परिवार और दोस्तों से हमारी दूरी बन जाती है, जिससे हम उन्हें समय नहीं दे पाते, जिसके कारण हमारे रिश्तों में भी दूरी आ जाती है। और लगातार पढ़ाई करने से श्रोता साथियों दिमाग थक जाता है और नई सोच विकसित नहीं हो पाती है। तो इस तरीके से श्रोता साथियों कहा जा सकता है कि अगर संतुलन बनाना है तो पढ़ाई और जीवन दोनों में हमें संतुलन बनाना होगा। हम पढ़ाई के समय पर पढ़ाई करें और बाकी के काम जीवन के समय पर करें। श्रोता साथियों, एक बात आपको यहाँ पर और भी ये ध्यान रखनी है कि आपको समय प्रबंधन को भी अपनाना है। जैसे कि दोस्तों, अगर संतुलन बनाना ही है तो समय का सही उपयोग करना भी जरूरी है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि पढ़ाई का एक निश्चित समय हम तय करें, बीच बीच में छोटे ब्रेक लेते रहें, दिन का एक हिस्सा मनोरंजन और आराम के लिए रखें। श्रोता साथियों, साथ ही मोबाइल और सोशल मीडिया का भी हम सीमित मात्रा में उपयोग करें, क्योंकि जब समय व्यवस्थित होता है दोस्तों तो जीवन अपने आप ही संतुलित होने लगता है। इसलिए आपसे कहना चाहेंगे कि जीवन और पढ़ाई दोनों में अगर संतुलन बनाना है तो हमें सबसे पहले समय की कद्र करना सीखना होगा, क्योंकि श्रोता साथियों समय जो है वो एक दिशीय होता है, यानी कि वो एक ही दिशा में आगे बढ़ता रहता है। ना ही वो किसी का सगा होता है और ना ही किसी का दोस्त होता है, वो श्रोता साथियों अपनी गति में चलता रहता है। बस बदलाव हमें करने की जरूरत पड़ती है, हमें समय का सदुपयोग करना है। अगर हम सोच रहे हैं श्रोता साथियों कि ये काम मैं कल कर लूंगा और क्या पता उस काम को करने का सही समय आज ही हो श्रोता साथियों, तो उसकी वजह से हम कई चीजों को यूं ही छोड़ देते हैं, यूं ही गंवा देते हैं। और बाद में जब हमें पता चलता है कि ये चीज तो उस समय करनी थी या उस समय पर करनी थी, तो हमारे पास बाद में पछताने के अलावा और कुछ नहीं बचता श्रोता साथियों। इसलिए जीवन में हर चीज का संतुलन होना बहुत जरूरी है। साथ ही अगर बात करें स्वास्थ्य पर ध्यान देने की, तो दोस्तों अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हम सफलता भी प्राप्त कर पाएंगे और जीवन में संतुलन भी बना पाएंगे। इसलिए स्वास्थ्य पर ध्यान देना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। अक्सर श्रोता साथियों विद्यार्थियों को ये हमने सोचते हुए देखा है कि अभी पढ़ाई जरूरी है, स्वास्थ्य को बाद में देखेंगे, जिसके कारण वो पढ़ाई ही करते रहते हैं और अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन दोस्तों अगर देखा जाए तो ये सोच गलत है। दोस्तों, पढ़ाई के साथ साथ आराम भी जरूरी है, जैसे कि आप रोज थोड़ा व्यायाम कर सकते हैं, पर्याप्त नींद आपको लेनी जरूरी है, क्योंकि अगर आप 6 से 7 घंटे की नींद या 8 घंटे की नींद नहीं लेते हैं श्रोता साथियों, तो इससे आपके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं। इसलिए पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी को तो नींद पूरी तरीके से लेनी चाहिए, जिससे वो अपनी पढ़ाई पर अच्छी तरीके से फोकस कर सके। साथ ही श्रोता साथियों, हमें खूब पानी भी पीना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि जब हम पानी ठीक तरीके से नहीं पीते हैं, जिससे हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है, उसके कारण भी दोस्तों कई बार हमारी कई चीजों में मन नहीं लगता है। इसलिए हमें हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खूब पानी भी पीना चाहिए और संतुलित रूप से आहार भी लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। तो इस तरीके से दोस्तों हम कह सकते हैं कि अगर हमें पढ़ाई में और जीवन में संतुलन बनाना है तो हमें इन ढेर सारी बातों का ध्यान रखना होगा। क्योंकि श्रोता साथियों, आपने कई बार सफल लोगों के बारे में तो सुना ही होगा, जिन्होंने अपने जीवन में संतुलन बना के रखा। दोस्तों, वे न केवल अपने काम में सफल रहे बल्कि उन्होंने अपने स्वास्थ्य, परिवार और समाज को भी महत्व दिया है, और यही संतुलन उन्हें असाधारण बनाता है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि जीवन में संतुलन बनाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जीवन केवल सफलता प्राप्त करने जैसा नहीं है, बल्कि उसे महसूस करना है और जीना है। अगर हम केवल पढ़ाई करते रहेंगे दोस्तों और जीवन को जीना भूल जाएंगे, तो ये सफलता हमारे लिए अधूरी रह जाएगी। इसलिए श्रोता साथियों, कार्यक्रम के अंत में आपसे यही कहना चाहूंगी कि आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में संतुलन ही वह दूरी है जिस पर हमारा पूरा जीवन टिका हुआ है। श्रोता साथियों, पढ़ाई जरूरी है लेकिन जीवन उससे भी बड़ा है। सफलता जरूरी है लेकिन खुश रहना उससे भी ज्यादा जरूरी है साथियों। इसलिए याद रखिए, किताबों से ज्ञान लीजिए, जीवन से अनुभव लीजिए और दोनों को मिलाकर अपना भविष्य बनाइए साथियों, क्योंकि संतुलित जीवन ही सच्ची सफलता का रास्ता होता है। तो इन्हीं उम्मीदों के साथ अब मैं कार्यक्रम से विदा लेने की अनुमति चाहूंगी, क्योंकि दोस्तों देख रहे हैं कि समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का और बातें भी ढेर सारी हो चुकी है। तो विदा मैं जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले आपको मनोरंजन करवाना चाहूंगी यहाँ पर एक प्यारे से गीत के साथ में।
1: सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो तो।

अंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

श्रोता साथियों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम सपनों की उड़ान अब यही समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। तो साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखे, कार्यक्रम सपनों की उड़ान, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए साथियों, आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो श्रोता साथियों, फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे अगले कार्यक्रम सपनों की उड़ान में एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार साथियों।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन। होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके। जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवो, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाई बोनू, आ लक्षण आपने आपने मैं देखा है, तो आपने आपने पाए वारा राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाइने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरी निःशुल्क मले है।
1: होवे एनीमिया तकी बचा बल्ले आपने खवाना में दाल, पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: एक माँ जो पूरी उम्र परिवार के लिए अपना सब कुछ दे देती है, क्या उसे अपने ही घर में अपने नाम की जमीन नहीं मिलनी चाहिए?
3: एक बेटी जो सपने लेकर बड़ी होती है, क्या उसे वाकई उतना हक मिलता है जितना उसके भाई को?
0: भूमि अधिकार सिर्फ दस्तावेज नहीं, ये सुरक्षा है, सम्मान है और महिला की उस पहचान का प्रमाण जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं।
3: आइए आज हम बदलाव की शुरुआत करें, महिलाओं को दे उनका हक जमीन पर भी, जिंदगी में भी। महिलाओं के भूमि अधिकार, क्योंकि बराबरी का वादा पूरा भी होना चाहिए। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: भाई ने बोलो, आप एक आरे विचार करियो है कि जैया पेड़ की छाव में आपने रह हूं या आपने ने कितनी शांति मिले है, जमी हवा में आपने हाल रह हूं, ये भी आपना थकी कई आश रागे है। हो भी अगर पेड़ ने रहेंगा तो आपने हरते जीवंगा, प्रकृति आपकी जरूरत नहीं बल्कि आपकी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ूंगा, पानी ने बचा रूंगा, मैं आपकी धरती में जीवन दान आलूंगा।
1: होवे प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो।
0: होवे आज नाना ना कदम है, ये अबावारा काल ने बदलाव ने शुरुआत है।
1: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

सुबह सुबह एक ख्वाब की दस्तक पर दरवाजा खोला, देखा सरहद के उस पार से कुछ मेहमान आए हैं। आंखों से मानूस थे सारे, चेहरे सारे सुने सुनाए, पांव धोए हाथ धुलाए, आंगन में आसन लगवाए और तंदूर पे मक्की के कुछ मोटे मोटे रोट पकाए। पोटली में मेहमान मेरे पिछले सालों की फसलों का गुड़ लाए थे। आंख खुली तो देखा घर में कोई नहीं था, हाथ लगाकर देखा तो तंदूर अभी तक बुझा नहीं था और होंठों पर मीठे गुड़ का जायका अब तक चिपक रहा था। ख्वाब था शायद, ख्वाब ही होगा। सरहद पर कल रात सुना है चली थी गोली, सरहद पर कल रात सुना है कुछ ख्वाबों का खून।

बहन बोनो, आ तो हती हमारी आज की सभा। हमें आशा कर रहा हूँ कि आज की सभा में प्रसारित था हमारा कार्यक्रम गीत संगीत आपने पसंद आई हुआ होगा। आपने हमारा आज ना कार्यक्रम केवल आ गया इन्हे बल्ले आप हमने राय सुझाव आली सको हमारे अड़ा पता माते हमारू पतु है वागड़ रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कोपड़ा वागथरा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। हमारू पिन कोड नंबर है 327001। अजी वधारे जानकारी बल्ले आप मने फोन करी शको अमारे अणा फोन नंबर माते। अमारू फोन नंबर है 9414082643। तो भाई बोनो, आ तो हती आपणे आजनी सभा। बीजी सभा में फेरी मुलाकात थागा तारुदी आपनी बोन अंजलि नु। राम राम, राम राम।